सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
5: कहाँ पर?
4: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
5: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
4: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
5: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835565695।
6: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
7: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: सुनो दिल से।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
2: जी हाँ कमलश्री।

0: आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
0: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क 99-393-65-930।
5: हर बच्चे के सपनों को चाहिए सही डायरेक्शन।
3: एंड दैट डायरेक्शन बिगिंस एट मेरिडियन, द स्कूल कनेक्टिंग द हार्ट एंड माइंड।
5: अ कंप्लीट इंग्लिश मीडियम CBSE स्कूल, वेयर लर्निंग इज नॉट जस्ट अबाउट बुक्स, इट्स अबाउट स्किल्स, creativity and confidence.
3: Smart digital classrooms, GPS enabled transport and holistic development through public speaking, leadership and creative thinking, mentored by IITN educators.
5: From playgroup to class 12th, with science and commerce streams and special foundation programs for IIT, NEET and Olympiad.
3: Here, we don't just teach, we build future leaders.
5: Admissions are open now. Don't miss the chance. Limited seats available.
3: Visit today, Meridian, द स्कूल कमला राय आर्ट्स कॉलेज के पास, गोपालगंज।
5: कॉल अस 9102994962 और 9102994963।
6: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
4: हर माता पिता का सपना होता है अपने बच्चे का ब्राइट फ्यूचर, एक ऐसा भविष्य जहां कॉन्फिडेंस, नॉलेज और वैल्यूज तीनों साथ हों।
5: और इस सपने को सच करने के लिए चुनिए मॉडर्न इंटरनेशनल एकेडमी यादवपुर चौक, जहां लर्निंग बनती है बच्चे की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन।
4: CBSE पैटर्न पर आधारित एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जहां क्वालिटी एजुकेशन के साथ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट सुनिश्चित किया जाता है।
5: 1.5 एकड़ का स्पेशियस कैंपस, बच्चों की सुरक्षा के लिए CCTV सर्विलेंस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, प्रोजेक्ट वर्क, क्विज कॉन्टेस्ट और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, पढ़ाई के साथ बेहतरीन प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट।
4: तो देर किस बात की, एडमिशंस ओपन, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल।
5: विजिट करें मॉडर्न इंटरनेशनल एकेडमी यादवपुर चौक के पूरब, NH 28 गोपालगंज।
4: कॉल 9931879996।
6: नमस्ते, निदेशक CBSE पब्लिक स्कूल बसडीला खास गोपालगंज जितेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। अभिभावक महोदय, आप अच्छे स्कूलों की एक सूची बनाइए, उन स्कूलों के क्लासरूम में अवश्य जाइए जिसमें आप अपने वार्ड का एडमिशन दिलाना चाहते हैं। वहाँ क्लासरूम में बच्चों के रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स स्किल, बॉडी लैंग्वेज और फेयर नोटबुक देखने का मौका मिलता है। साथ साथ आप 10th और 12th के CBSE का रिजल्ट भी देखने का मौका मिलता है। यदि अबव 95% स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस एवं रिजल्ट संतोषजनक है तो आप तय कर पाएंगे कि स्कूल अच्छा है। जी धन्यवाद।
7: Last 10th board result 2025, outstanding performance. 50 students scored above 90% and no students scored below 80%. Truly shandar achievement.
4: लगातार तीन वर्षों 2023, 2024 और 2025 में district topper in commerce stream देने का गौरव।
7: Visit करे CBSE Public School, बस्टीला खास गोपालगंज, या contact करे 7633970104।
8: सुनिए,
9: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
8: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
9: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
8: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
10: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
5: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
2: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
2: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 90765665750।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: रामू हरिया, कल तैयार रहिए लो, पराली जलाए जले के बा।
5: ठीक बा भैया।
6: ए भैया, एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दियल जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
7: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
6: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियत जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
7: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
6: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
7: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाई और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
6: याद रखी, ठूठ कूड़ा ना, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत, माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
8: के 24 राज्यों में 160 से अधिक शहरों में 280 से ज्यादा स्कूल्स के साथ एजुकेशन में ट्रस्टेड नेम बिरला।
9: अब वही लेगेसी, वही एक्सेलेंस आ गया है आपके शहर गोपालगंज में।
8: इंट्रोड्यूसिंग बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशंस आर नाउ ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 7।
9: और खास बात, प्ले ग्रुप के लिए लिमिटेड पीरियड फ्री एडमिशन।
8: मॉडर्न एजुकेशन विद AC क्लासरूम्स, डिजिटल लर्निंग, कंप्यूटर एंड साइंस लैब्स, लाइब्रेरी एंड सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी।
9: बिकॉज लर्निंग इज बियॉन्ड क्लासरूम्स, म्यूजिक, डांस, योगा एंड जूडो क्लासेस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑल टीचर्स आर BEd qualified and follow CBSE guidelines, ensuring quality education.
8: Visit today, Yadopur Road, Saraya Ward No. 1, Shambhu Path, Saraswati Talkies ke paas, Gopalganj.
9: Call now 775-994-9440 or 775-994-9441.
10: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
11: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
10: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
12: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 3945 651 या 97।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
4: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
5: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
4: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
5: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, NEBOSH और IOSH, डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
4: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
4: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने गोपालगंज।
6: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
6: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
9: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। ICS टॉपर बनकर शांभवी ने रचा इतिहास। बेटे के शादी के मटकोर में नाचती हुई मां की हार्ट अटैक से हो गई मौत। 2 स्मैक कारोबारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज पशु तस्करों पर भी कार्रवाई करते हुए 12 पशुओं को पुलिस ने किया जब्त। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर विष्णु सुगर मिल में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज जिले का नाम एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर गर्व से चमका है। बताया जा रहा है कि बरौली प्रखंड के छोटे से गांव हलवाड़ पिपरा तिवारी टोला की बेटी शांभवी तिवारी ने अपनी मेधा और कड़ी मेहनत के दम पर इतिहास रच दिया है। शांभवी ने ICSE की 12वीं कक्षा में नेशनल टॉपर बनकर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे जिले और बिहार का मान बढ़ाया है। मेहनत और लगन से सफलता हासिल करते हुए शांभवी ने यह उपलब्धि वर्षों की मेहनत और लगन तथा एकाग्रता के परिणाम से हासिल किया है। मूल रूप से गोपालगंज के रहने वाली शांभवी अपने माता पिता के साथ झारखंड के जमशेदपुर में रहकर पढ़ाई करती है। शांभवी का पूरा परिवार शिक्षित है। बताया जा रहा है कि इसी के वजह से उसको मजबूत आधार मिला। शांभवी की सफलता के पीछे उनके परिवार का बड़ा योगदान है। उनके पिता और माता दोनों ही शिक्षा और संचार के क्षेत्र से जुड़े हैं। पिता राकेश रमन जमशेदपुर के आदित्यपुर स्थित ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत है, तो वही उनकी माता निभा सेंट मैरी इंग्लिश हाई स्कूल में PGT केमिस्ट्री की शिक्षिका है। घर में शैक्षणिक माहौल होने के कारण शांभवी को बचपन से ही पढ़ाई के प्रति सही दिशा और मार्गदर्शन मिला। उनकी माता जो खुद विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, उनके लिए एक मजबूत मार्गदर्शक साबित हुई। आज शांभवी के इस उपलब्धि के बाद उनके जानने वाले लोगों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इधर विजयपुर प्रखंड के पटखौली गांव से एक बड़ी ही गमगीन खबर आई। बताया जा रहा है कि बेटे के शादी की रस्म को अदा करते समय मां का हार्ट अटैक से निधन हो गया और शादी की खुशियां मातम में बदल गई। बताया जा रहा है कि मटकोड़ का रस्म अदा किया जा रहा था, इसी बीच दूल्हे की मां नाचते गाते हुए अचानक जमीन पर गिर पड़ी और परिजनों ने हॉस्पिटल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार प्राथमिक कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। इस घटना के बाद शादी की सभी रस्में रोक दी गई और परिवार अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट गया। बताया जा रहा है कि इसके वजह से पूरे मोहल्ले में दुख और शोक की लहर दौड़ गई है। ऐसी घटना सामने आई है जिसने न केवल एक परिवार की खुशियां छीन ली बल्कि पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। बताया जा रहा है कि पटखौली गांव के बुधन बैठा के घर से बेटे की शादी को लेकर उत्साह का माहौल था और शुक्रवार की सुबह शादी के लिए ही एक महत्वपूर्ण रस्म मटकोर का आयोजन किया जा रहा था। परंपरा के अनुसार घर की महिलाएं पारंपरिक गीत गाते हुए और नाचते झूमते गांव की मिट्टी लेने जा रही थी। दूल्हे की मां भी अपने बेटे की शादी की खुशी में मगन थी और महिलाओं के साथ नाचते गाते जुलूस का हिस्सा बन रही थी। इसी बीच अचानक नाचने के दौरान ही वह जमीन पर गिर पड़ी। सभी लोग कुछ समझ पाते तब तक उनका निधन हो गया था। लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पूरे मोहल्ले में मातम पसर गया। पुलिस अधीक्षक ने पशु तस्करी को लेकर भी लगातार अभियान शुरू करवाया है और आए दिन पशु तस्करों की गिरफ्तारी हो रही है, पशुओं को भी जब्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पुलिस ने एक दर्जन पशुओं को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि गोपालपुर थाना की पुलिस अहिरौली दुबौली टोला तकिया के पास गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जांच के दौरान एक पिकअप को पकड़ी। इसके अंदर से एक दर्जन मवेशियों को बरामद किया गया। पिकअप गाड़ी को भी जब्त किया गया है। इस मामले में वाहन मालिक और चालक के विरुद्ध कांड दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही चालक और पशु तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने पशुओं से भरी इस गाड़ी को जब्त कर लिया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर नशा के विरुद्ध लगातार पुलिस अभियान चला रही है। इसी बीच सूखे नशे के विरुद्ध भी चलाए जा रहे अभियान में माझा पुलिस ने बहोरा हाता पुल के पास वाहन जांच करते हुए दो स्मैक कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल पर सवार एक पुरुष और एक महिला नशे के कारोबार में जा रहे थे, तभी पुलिस ने रोक कर जब तलाशी ली तो इनके पास से 95 ग्राम स्मैक जैसा मादक पदार्थ बरामद किया गया। तलाशी के दौरान कुछ नकदी रुपए और दो मोबाइल फोन भी मिले, जिसके बाद आरोपी हरिकेश सिंह पिता बलिस्टर सिंह साकिन करस घाट थाना मोहम्मदपुर जिला गोपालगंज को और एक महिला को विधिवत गिरफ्तार किया गया। इनकी अपाची मोटरसाइकिल को भी जब्त की गई है और माझा थाने में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज करते हुए अब इन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर श्रम विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में विष्णु सुगर मिल्स लिमिटेड के परिसर में मजदूरों के बीच मजदूरों को विधिक रूप से जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता श्रम अधीक्षक के द्वारा की गई। बताया जा रहा है कि दुनिया भर के देशों में मजदूरों एवं श्रमिकों को सम्मान देने के उद्देश्य से हर वर्ष 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है और इसे लेबर डे, श्रमिक दिवस या मई डे भी कहा जाता है। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता एवं विभिन्न प्रखंडों के श्रम प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से मजदूरों और सुगर मिल्स के मजदूरों को भी सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई, जैसे मजदूरों के अधिकार, ई श्रम कार्ड, श्रम अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी इत्यादि के बारे में मजदूरों को जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। साथ ही मजदूरों को यह भी बताया गया कि श्रम दिवस एक विशेष दिन है जो मजदूरों और श्रम वर्ग को समर्पित है। यह मजदूरों की कड़ी मेहनत को सम्मानित करने का दिन है। मजदूरों की मेहनत पर ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था निर्भर है। कार्यक्रम में उपस्थित मजदूरों के बीच जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संबंधित एवं सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हैंडबिल भी वितरित किए गए ताकि मजदूरों को इसकी जानकारी हो सके। पिछले 24 घंटों से हो रही तेज बारिश को लेकर कई जगहों पर जल जमाव की समस्या भी देखने को मिली। खासकर जिले के कई छोटे छोटे शहरों में जल जमाव से लोग परेशान दिखे। हथुआ में भी कई मोहल्लों में और गलियों में जल जमाव की समस्या से लोग जूझते हुए जिला प्रशासन और जन प्रतिनिधियों पर सवाल खड़े किए। लोगों का कहना है कि नालों का निर्माण तो हो रहा है, परंतु मानक और तकनीकी का उसमें विशेष ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जिसके वजह से सड़क के किनारे नाले बना दिए जा रहे हैं, पर सड़क का पानी नालों में नहीं जा रहा है, जिसके वजह से कई जगहों पर जल जमाव की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। मुचका गांव थाना क्षेत्र में हुए एक शादी समारोह में अवैध हथियार लहराते हुए नर्तकी के साथ नृत्य करने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि भय और दहशत का वातावरण उत्पन्न करने को लेकर नर्तकी के साथ हथियार लहराते हुए एक व्यक्ति का वीडियो पुलिस को प्राप्त हुआ। वीडियो में जांच पड़ताल किया गया, सनहा दर्ज कर चौकीदार को वीडियो दिखाकर पहचान और सत्यापन करने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद चौकीदार के द्वारा आरोपी की पहचान की गई। बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति हथियार लहरा रहे हैं वह पूर्व सरपंच राज नारायण सिंह, पिता स्वर्गीय सीताराम सिंह, साकिन नरकटिया थाना उचका गांव के निवासी हैं। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में उचका गांव थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर अभियुक्त की गिरफ्तारी और अवैध हथियार की बरामदगी के लिए आरोपी के संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इसके बाद से आरोपी फरार है। पुलिस अब अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए मानवीय और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर लगातार छापेमारी कर रही है। नगर थाना क्षेत्र के चौराव गांव के पास एक तेज रफ्तार गाड़ी का कहर आज देखने को मिला। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के चालक ने नियंत्रण खो दिया और अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो ने ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दिया। इस दुर्घटना में स्कॉर्पियो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और हादसे में स्कॉर्पियो में सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं महिला और मासूम बच्चे सहित तीन लोग इसमें जख्मी है, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है और नगर थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस स्कॉर्पियो हादसे में जिस व्यक्ति की मौत हुई है उनकी पहचान हथुआ थाना क्षेत्र के मछागर लच्छीराम गांव निवासी 25 वर्षीय राम प्रवेश पंडित के रूप में हुई है, जो एल्युमिनियम का काम करते थे। वहीं इस हादसे में चालक की पत्नी मनीषा और 4 वर्षीय बेटा आर्यन घायल हो गए हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि सामने से आ रहे एक ट्रक से बचने के प्रयास में ड्राइवर ने स्टेयरिंग घुमाया, जिससे गाड़ी अनियंत्रित हो गई और जाकर ट्रैक्टर ट्रॉली में टकरा गई। इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया, तो वहीं सूचना मिलने के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम भी मच गया। फुलवरिया थाना क्षेत्र के रघुनंदनपुर उर्फ चमारी पट्टी गांव में शॉर्ट सर्किट से 2 मंजिले मकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों के संपत्ति के जलने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले ही घर का काम कराया गया था, जिसमें घर को काफी डेकोरेट किया गया था। आग की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों मुशक्कत के बाद आग को काबू किया गया। बताया जा रहा है कि यह आग चमारी पट्टी गांव के हरेश नाथ दीक्षित के घर में लगी। शॉर्ट सर्किट से लगी इस आग के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, भारी संख्या में लोग घटना

0: एवं संतुलित उपयोग तथा प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए प्रेरित करना था। विशेषज्ञों ने किसानों को बताया कि रासायनिक उर्वरकों विशेषकर यूरिया के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता एवं संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इसके स्थान पर जैविक एवं प्राकृतिक उपायों को अपनाकर न केवल मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है बल्कि उत्पादन लागत को भी कम किया जा सकता है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की संभावना थोड़ी बहुत अभी भी बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। ICS टॉपर बनकर शांभवी ने रचा इतिहास। बेटे के शादी के मटकोर में नाचती हुई माँ की हार्ट अटैक से हो गई मौत। दो स्मैक कारोबारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज पशु तस्करों पर भी कार्रवाई करते हुए 12 पशुओं को पुलिस ने किया जब्त। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर विष्णु सुगर मिल में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
5: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
5: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
5: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
7: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
7: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज।
3: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
5: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराश आ जाता है।
5: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
3: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
4: कहाँ पर?
3: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
4: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
3: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
4: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
8: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
9: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
8: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
9: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
11: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: ये सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: हर माता पिता का सपना होता है अपने बच्चे का ब्राइट फ्यूचर, एक ऐसा भविष्य जहां कॉन्फिडेंस, नॉलेज और वैल्यूज तीनों साथ हो।
4: और इस सपने को सच करने के लिए चुनिए मॉडर्न इंटरनेशनल एकेडमी यादवपुर चौक, जहां लर्निंग बनती है बच्चे की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन।
3: CBSE पैटर्न पर आधारित एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जहां क्वालिटी एजुकेशन के साथ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट सुनिश्चित किया जाता है।
4: 1.5 एकड़ का स्पेशियस कैंपस, बच्चों की सुरक्षा के लिए CCTV सर्विलेंस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, प्रोजेक्ट वर्क, क्विज कॉन्टेस्ट और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, पढ़ाई के साथ बेहतरीन प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट।
3: तो देर किस बात की, एडमिशंस ओपन, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल।
4: विजिट करें मॉडर्न इंटरनेशनल एकेडमी यादवपुर चौक के पूरब, NH 28, गोपालगंज।
3: कॉल 9931879996।
5: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
6: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
5: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
6: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
6: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
6: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
7: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
3: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
3: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27, बंजारी, गोपालगंज।
3: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, AC हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम,
4: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। CBSE पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक, सेशन 2026 से 27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
3: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
4: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और CCTV कैमरा की सुविधा,
3: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा, 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता, हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 8002221969 या 9117018350।
8: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिपचू को सुन रहे हैं।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62112 पे।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
5: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
6: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
5: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
6: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी गोपालगंज,
5: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86164।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
6: अरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
6: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98-523-52-599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-39-51-51 पे।
6: हर बच्चे के सपनों को चाहिए सही डायरेक्शन,
8: एंड दैट डायरेक्शन बिगिंस एट मेरिडियन, द स्कूल कनेक्टिंग द हार्ट एंड माइंड।
6: अ कंप्लीट इंग्लिश मीडियम CBSE स्कूल, वेयर लर्निंग इज नॉट जस्ट अबाउट बुक्स, इट्स अबाउट स्किल्स,
9: creativity and confidence.
10: Smart digital classrooms, GPS-enabled transport and holistic development through public speaking, leadership and creative thinking, mentored by IITN educators.
11: From playgroup to class 12th, with science and commerce streams and special foundation programs for IIT, NEET and Olympiad.
10: Here, we don't just teach, we build future leaders.
11: Admissions are open now. Don't miss the chance. Limited seats available.
10: Visit today, Meridian, the school, Kamla Rai Arts College ke paas, Gopalganj.
11: Call us 910-299-4962 or 910-299-4963.
12: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।

0: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा और हमारे एन्यूमरेटर्स हो सकता है कि कुछ प्रेजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये 2 फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पे ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पे जो बनने वाली हूँ सही सही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
5: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
6: कहाँ पर?
5: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
6: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
5: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है।
6: तो देर ना करें, ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज, कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
7: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु ओकर का भइल।
8: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुत डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
3: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
9: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। भारत ने बहुत तेजी से प्रगति की है। रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़कर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड एईआरबी ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना केकेएनपी इकाई 5 और 6 में प्रमुख उपकरण लगाने की अनुमति दे दी है। इसमें परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड को रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर, कूलेंट पंप सहित संयंत्र के प्रमुख उपकरणों को लगाने की अनुमति दी गई है। एईआरबी द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार इकाइयों के डिजाइन को संतोषजनक बहुस्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद अनुमति दी गई। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थितियों के बीच ऊर्जा आपूर्ति, नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि देशभर में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। देशभर में कल 2,300 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। सरकार ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान भारतीय ध्वज वाले किसी भी पोत के साथ किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि उड़ान की स्थिति में सुधार हो रहा है और क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से भारत के लिए अतिरिक्त उड़ानें चलाई जा रही हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास ने ईरान से बाहर निकलने के लिए 2,490 भारतीय नागरिकों को सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध कराई है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कहा है कि चलन में मौजूद 2,000 रूपये मूल्य वर्ग के 98.47% नोट वापसी की घोषणा के 3 साल बाद बैंक में वापस आ गए हैं। केंद्रीय बैंक ने अपने मुद्रा प्रबंधन अभ्यास के हिस्से के रूप में 19 मई 2023 को 2,000 रूपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। उस समय प्रचलन में ऐसे नोटों की कुल कीमत लगभग 3.5 लाख करोड़ रूपये थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 30 अप्रैल 2026 तक ये आंकड़ा तेजी से घटकर 5,451 करोड़ रूपये हो गया है। नोटबंदी की घोषणा के बाद से 2,000 रूपये के नोटों को बदलने की सुविधा 19 आरबीआई कार्यालयों में उपलब्ध है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि वापसी के बावजूद 2,000 रूपये के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 4 साल पहले लागू हुए भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीपीए ने भारतीय किसानों, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों और अन्य व्यवसायों के लिए परिवर्तनकारी अवसर पैदा किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध मजबूती से आगे बढ़ते हुए 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
2: श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। फार्स समाचार एजेंसी सहित ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि देश का नेतृत्व आंतरिक अस्थिरता की अटकलों को निराधार सिद्ध करने के लिए कार्य कर रहा है। यह राजनयिक गतिरोध पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में बढ़ती हिंसा के बीच आया है। उधर लेबनान में इसराइली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। पिछले महीने अमरीका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हमलों में दक्षिणी शहर टायर में नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए जिसमें कई इसराइली सैनिक घायल हो गए। लेबनान में चल रहे इस संघर्ष में अब तक 2000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: टेनिस में मैड्रिड ओपन के महिला एकल फाइनल में मीरा एंड्रीवा का सामना आज यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक से होगा। मीरा एंड्रीवा ने पिछले गुरुवार को सेमीफाइनल में अमेरिका की हेली बैप्टिस्ट को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं मार्टा कोत्स्युक ने अनास्तासिया पोटापोवा को हराकर अपने करियर के पहले WTA फाइनल में जगह बनाई। पुरुष एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जैनिक सिनर ने कल आर्थर फिल्स को हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। बैडमिंटन में डेनमार्क के होर्सन्स में खेले जा रहे थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। लक्ष्य सेन ने पहले मैच में चोउ तिएन चेन को हराकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चिउ हिस्यांग चिए और वांग ची लिन को हराया। अंत में आयुष शेट्टी ने लिन चुन ये को हराकर टीम की जीत सुनिश्चित की। पीवी सिंधु की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम उबर कप 2026 में ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई। चीन के खिलाफ हार के बाद टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। फुटबॉल में भारतीय टीम AFC अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंटी ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर और एक गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर ही 226 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया।

0: के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे श्री अजय राय के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद कनक। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी आज के अखबारों की पहली खबर है। देशबंधु लिखता है गैस सिलेंडर के दाम में 973 रुपए की बढ़ोतरी। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है दाम 3000 के पार। अमर उजाला ने महंगाई का वार शीर्षक से लिखा है 5 किलो वाले छोटू के दाम 261 रुपए बढ़े। पत्र ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान दिया है, आम उपभोक्ताओं पर असर नहीं। हिन्दुस्तान लिखता है बाजार पर जल्द दिखेगा असर। जनसत्ता का कहना है घरेलू गैस पेट्रोल और डीजल में भी बढ़ोतरी का खतरा। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर जनसत्ता लिखता है नशे में मान, विपक्ष परेशान आप हलकान। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है विशेष सत्र में मान सरकार ने जीता विश्वास, कांग्रेस का वॉकआउट, अकाली भाजपा रहे गैर मौजूद। नवभारत टाइम्स ने नोएडा से 15 जून से घरेलू उड़ानों के समाचार को अपनी पहली खबर बनाया है। साथ ही 13 मई तक गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री सफर की जानकारी दी है। पत्र ने सूरत में देश के पहले बैरियर फ्री टोल प्लाजा की तस्वीर भी दी है। बरगी डैम क्रूज हादसे की दर्दनाक खबर अनेक अखबारों के पहले पृष्ठ पर है। मां के सीने से लिपटे बच्चे के शव का सिहरन पैदा कर देने वाला चित्र देते हुए राजस्थान पत्रिका लिखता है सांसें थम गई पर मां की बाहें नहीं खुली। लोकसत्य के शब्द हैं मां की ममता, लाइफ जैकेट में छिपा लिया जिगर का टुकड़ा। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है डूबा क्रूज मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ओर से संचालित किया जा रहा था, इसीलिए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह बनाना होगा। केवल घटना पर शोक जताने या फिर मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा मात्र से कर्तव्य की तिश्री नहीं की जानी चाहिए। पत्र लिखता है ये कहने में हर्ज नहीं कि भारत में हर स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर लापरवाही वाही बरतने का शर्मनाक सिलसिला जारी है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया, कहा ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में थॉमस कप के सेमीफाइनल में डेनमार्क में भारत की पुरुष टीम का सामना फ्रांस से और भारत की महिला फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: एडमिशन फ्री
1: कहाँ पर?
0: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल छवही खास गोपालगंज,
1: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
0: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
1: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास NH 27 गोपालगंज, कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101 87952। नियम और शर्तें लागू।
5: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोसमोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का

0: प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
1: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादूपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज।
6: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
5: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
6: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
5: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
6: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल 9939721308।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: हर बच्चे के सपनों को चाहिए सही डायरेक्शन।
7: एंड दैट डायरेक्शन बिगिंस एट मेरिडियन, द स्कूल कनेक्टिंग द हार्ट एंड माइंड।
6: अ कंप्लीट इंग्लिश मीडियम CBSE स्कूल, वेयर लर्निंग इज नॉट जस्ट अबाउट बुक्स, इट्स अबाउट स्किल्स, creativity and confidence.
7: Smart digital classrooms, GPS enabled transport and holistic development through public speaking, leadership and creative thinking, mentored by IITN educators.
6: From playgroup to class 12th, with science and commerce streams and special foundation programs for IIT, NEET and Olympiad.
7: Here, we don't just teach, we build future leaders.
6: Admissions are open now. Don't miss the chance. Limited seats available.
7: Visit today, Meridian, the school, Kamla Rai Arts College ke paas, Gopalganj.
6: Call us 910-299-4962 or 910-299-4963.
8: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
9: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
10: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
11: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
12: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
13: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक थावे रोड गोपालगंज।
14: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
5: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
5: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
7: कॉल करे 87894-18744।
8: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
10: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
10: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
11: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
10: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
11: जानकारी है तो कॉल करे 62052112 पे।
12: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
11: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
10: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
13: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
10: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
14: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
15: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
14: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
15: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: आपका संदेश मिला कार्यक्रम।
8: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आज से शुरू। घर घर जाकर प्रगणक लेंगे जानकारी। भारत और नेपाल के बीच आज काठमांडू में मानसून अवधि के दौरान बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा होगी। BPSC ने अप्रैल में आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा रद्द किया। और मौसम विभाग का आज प्रदेश के कई भागों में मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश का अलर्ट। कई मई महीने में सामान्य से अधिक वर्षा का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत आज से मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य आरंभ हो गया है। ये गणना स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुई है। गृह मंत्रालय के अनुसार ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच प्रदेश में कल स्वगणना की प्रक्रिया समाप्त हो गई। जिन नागरिकों ने स्वगणना नहीं की है, प्रगणक उनके घर जाकर जानकारी दर्ज करेंगे। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें नागरिकों की आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता, जाति और अन्य सामाजिक आर्थिक विवरण दर्ज किए जाएंगे। भारत और नेपाल के बीच आज काठमांडू में मानसून अवधि के दौरान बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा के लिए बैठक होगी। इस बैठक में भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल करेंगे। इससे पहले काठमांडू में आयोजित दो दिवसीय भारत नेपाल कोसी और गंडक परियोजनाओं की संयुक्त समिति की 11वीं बैठक में दोनों पक्षों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी है। बैठक में नेपाल ने प्रदेश के पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के 35 किलोमीटर नेपाली भाग, कोसी बराज, गंडक बराज और मुख्य पश्चिमी नहर के भागों को शीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराने की सहमति दी है। इसके साथ ही पश्चिम कोसी मुख्य नहर के बांधों पर लगाए गए बिजली के खंभों को स्थानांतरित करने को भी मंजूरी दे दी है। जल संसाधन विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस निर्णय से नहर और उसकी सेवा पथ के संचालन कार्य में कठिनाइयों को दूर किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में सुशासन स्थापित है और इसे चुनौती देने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। गया जी में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने संकेतों में कहा कि अपराधियों के लिए राज्य में कोई जगह नहीं है।
9: नाम हमारी सरकार करते रहने का।
8: वहीं नालंदा के सरमेरा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के लंबित प्रशासनिक मामलों के निपटारे के लिए 19 मई से पंचायत स्तर पर सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके तहत सभी पंचायतों में प्रत्येक महीने पहले मंगलवार को शिविर का आयोजन किया जाएगा।
1: प्रत्येक पहले मंगलवार को 19 मई से इस अभियान की शुरुआत करेंगे साथियों, और आपके पंचायत में जाकर ये तीन चीजों की दिक्कत आम लोगों की होती थी, ब्लॉक, अंचल और थाना, इन तमाम समस्या को समाप्त करने का काम हमारी सरकार करेगी साथियों।
8: उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि गंभीर अपराधों के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति को सख्ती से लागू किया गया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि आपराधिक घटनाओं के मामले में त्वरित कार्रवाई कर अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है।
9: देख रहे हैं कि हत्या या अपराध के मामले में कैसे जीरो टॉलरेंस की नीति है। कोई हत्या होती है और अपराधी 24 घंटे के अंदर खुद पुलिस के गोली का शिकार होता है, अगर वो बदमाशी करके पुलिस के साथ भी कोई के हिंसात्मक कार्रवाई, तो जो भी घटना घटी है, जो भी अपराधी है, उसके खिलाफ मुकम्मल और सख्त कार्रवाई होगी।
8: बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी AEDO परीक्षा रद्द कर दिया है। आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार अभ्यर्थियों के व्यापक हित और कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित करने की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि 14 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच आयोजित परीक्षा के दौरान 32 अभ्यर्थियों को कदाचार और गड़बड़ी के आरोप में पकड़ा गया था। वहीं आयोग ने 23 अप्रैल को आयोजित सहायक लोक स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी की लिखित परीक्षा को भी रद्द कर दिया है। तेल विपणन कंपनियों ने LPG के 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 993 रुपए की बढ़ोतरी की है। पटना में अब व्यावसायिक सिलेंडर की नई कीमत 3,346 रुपए 50 पैसे होगी। हालांकि घरेलू LPG सिलेंडरों की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों पर सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं है।
10: देखिए, अब अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति है, अब उस पर कंट्रोल भारत का तो है नहीं, और उसके कारण अगर कहीं दाम बढ़ रहा है तो उस स्थिति का सामना तो सब लोगों को करना पड़ेगा।
8: केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थितियों के बीच ऊर्जा आपूर्ति, नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि देश भर में LPG की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। कल देश भर में 2,300 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। मंत्रालय ने बताया कि औद्योगिक आधार पर ऑनलाइन LPG सिलेंडर बुकिंग 98% तक बढ़ गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि मई महीने में राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहने का पूर्वानुमान है, वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। इस दौरान लू चलने की भी आशंका जताई गई है। इस बीच विभाग ने आज प्रदेश के कई भागों में मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है।
1: दिनांक 2 मई राज्य के अधिकांश जिलों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के अधिकांश जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान नवादा जिले के रजौली में सबसे अधिक 58.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान औरंगाबाद और रोहतास जिले के कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कहा है कि चलन में मौजूद 2000 रुपए मूल्य वर्ग के 98.47% नोट 3 साल की अवधि में बैंक में वापस आ गए हैं। केंद्रीय बैंक ने अपने मुद्रा प्रबंधन अभ्यास के हिस्से के रूप में 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। उस समय प्रचलन में ऐसे नोटों की कुल कीमत 3.56 लाख करोड़ रुपए थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 30 अप्रैल 2026 तक यह आंकड़ा तेजी से घटकर 2,451 करोड़ रुपए हो गया है। नोटबंदी की घोषणा के बाद से 2000 रुपए के नोटों को बदलने की सुविधा 19 आरबीआई कार्यालयों में उपलब्ध है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि वापसी के बावजूद 2000 रुपए के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। लोजपा रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि केंद्र सरकार मजदूरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री पासवान ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य मजदूरों के कौशल और उनकी मेहनत से ही प्राप्त होगा।
2: जब मेरे प्रधानमंत्री एक विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं और 2047 तक देश को एक विकसित देश बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे मजदूर साथियों की है, जो देश की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। मेरी सरकार ने समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजदूरों के हितों के संरक्षण के लिए कई फैसले, कई कानून बनाने का काम किया।
0: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICUR द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय आवश्यक सहायक उत्पाद सूची NLEAP पहल के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चिकित्सा सहायक प्रौद्योगिकियों के लिए मानक जारी किए हैं। एक रिपोर्ट।
3: BIS द्वारा कोहनी, बैसाखी, चलने वाली छड़ियां और 3 या अधिक पैरों वाली चलने की छड़ियों के लिए मानक प्रकाशित किए गए हैं। इसके अलावा BIS ने स्पर्शनीय मार्गदर्शक मानचित्रों के सुलभ डिजाइन, सूचना सामग्री, चित्रांकन और प्रदर्शन विधियों, साइनेज उपकरण और उपकरणों पर ब्रेल के अनुप्रयोग और पोर्टेबल रैंप के लिए भी मानक प्रकाशित किए हैं। NLEAP दस्तावेज का उद्देश्य नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और संबंधित हितधारकों के लिए सहायक उत्पादों के प्रावधान के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करना और साथ ही देश भर में सहायक प्रौद्योगिकियों के विकास में सहयोग करना है। ये मानक सुरक्षा, एर्गोनॉमिक्स, प्रदर्शन, फिनिश, कारीगरी और निर्माता द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी से संबंधित आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय आज हैदराबाद में आत्मनिर्भर पंचायत पहल पर एक आउटरीच कार्यशाला आयोजित कर रहा है। इस कार्यशाला के माध्यम से प्रतिभागियों को आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम की परिकल्पना, उद्देश्य और कार्यप्रणाली से परिचित कराया जाएगा। ये कार्यक्रम पंचायती राज मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहल है। कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज मुख्य भाषण देंगे। इस दौरान वे आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम की व्यापक सोच और उसकी परिकल्पना को सामने रखेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटर और मैट्रिक की कंपार्टमेंटल परीक्षा आज से शुरू हो रही है। मैट्रिक की कंपार्टमेंटल परीक्षा 6 मई तक तथा इंटर की परीक्षा 11 मई तक दो पालियों में संचालित होगी। बोर्ड ने कहा है कि कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन के लिए विभिन्न जिलों में परीक्षा केंद्रों पर तैयारी पूरी कर ली गई है। अररिया जिला स्थित आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश के लिए आज से प्रक्रिया की होगी शुरुआत। केंद्र का संचालन कला और संस्कृति विभाग के तहत किया जाता है। अरवल जिले के कृषि भवन सभागार में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर मजदूरों के अधिकार और कर्तव्य विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न प्रखंडों के श्रम परिवर्तन पदाधिकारी और श्रमिक संगठनों के कई नेताओं ने भाग लिया। वहीं सीतामढ़ी जिले के डुमरा स्थित संयुक्त श्रम भवन में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आज से शुरू। घर घर जाकर प्रगणक लेंगे जानकारी। भारत और नेपाल के बीच आज काठमांडू में मानसून अवधि के दौरान बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा होगी। बीपीएससी ने अप्रैल में आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा को रद्द किया। और मौसम विभाग का आज प्रदेश के कई भागों में मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश का अलर्ट। मई महीने में सामान्य से अधिक वर्षा का पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
3: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
4: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
5: हर माता पिता का सपना होता है अपने बच्चे का ब्राइट फ्यूचर, एक ऐसा भविष्य जहां कॉन्फिडेंस, नॉलेज और वैल्यूज तीनों साथ हों।
6: और इस सपने को सच करने के लिए चुनिए मॉडर्न इंटरनेशनल एकेडमी यादवपुर चौक, जहां लर्निंग बनती है बच्चे की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन।
5: CBSE पैटर्न पर आधारित एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जहां क्वालिटी एजुकेशन के साथ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट सुनिश्चित किया जाता है।
6: 1.5 एकड़ का स्पेशियस कैंपस, बच्चों की सुरक्षा के लिए CCTV सर्विलेंस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, प्रोजेक्ट वर्क, क्विज कॉन्टेस्ट और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, पढ़ाई के साथ बेहतरीन प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट।
5: तो देर किस बात की, एडमिशंस ओपन, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल।
6: विजिट करें मॉडर्न इंटरनेशनल एकेडमी यादवपुर चौक के पूरब, NH 28 गोपालगंज।
5: कॉल 9931879996।
7: सुनिए,
8: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
7: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
8: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
7: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, AC हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम,
6: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। CBSE पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक, सेशन 2026-27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
5: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
6: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और CCTV कैमरा की सुविधा,
5: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा, 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता, हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 8002221969 या 9117018350।
9: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। तो दोस्तों, हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको कॉल करना होगा हर रविवार 12 बजे से हमारे स्टूडियो के नंबर 8029-94-21 8029-94-21 पर। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं रेडियो रिमझिम के इस रोमांचकारी खेल के रूल्स को। इस हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे 10 प्रश्न, हर प्रश्न के होंगे 3 ऑप्शन, जिसमें से होगा एक सही जवाब और आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। यदि आप 10 सेकंड में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप इस खेल से बाहर हो जाएंगे। 10 प्रश्न के सही जवाब देने वाले प्रतिभागी को मिलेगा रेडियो रिमझिम के तरफ से एक एक्साइटिंग गिफ्ट और हमारे स्टूडियो में आने का मौका। तो दोस्तों, आपको अपने तरफ से इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके मोबाइल में पर्याप्त बैलेंस हो। साथ ही हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के दौरान शांत जगह से कॉल करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी से सहायता ना ले और इंटरनेट पर जवाब सर्च ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट को और लेते हैं पहले प्रतिभागी का कॉल।
10: हेलो।
11: हेलो,
10: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
11: नमस्ते मैम।
10: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
11: मैं मनोज कुमार बोल रहा हूँ प्रयागराज से।
10: जी, कैसे हैं मनोज जी।
11: ठीक है मैम।
10: तो क्या करते हैं आप मनोज।
11: किसी से नहीं,
10: मतलब से?
11: जी आज मतलब है ना, मतलब ये आज जो संडे था ना तो खेल शुरू है ना, खेल तो मैंने शुरू है ना?
10: हाँ खेल शुरू है
11: जी, वही हमने सोचे गलत नाम लगा दी नहीं जा नहीं। जी,
10: तो जी आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है?
11: हमारी पढ़ाई अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है
10: जी,
11: जी अगले साल 2025 में कंप्लीट हुई है
10: जी जी जी। तो आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
11: जी पापा का नाम है अनिरुद्ध सिंह और मम्मी का नाम है राम दुलारी देवी
10: जी।
11: जी
10: तो शुरू किया जाए आज का पहला प्रश्न लिया जाए आपसे।
11: यस मैम।
10: ओके

0: आपसे आपका पहला प्रश्न ये है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी H2O और ऑप्शन सी H2O। आपका समय शुरू होता है अब।
1: H2O विकल्प नंबर सी H2O।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: तो लॉक कर दो।
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए मनोज जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी H2O को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, कौन सा पक्षी है जो पानी में तैर सकता है और आकाश में उड़ भी सकता है? कौन सा पक्षी है जो पानी में तैर सकता है और आकाश में उड़ भी सकता है? ऑप्शन ए पेंगुइन, बी बतख और सी किंगफिशर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन नंबर ए
0: पेंगुइन।
1: यस मैम।
0: श्योर है?
1: मैम ऑप्शन क्या क्या था?
0: ऑप्शन ए पेंगुइन, बी बतख, सी किंगफिशर।
1: ये तो बतख है।
0: बतख
1: बी।
0: श्योर है?
1: जी।
0: लॉक करूं? लॉक कर दूं ना?
1: जी
0: जी। तो चलिए मनोज जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बतख को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा किंगफिशर। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्ते।

0: सोडियम का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए S1, ऑप्शन बी Na और ऑप्शन सी SO2। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन बोलिएगा फिर से।
0: ऑप्शन ए S1, बी Na, सी SO2। हेलो
1: Na को फिक्स कीजिए मैम।
0: Na
1: मैं SO2 को फिक्स कीजिए।
0: SO2 को ऑप्शन सी।
1: यस मैम।
0: श्योर है?
1: नहीं मैम श्योर तो नहीं, फिक्स कीजिए।
0: चलिए तो जहाज जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी SO2 को लॉक करते हैं। और आपको बता दे कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा Na, ऑप्शन बी।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: टॉप रामू काका, हाई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
4: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
3: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
4: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
3: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
4: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
5: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
3: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
7: कहाँ पर?
6: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, चवही खास, गोपालगंज,
7: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
6: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है।
7: तो देर ना करें, ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
8: रामू हरिया, कल तैयार रही लो पराली जलाए जले के बा?
9: ठीक बा भैया।
10: ए भैया, एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दियल जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
8: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता?
10: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियत जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
8: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता?
10: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
8: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराए जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएम जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी देके।
10: याद रखी, ठूठ कूड़ा ना, खेती के गहना नहा, एकरा के जराई मत माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
11: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
12: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
13: अब हर चिंता का

0: समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
0: यहाँ आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
0: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
0: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 80 29 94 921 80 29 94 921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
3: हेलो।
4: हाँ नमस्ते।
3: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
4: जी कमरान नफीस, दिल्ली चौकड़ी सुल्तान।
3: जी तो कैसे हैं कमरान जी?
4: जी अच्छा हूँ, आप कैसे हैं?
3: मैं भी बढ़िया हूँ।
4: और सब बढ़िया?
3: जी जी सब बढ़िया है। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है कमरान जी आपकी?
4: जी जी जी जी लगे
3: पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी एक बार बता दीजिए।
4: मेरा ग्रेजुएशन कम्प्लीट है।
3: जी उसके बाद पढ़ाई चल रही है कि छोड़ दिए हैं?
4: नहीं मैं छोड़ दिया था 14 दिन।
3: जी तो शुरू करें?
4: जी जी
3: जी। अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए आप।
4: मोहम्मद रशीद अहमद खान।
3: जी और आपसे आपके पहला प्रश्न लिया जाए?
4: जी
3: जी

0: तो कमरान जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? ऑप्शन ए भोज, बी वर्षराज और सी नागभट्ट। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए क्वेश्चन, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था?
1: प्रतिहार वंश का महानतम राजा।
0: हाँ,
1: ऑप्शन क्या था?
0: ऑप्शन ए भोज, बी वर्षराज, सी नागभट्ट।
1: नागभट्ट।
0: श्योर हैं?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए कमरान जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी नागभट्ट को लॉक करते हैं। जी, और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा वर्षराज। जी, बहुत बहुत हेलो
2: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: सोनू दुबे बात कर रहा हूँ, पीर पार्टी से।
0: जी, कैसे हैं सोनू जी?
2: बढ़िया है, आप बताइए।
0: हम भी बढ़िया है। तो सोनू जी, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है?
2: अब ये सेकेंड ईयर चल रहा है ना।
0: जी, और आगे क्या करना है, सोचा है कुछ आपने?
2: सिविल सर्विसेज की तैयारी अभी कर रहा हूँ।
0: सही जा रहे हैं क्या अभी आप?
2: हाँ हाँ, चल रहे हैं अब। ठीक है, मैं रुक गया।
0: तो शुरू किया जाए आज का खेल आपके साथ।
2: जी,
0: आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: मम्मी का नाम कालिंदा देवी और पिताजी का नाम संतोष देवी।
0: जी, तो सुनो जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है,

0: जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
1: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजन के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 80029-94-21 80029-94-21 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
3: हेलो,
4: स्वागत है टीम के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
3: नमस्ते मैम।
4: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
3: मैं प्रियंका पटेल बोल रही हूँ, झांसी से।
4: प्रियंका?
3: हाँ, झांसी से।
4: प्रियंका माझा से?
3: झांसी, झांसी,
4: झांसी।
3: हाँ,
4: अच्छा, तो पहली बार कॉल की है प्रियंका जी?
3: हाँ हाँ मैम, पहली बार कॉल की है।
4: तो कहाँ से पता चला आपको इसके बारे में?
3: मेरे भैया दिल्ली में रहते हैं, तो वो दिव्यांग है, तो कॉल लगाते हैं आपके पास, तो मुझसे बोले कि आपकी बात करनी है, आप मतलब बता सकते हैं, सोच सकते हैं। मैम,
4: तो कैसी हैं प्रियंका जी?
3: मैम बिल्कुल ठीक हूँ।
4: पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
3: मैम 12वीं तक।
4: 12वीं तक, और सोचा है कुछ आगे क्या करना है?
3: हाँ मैम, अभी तो ग्रेजुएशन करेंगे।
4: अच्छा, अभी ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद क्या बात है। चलिए बढ़िया है। तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए प्रियंका जी।
3: मैं मेरे पापा का नाम रवि जी, मम्मी का नाम लक्ष्मी देवी
4: जी। तो लिया जाए आपसे आज का प्रश्न पहला।
3: जी मैम।
4: पता है इसके बारे में सब कुछ? हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के बारे में पता है, इसका रूल रेगुलेशन जो भी है?
3: नहीं मालूम।
4: नहीं मालूम है। तो प्रियंका जी, इसमें आपका 10 प्रश्न होगा जी, और 10 प्रश्न के साथ आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से एक सही उत्तर आपको बताने होंगे जो कि ऑप्शन में होंगे
3: जी।
4: और हर जवाब के लिए आपको 10 सेकंड दिया जाएगा
3: जी।
4: जी, तो शुरू किया जाए
3: जी।
4: तैयार हैं?
3: हाँ
4: जी।

0: तो प्रियंका जी आपसे पहला प्रश्न ये है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी HO2 और ऑप्शन सी H2O। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम H2O।
0: H2O श्योर है?
1: हाँ।
0: लॉक कर दो।
1: जी।
0: तो चलिए प्रियंका जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी H2O को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, योजना आयोग कब समाप्त किया गया था? योजना आयोग कब समाप्त किया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 2014, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2012 और ऑप्शन सी 26 जनवरी 2015। आपका समय शुरू होता है अब।
1: 26 जनवरी 2015।
0: श्योर हैं?
1: जी मैम।
0: जी तो प्रियंका जी लॉक कर दे 26 जनवरी 2015 को।
1: जी मैम।
0: जी तो चलिए आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 26 जनवरी 2015 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा 15 अगस्त 2014। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो डिविजन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: नमस्ते मैम।

0: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: सालू कुमारी, मैंने उस बार फोन किया था।
0: जी जी, कैसी हैं सालू जी?
1: जो आप बताइए।
0: मैं भी बढ़िया हूँ। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है सालू जी?
1: 8th तक।
0: 8th तक?
1: हाँ, अभी पढ़ रहे हैं 8th का। अब 9th में जाने वाले हैं।
0: तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए सालू।
1: मम्मी का नाम है निर्मला देवी और पापा का नाम है बलेंद्र कुमार प्रसाद
0: जी। और अगला संडे आप ही डिनर बनी थी ना?
1: यस मैम
0: जी।
1: तो उससे क्या होता है?
0: उससे यही होगा, हमारे रिश्तेदार साहब को कॉल जाएगा, कुछ गिफ्ट मिलता है। ठीक है, तो हमारे डायरेक्टर सर जो है वो तय करेंगे कि क्या देना है, कब बुलाना है और कब देना है। ठीक है।
1: यस मैम
0: जी। तो तैयार हैं आप आज के खेल के लिए? शुरू किया जाए।
1: यस मैम
0: जी।

0: तो सालू जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? ऑप्शन ए भोज, बी वर्षराज और सी नागभट्ट। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन ए क्या था?
0: भोज,
1: हाँ,
0: बी वर्षराज और सी नागभट्ट।
1: सी नागभट्ट।
0: श्योर हैं?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दूँ?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए सालू जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी नागभट्ट को लॉक करते हैं। और आपको बता दें ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा वर्षराज। हेलो कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: हर बच्चे के सपनों को चाहिए सही डायरेक्शन।
4: एंड दैट डायरेक्शन बिगिंस एट मेरिडियन, द स्कूल कनेक्टिंग द हार्ट एंड माइंड।
3: अ कंप्लीट इंग्लिश मीडियम CBSE स्कूल, वेयर लर्निंग इज नॉट जस्ट अबाउट बुक्स, इट्स अबाउट स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड कॉन्फिडेंस।
4: स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स, GPS enabled ट्रांसपोर्ट एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप एंड क्रिएटिव थिंकिंग, मेंटोर्ड बाय IITN educators.
3: From playgroup to class 12th with science and commerce streams and special foundation programs for IIT, NEET and Olympiad.
4: Yeah, we don't just teach, we build future leaders.
3: Admissions are open now. Don't miss the chance. Limited seats available.
4: Visit today Meridian, the school Kamla Rai Arts College ke paas, Gopalganj.
3: Call us 910-299-4962 or 910-299-4963.
5: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
6: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
5: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
7: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
8: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
9: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
8: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
9: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
8: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
9: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
8: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
9: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
8: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
9: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी गोपालगंज,
8: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779786164।
10: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा और हमारे एन्यूमरेटर्स हो सकता है कि कुछ प्रेजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये 2 फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पे ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हो सही सही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-21 8029-94-21 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
1: क्या हेलो मैम।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
1: विमल कुमारी बोल रही हूँ, लाइन बाजार से।
0: विमल कुमारी
1: जी, लाइन बाजार।
0: कहाँ पड़ता है आपका लाइन बाजार।
1: टैक्स में आता है इधर लाइन बाजार, जो बथ वाले रोड है ना उधर ही फुलवरिया बथ वाले रोड में आता है हम लोग लाइन बाजार।
0: अच्छा, तो क्या करती हैं विमल जी।
1: अभी तो पढ़ाई बंद हो गया है, सब पढ़ाई कंप्लीट हो गया, ग्रेजुएशन कर लिया है, बाकी अब कुछ वो रीजन से पढ़ाई नहीं हो पा रही है मास्टर लाइन में डीएलएड का।
0: तो ग्रेजुएशन कब फाइनल किया
1: है। ग्रेजुएशन मेरा फाइनल हुई 2022 में।
0: अच्छा, तो हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की है तो क्या जाए खेल आज आपके साथ।
1: जी
0: आज का खेल शुरू किया जाए आपके साथ।
1: जी जी
0: जी। तो विमल जी, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
1: जी, मेरे पापा जी का नाम श्री रामा जी प्रसाद है और मम्मी का नाम प्रभासी देवी।
0: जी, तो लिया जाए ना पहला प्रश्न।
1: जी
0: जी,

0: तो विमल जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, सोडियम का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए S1, बी Na और सी SO2। आपका समय शुरू होता है अब। हेलो
1: जी, बोलिए।
0: सही उत्तर बताइए।
1: आवाज कट आ रहा मैडम जी।
0: क्वेश्चन सुनाई नहीं पड़ा कि ऑप्शन?
1: आवाज आपका कट के आगे बीच में, पूरा फुल नहीं सुन पाए।
0: बोल रहे हैं कि सोडियम का रासायनिक नाम क्या है? आवाज
1: जी।
0: ऑप्शन ए S1, बी Na और सी SO2। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी
0: Na।
1: हाँ
0: श्योर है?
1: हाँ
0: ओके। तो चलिए विमल जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी Na को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी जी
0: जी। आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1874, बी 1875, सी 1876। आपका समय शुरू होता है अब।

0: 1875।
1: श्योर है?
0: श्योर तो नहीं है मैम।
1: लॉक करूं?
0: हाँ कर दीजिए।
1: तो चलिए विमल जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 1875 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
0: जी।
1: आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी स्वीडन। आपका समय शुरू होता है अब।
0: ऑप्शन बी चीन।
1: चीन तो ऑप्शन में दिए ही नहीं हम आपको। ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है फ्रांस, सी है स्वीडन।
0: चीन सॉरी का ऑप्शन बी था। हाँ
1: ऑप्शन बी है फ्रांस।
0: फ्रांस
1: तो फ्रांस को
0: ऑप्शन सी
1: स्वीडन
0: कंफर्म नहीं है, कर दीजिए।
1: कौन सा करे, बी करे, सी करे, ए करे, कौन सा करे कंफर्म?
0: बी कर दीजिए। दोनों मेरा बी सही हो तो सकता है इसका भी बी हो, पर लगाइए लॉक कीजिए देखते हैं।
1: ऑप्शन बी
0: हाँ
1: फ्रांस।
0: हाँ
1: लॉक है, लॉक करें?
0: हाँ कर दीजिए।
1: चलिए तो चलिए विमल जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी फ्रांस को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्वीडन। हेलो क्वेश्चन कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम।
1: वेलकम।
0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: जूली कुमारी बोल रही हूँ, मैरवा से।
1: जी कैसी हैं जूली जी?
0: ठीक हूँ मैम, आप कैसी हैं?
1: हम भी बढ़िया हैं। तो जूली जी पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
0: मैम ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर अभी चल रहा है।
1: जी और आपका हॉबी क्या है?
0: हॉबी है कोई गवर्नमेंट जॉब, अभी तो पढ़ रही हूँ, पर भी कोई जॉब लेना है।
1: अच्छा, तो लिए थे आपसे आज का पहला प्रश्न।
0: जी मैम।
1: जी आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए। जूली
0: मम्मी का नाम गीता देवी, पिताजी का नाम श्री उमेश ठाकुर।
1: जूली जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है,

0: पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी H2O और ऑप्शन सी H2O। आपका समय शुरू होता है अब।
1: पहला ऑप्शन क्या बोली है मैं?
0: CO2।
1: तो ऑप्शन सी होगा
0: H2O।
1: जी H2O।
0: क्लियर है
1: जी?
0: लॉक कर दो।
1: जी मैम।
0: ओके, तो चलिए जुलू जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर H2O बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: जी, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, शक्ति के विभाजन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? शक्ति के विभाजन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, बी ब्रिटेन और सी फ्रांस। आपका समय शुरू होता है अब।
1: अमेरिका को लॉक कीजिए मैम।
0: श्योर है?
1: नहीं, श्योर नहीं है।
0: तो लॉक कर दूं?
1: जी
0: जी। तो चलिए जुली जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए अमेरिका को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा फ्रांस, टू का सिद्धांत। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
5: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
3: और 9097160602।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
9: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
7: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
9: यहाँ उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, NEBOSH और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
7: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
9: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
7: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने गोपालगंज।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-21 8029-94-21 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
10: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
10: आज जी नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
10: दिलीप राम, दिल्ली से।
0: कैसे हैं दिलीप जी?
10: और बताइए। बहुत बढ़िया है, आपका कैसे हैं?
0: हम भी बढ़िया हैं।
10: आज सीट बहुत खाली खाली सा लग रहा है।
0: खाली तो नहीं है,
10: आज लगाया तो लग गया, इसलिए और भी लगाते लगाते परेशान हो जाते थे, लगता ही नहीं था।
0: होता है कभी कभी कि लग साथ दे जाता है तो एक ही बार में लग जाता है तो।
10: लेकिन काफी मशक्कत के बाद जो है ना अभी लगे हैं और अभी 12 बजे के आपको 51 मिनट है उधर का।
0: ठीक है,
10: आप ठीक हैं?
0: जी हाँ, मैं बिल्कुल बढ़िया। तो शुरू किया जाए आज का खेल आपके साथ।
10: ठीक है।
0: तो मम्मी पापा का अपना नाम बता दीजिए आप।
10: मेरा बाबूजी का नाम श्री गरीब राम है, माँ के नाम श्री किशोरी देवी है। गाँव पड़ता है सिहोरवा मोतिहारी पूर्वी चंपारण।
0: जी, और पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
10: इंटर तक हुआ है।
0: इंटर जी, तो आपसे पहला प्रश्न लिया जाए?
10: जी बोलिए।
0: जी,

0: अच्छा आपका पहला प्रश्न ये है, बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी स्वीडन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: करीबन एक बार और बोलिएगा
0: क्वेश्चन या ऑप्शन।
1: नहीं नहीं क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, ऑप्शन पूछ रहे हैं।
0: ऑप्शन ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी स्वीडन।
1: जी तो इस पे रखिए, स्वीडन पर रखिए।
0: श्योर है?
1: लॉक का सहारे चलते हैं, आप लगाइए लॉक।
0: चलिए तो आपके ऑप्शन को लॉक करते हैं।
1: जी
0: और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर सी स्वीडन बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी बताया जाए।
0: दूसरा प्रश्न ये है, योजना आयोग कब समाप्त किया गया? योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 2014, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2012, ऑप्शन सी 26 जनवरी 2015। आपका समय शुरू है अब।
1: एक बार और बोलिएगा, 15 कितना बताया?
0: 15 अगस्त 2014, 2 अक्टूबर 2012, 26 जनवरी 2015।
1: तो पहला तो आप ऐसे ही लॉक कीजिए।
0: 15 अगस्त 2014
1: जी
0: कंफर्म है?
1: ये भी लॉक कहता आ रहे हैं।
0: तो चलिए दिलीप जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 15 अगस्त 2014 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न का उत्तर सही है तैयार
1: तीसरा है
0: जी। तीसरा प्रश्न आपसे ये है, आर्य समाज की स्थापना कब, आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 1874, बी 1875, सी 1874। आपका समय शुरू होता है अब।
1: इसका उत्तर और पूछा गया, इसका मतलब सी होगा, इसका होगा पूछा गया।
0: लॉक करूं?
1: लॉक करिए।
0: ओके
1: लेकिन दिमाग से उतर रहा है बात के, लेकिन साइड से उतर।
0: तो ऑप्शन सी लॉक करो ना।
1: ओके
0: तो चलिए दिलीप जी आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 1876 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा 1875 ना कि 76।
1: एक बार पूछा गया था मैंने, सुपर गया मेरे से, एक बार और पूछा गया था।
0: जी जी कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद
1: आपका, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
0: हेलो
2: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो फ्यूज कॉन्टेस्ट में।
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: नाम है सलोनी कुमारी बंजारी बलमस्तान गोपालगंज से।
0: जी कैसी है सलोनी जी?
2: अच्छी हूँ
0: जी। पढ़ाई कहाँ तक हुई आप?
2: बीए।
0: फर्स्ट ईयर चल रहा है? लास्ट ईयर।
2: लास्ट ईयर।
0: लास्ट ईयर। पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
2: अच्छी चल रही है।
0: चलिए बढ़िया है। मम्मी पापा का नाम बता दीजिए अपने।
2: मम्मी का नाम है सविता देवी और पापा जी का नाम है कुंदन लता।
0: जी तो शुरू किया जाए खेल को।
2: हाँ
0: तैयार है पहले प्रश्न के लिए?
2: हाँ।
0: ओके तो चलिए सलोनी जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है।
2: हाँ

0: देवभूमि किसको कहा जाता है? देवभूमि किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी बिहार, सी उत्तराखंड। आपका समय शुरू होता है अब।
1: उत्तराखंड।
0: हाँ
1: तो लॉक कर
0: दो। हाँ लॉक कर दो। ओके तो चलिए आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी उत्तराखंड को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: ओके आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, ₹2025 में भारत का पहला सौर ऊर्जा आधारित रेलवे स्टेशन कौन सा बना? 2025 में भारत का पहला सौर ऊर्जा आधारित रेलवे स्टेशन कौन सा बना, कहाँ बना है? ऑप्शन ए जयपुर, बी भोपाल, सी सूरत। आपका समय शुरू होता है अब।
1: सूरत।
0: श्योर है?
1: शोर तो नहीं है पर इसी को टिक कीजिए।
0: सब लग के सहारे चल रही है।
1: हाँ
0: चलिए तो चलिए सुनने जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर सूरत को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, सोडियम का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए SI, ऑप्शन बी NA और ऑप्शन सी SO2। आपका समय होता है अब।
1: NI को लगाइए।
0: NI?
1: हाँ।
0: SI है ऑप्शन ए, NA है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है SO2। तो किसको लगाएं?
1: NA को लगाइए।
0: ऑप्शन बी NA।
1: हाँ।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है पर लग रहा है यही होगा।
0: चलिए तो लॉक कर दें।
1: हाँ लॉक कर दीजिए।
0: तो सुनिए जी आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी NA को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1874, ऑप्शन बी 1875 और ऑप्शन सी 1876। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बी 1875।
0: श्योर है?
1: शोर यही होगा, शोर तो नहीं है।
0: चलिए तो लॉक कर दें।
1: हाँ लॉक कर दीजिए।
0: ओके तो चलिए सलोनी जी आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 1875 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप पांचवे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: ओके आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, शक्ति के विभाजन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? शक्ति के विभाजन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, बी ब्रिटेन और सी फ्रांस। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैं क्वेश्चन फिर से बोलिएगा।
0: क्वेश्चन?
1: हम्म।
0: आपका क्वेश्चन ये है कि शक्ति के विभाजन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया?
1: अमेरिका को टिक कीजिए। अमेरिका।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है पर लग रहा है यही।
0: ओके तो चलिए सलोनी जी आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए अमेरिका को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा फ्रांस।
1: ठीक है।
0: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दोस्तों ये रहा हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट का आज का एपिसोड। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर और बने हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के विनर। और हमें दीजिए अब जाने की इजाजत और रखिए अपना ख्याल। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-6575।
7: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
9: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
10: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200-42-34-03 6200-42-34-03।
11: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
12: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
11: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
12: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
11: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11001।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87-894-18744।

0: हर बच्चे के सपनों को चाहिए सही डायरेक्शन.
1: एंड दैट डायरेक्शन बिगिंस एट मेरिडियन, द स्कूल कनेक्टिंग द हार्ट एंड माइंड.
0: अ कंप्लीट इंग्लिश मीडियम CBSE स्कूल, वेयर लर्निंग इज नॉट जस्ट अबाउट बुक्स, इट्स अबाउट स्किल्स, creativity and confidence.
1: Smart digital classrooms, GPS enabled transport and holistic development through public speaking, leadership and creative thinking, mentored by IITN educators.
0: From playgroup to class 12th, with science and commerce streams and special foundation programs for IIT, NEET and Olympiad.
1: Here, we don't just teach, we build future leaders.
0: Admissions are open now. Don't miss the chance. Limited seats available.
1: Visit today, Meridian, the school, Kamla Rai Arts College ke paas, Gopalganj.
0: Call us 910-299-4962 or 910-299-4963.
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R. अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में.
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र.
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग.
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज.
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ.
3: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902.

0: ऊपर से जुर्माना भी लगी।
1: ऐसा का है, जरावला से काहे मना होता।
0: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। एक टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियत जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
1: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
0: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
1: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
0: याद रखी, ठूठ कूड़ा ना, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
2: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
3: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
2: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
3: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522384088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
3: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
4: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।

0: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा और हमारे एन्यूमरेटर्स हो सकता है कि कुछ प्रेजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये 2 फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पे ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हूँ सही सही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
2: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
1: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
2: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
3: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
2: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
3: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
2: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
3: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
6: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
5: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
5: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
5: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
7: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

0: कब भौजी? आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई लाकी ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क 99-393-65-930।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू सो एसएमएस फरमाइश के साथ समय 9:24 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है एक छोटा सा, जिसमें अपना नाम और गांव का नाम और गाने का नाम बताना है और फिर हम कुछ ही समय में आपकी फरमाइश प्ले करेंगे। यदि आप ऐसा चाहते हैं कि हम अपने पसंद के गाने सुने ओल्ड इज गोल्ड या 90s के, तो बिल्कुल इस कार्यक्रम में फरमा सकते हैं। हाँ, एक और बात कि आप सप्ताह में एक ही बार फरमा सकते हैं क्योंकि बहुत कम समय का यह कार्यक्रम है और कुछ मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए, तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और पहला मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि नमस्ते सोनू सर जी, हम दिलीप कुमार ठाकुर मिर्जापुर टू मोहाली पंजाब से, और आज मेरा भी फरमाइश सॉन्ग है ए आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं। सिंगर कुमार सानू की आवाज़ में, तो बिल्कुल आपके फरमाइश के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे।

कमल के सॉन्ग रेडियो रेम छी 90.4 FM पे सुन रहे हैं हम सभी कुमार शानू की आवाज में, और ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं। आगे मैसेज कई पहुंचे हुए, और आगे मैसेज जिनकी तरफ से पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक यू और आपको धन्यवाद है रेडियो रेम छी सुनने के लिए, और आप भी अभी बने रहे हमारे साथ, ऐसा ना हो कि गाने सुनने के बाद से आप दूर हो जाएं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे गाने की फरमाइश कही है, आगे बढ़ेंगे। आगे गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है, प्रीति रैदास विलेज लकड़ी दरगाह से करती हैं, और गाने का बोल देती हैं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मूवी से पा लिया है प्यार तेरा, अब नहीं खोना, ओ मेरे सोना तुम मेरे होना। तो बिल्कुल आपके गाने हम प्ले करेंगे। और आगे मैसेज कुछ पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि राधे राधे सोनू सर, मैं गोलू जयसवाल गुप्ला मठ से, और मुझे सॉन्ग सुनना है, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सर, मैं सन्नीराज पटेल हरिहरपुर से, तो बिल्कुल आपकी कई मैसेज हमारे पास पहुंची है और आज आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि क्या चाहूँ रब से तुम्हें पाने के बाद, क्या चाहूँ रब से तुम्हें पाने के बाद, किसका करूँ इंतजार तेरे आने के बाद, क्यों मोहब्बत में जान लुटा देते हैं लोग, मैंने भी यह जाना इश्क करने के बाद। सुनो भाई नमस्कार, और हम भी जुड़ गए हैं दिलीप राम दिल्ली से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में दिलीप जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हमको भी गाना सुनना है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश तो हम इस सप्ताह पूरी कर दिए हैं, और आपकी फरमाइश अब पूरी नहीं हो पाएगी, अगले सप्ताह का इंतज़ार करें और थोड़े दूसरों को भी मौका दें। आगे बढ़ेंगे और इस मैसेज को करती हैं निशा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि नाइस सॉन्ग, ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, अनिल जी छोटपुर से मैसेज करते हैं। बिल्कुल आगे मैसेज है, और मैसेज को रोकते हैं, गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश रेडियो रेम छी 90.4 FM पे।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
4: रामू हरिया, कल तैयार रहिए लो, पराली जलाए चले के बा।
5: ठीक बा भैया।
6: ए भैया, एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहा बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
4: ऐसा का है, जरावला से काहे मना होता।
6: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
4: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एक बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
6: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
4: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराए जाना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएम जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाई और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी देके।
6: याद रखी, ठूठ कूड़ा नहा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
7: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
8: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
7: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
8: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, NEBOS और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
7: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
8: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
7: पता, छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने गोपालगंज।
9: हर माता पिता का सपना होता है अपने बच्चे का ब्राइट फ्यूचर, एक ऐसा भविष्य जहां कॉन्फिडेंस, नॉलेज और वैल्यूज तीनों साथ हों।
7: और इस सपने को सच करने के लिए चुनिए मॉडर्न इंटरनेशनल एकेडमी यादवपुर चौक, जहां लर्निंग बनती है बच्चे की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन।
9: CBSE पैटर्न पर आधारित एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जहां क्वालिटी एजुकेशन के साथ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट सुनिश्चित किया जाता है।
7: 1.5 एकड़ का स्पेशियस कैंपस, बच्चों की सुरक्षा के लिए CCTV सर्विलेंस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, प्रोजेक्ट वर्क, क्विज कॉन्टेस्ट और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, पढ़ाई के साथ बेहतरीन प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट।
9: तो देर किस बात की, एडमिशंस ओपन, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल।
7: विजिट करें मॉडर्न इंटरनेशनल एकेडमी यादवपुर चौक के पूरब, NH 28 गोपालगंज।
9: कॉल 9931879996।
10: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
11: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
10: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
12: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
10: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड, भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
12: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
10: और 90971602।
5: Excuse me, boss. You have a text message.
13: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम पे। समय जो है 9:46 हो रहे हैं हमारे स्टूडियो घड़ी में और आगे कई मैसेज पहुंचा हुआ है। आगे मैसेज में लिखा गया है कि थैंक यू सो मच सर जी सॉन्ग प्ले करने के लिए और गाने में साथ देने के लिए। आपको धन्यवाद है रेडियो एमसीएम सुनने के लिए और गाने की फरमाइश करने के लिए ऐसी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सुपर सॉन्ग में सनी राज पटेल और इनके तरफ से भी गाने का फरमाइश पहुंचा हुआ है और गाने का बोल दिया गया है ममता की अनमोल खजाना कबो न दिल से तेजब धड़केला हरदम बेटा खातिर माई के करेजा। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि कुछ दूर हमारे साथ चलो हम दिल की कहानी कह देंगे, कुछ दूर हमारे साथ चलो हम दिल की कहानी कह देंगे, समझे ना जिसे तुम आँखों से वो बात जुबानी कह देंगे। सुनो भाई नमस्कार, सुना तुम्हारे होना सुपर सॉन्ग। और मैसेज करते हैं दिलीप जी और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है मेरा गाना कब बजेगा सर जी, बिल्कुल आपके गाने बजाएंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है लिखा

0: शिकार सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: भारत के 24 राज्यों में 160 से अधिक शहरों में 280 से ज्यादा स्कूल्स के साथ एजुकेशन में एक ट्रस्टेड नेम बिरला।
5: अब वही लेगेसी, वही एक्सेलेंस आ गया है आपके शहर गोपालगंज में।
4: इंट्रोड्यूसिंग बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशन्स आर नाउ ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 7।
5: और खास बात, प्ले ग्रुप के लिए लिमिटेड पीरियड फ्री एडमिशन।
4: मॉडर्न एजुकेशन विद AC क्लासरूम्स, डिजिटल लर्निंग, कंप्यूटर एंड साइंस लैब्स, लाइब्रेरी एंड सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी।
5: बिकॉज लर्निंग इज बियॉन्ड क्लासरूम्स। म्यूजिक, डांस, योगा एंड जूडो क्लासेस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑल टीचर्स आर BEd qualified and follow CBSE guidelines ensuring quality education.
4: Visit today Yadopur Road, Saraya Ward number 1, Shambhu Path, Saraswati Talkies ke paas Gopalganj.
5: Call now 775-994-9440 or 775-994-9441.

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो काफी सारे मैसेज हैं और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज पहुंचा हुआ है। लिख रहे हैं कि हेलो मैम, जानवी कुमारी बोल रहे हैं हम, और हम भी शो से जुड़ गए हैं, गाना सुनना चाहते हैं। ये तो सच है कि भगवान

0: है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो टिमटिम को। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ एक और मैसेज है, मनीष पांडे हैं, लिख रहे हैं कि रेडियो टीम के का हाल वाह, बिल्कुल बढ़िया है, रेडियो टीम का भी हाल चाल। एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, वॉइस पहुँचा हुआ है, और नाम धनंजय राव है, सिसई बाजार से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शो में जुड़े और फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि गाना कब बाजी, गाना बाजी की ना, तो बिल्कुल बाजी कहना बाजी। और मनीष जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और फरमाइश है तो बिल्कुल अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। और मनीष जी आप कहाँ से हैं ज़रूर बताइएगा। और यहाँ जमसर बाजार से जुड़ चुके हैं मंजेश सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश को। हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: हम थाने से बोल रहे हैं, रामाजी प्रसाद
0: जी, क्या हाल चाल बारामा जी?
1: हाल चाल ठीक बा, कल तो पूरा पानी भइल।
0: कल तो बढ़िया पानी भइल बाटे, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, वही ना। और सुनवाई के भी बा,
1: सब सुने, विमल के मैसेज अभी ना आइल
0: ना, विमल जी तो जुड़ चुकल बानी, पहले ही आए थे जी जी।
1: अच्छा, तो हम गोने बजा रहे थे, सुन लो जरा। ठीक बा,
0: ठीक बा, तो प्ले करता नहीं गाना।
1: नमस्ते
0: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल के लिए।

0: और विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दें, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710-3992 या 9765665750।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ मैसेजों का बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं और मैसेज है यहाँ लिख रहे हैं, सोनी जी नमस्कार, मैं राम कुमार पांडे गोरखपुर से जुड़ा हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं मैम हमारा गाना तो बजा दीजिए, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बिल्कुल अगली फरमाइश आपका रहेगा। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग रामा जी भाई और मज़ा आ गई। और मैसेज करने वाले हैं प्रमुख जी लुधियाना पंजाब से, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून प्यारी सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी प्रमुख जी, बने रहिए साथ में सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है इंस्टाग्राम पे, और फरमाइश करने वाली है जानवी कुमारी जी, तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर दिए हैं। ये तो सच है कि भगवान है, अपने गाने को इंजॉय करिए सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम पे।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86-034-48-652 पे।

0: 90.4 रेडियो रमजम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ जानवी जी की तरफ से मैसेज पहुंच गया, लिख रहे हैं थैंक यू सिस्टर गाना बजाने के लिए। और बढ़ेंगे आगे यहाँ अगली मैसेज की तरफ। और अगला मैसेज व्हाट्सएप मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि हाय मैम, मैं भी जुड़ गया हूँ। सो से और एनसी है जादवपुर से, बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल हैदराबाद से सुन रही है रेडियो रमजम को, लिख रही है कि सुपर सॉन्ग। और बढ़ेंगे आगे, एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि शाजदा अंसारी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, बनी रही हमारे साथ में। और लिख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसे ही मनोरंजन बनाए रखिए और धन्यवाद है। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि उठा ले जाऊँगा तुझे मैं डोली में, अति सुंदर मैडम जी गुनगुनाई। और मैसेज करने वाली है प्रीति रदास जी लकड़ी दरगाह से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और यहाँ गुलाम हुसैन जुड़ चुके हैं वेस्ट मुंबई से, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भी। एक और यहाँ वॉइस पहुँचा हुआ है और लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना बजा दीजिए, बिल्कुल अगली फरमाइश आपका रहेगा। फिलहाल यहाँ बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, और मैसेज करने वाले हैं, नाम है इनका लखन लाल जी, घोड़ाघाट से जुड़े हुए हैं। तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर रहे हैं, आवाज पहुंच रही है, अपने गाने को एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रमजम को।
1: हेलो मैम, नमस्ते, प्रणाम। मैं लखन कुमार, मैं घोड़ाघाट लाल बेगी से गोपालगंज के रहने वाला हूं, अभी दिल्ली में जॉब करता हूं, और मेरे को गाना सुनना है ये दिल तेरी आंखों में डूबा बन जा मेरी तू महबूबा, ये वाला संग बजा दीजिए मैम। मैं काफ़ी दिनों के बाद में जुड़ा हूँ, क्योंकि मैम गाना सुनना है और रेडियो रंजन के सभी दर्शकों को सुनाना है, तो बजा दीजिएगा।

0: हर बच्चे के सपनों को चाहिए सही डायरेक्शन
1: एंड दैट डायरेक्शन बिगिंस एट मेरिडियन द स्कूल कनेक्टिंग द हार्ट एंड माइंड
0: अ कंप्लीट इंग्लिश मीडियम CBSE स्कूल वेयर लर्निंग इज नॉट जस्ट अबाउट बुक्स इट्स अबाउट स्किल्स creativity and confidence
1: smart digital classrooms gps enabled transport and holistic development through public speaking leadership and creative thinking mentored by iitn educators
0: from playgroup to class 12 with science and commerce streams and special foundation programs for iit neet and olympiad
1: here we don't just teach we build future leaders
0: admissions are open now don't miss the chance limited seats available
1: visit today meridian The school Kamla Rai Arts College ke paas Gopalganj
0: call us 9102994962 or 9102994963
2: kya hua are ye tera roz roz ka pet dard
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास
4: यहाँ पर हर्निया अपेंडिस वंध्याकरण प्रोस्टेट पीत की थैली किडनी की पथरी पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है
5: ध्यान दें हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है
4: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक थावे रोड गोपालगंज
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9166264498 पे
6: प्रसाद क्लिनिक
7: स्त्री रोग ल्यूकेरिया यूट्रस का बाहर निकल जाना कान का बहना गठिया साइटिका कमर दर्द अधेड़ी थनैली चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
6: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज
7: बाकी दिन जादवपुर बाजार

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं सो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज पहुँचा हुआ, लिख रहे हैं कि आपको देखकर मुझको ऐसा लगा मुझे सारी जहाँ की खुशी मिल गई, और दिव्य शक्ति मूवी का गाना सुनवा दीजिए मैम। डॉक्टर अमोद कुशवाहा ग्राम जी छपरा जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपकी फरमाइश है तो प्ले करने की पूरी कोशिश है। और यहाँ बढ़ेंगे आगे, एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि चीज बड़ी है मस्त मस्त, फरमाइश का ये गाना फरमाइश करने वाले भाई को थैंक यू, धन्यवाद। और मैसेज करने वाले हैं जोहर आलम अंसारी जी क्वेस से। और बढ़ेंगे आगे, एक और यहाँ मैसेज है, सनी जुड़ चुके हैं गोपालगंज से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश से पहले यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग। और मैसेज करने वाले हैं जितेंद्र जी शिवान जिला से, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ मैसेज है, मनीष पांडे जी हैं, लिख रहे हैं कि मेरा गाना बजेगा, बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश है तो भेज दीजिए। और आगे बढ़ेंगे, एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि भारत ने स्वदेशी तकनीकों का उपयोग करते हुए सेल्स ब्रॉडकास्ट सेवा शुरू की है, जिससे नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना मिल सकेगी, और सतर्क नागरिक सुरक्षित राष्ट्र इस संदेश को प्राप्त करने पर जनता को कई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक परीक्षण संदेश है भारत सरकार की तरफ से। और मैसेज करने वाले हैं दिनेश मिश्रा जी दिल्ली से। और आगे बढ़ेंगे, एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सॉन्ग सुनना है, आओ सुनाए प्यार की एक कहानी। और मैसेज के साथ जुड़े हुए हैं अफ्ताब आलम जी शाखे खास से, बहुत बहुत स्वागत है, और गाने की फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है। और बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन है, कहाँ से, और गाने की फरमाइश कौन सी है। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो केसरी 90। नमस्ते, नाम बताइए।
1: मोहम्मद कूप, मोहल्लेचा से।
0: मोहम्मद कूप
1: जी,
0: जी नाम बता दीजिए, नाम ही आपका ये
1: मोहम्मद कूप
0: जी जी। और गाना कौन सा सुनना है बता दीजिए।
1: गाना हमको सुनना है मॉर्निंग राज की आवाज में, जान से नूर लगाए गुस्सा जानो के चांद हो जाए दूसरा गाना के।
0: अच्छा
1: जी,
0: और सुनाना भी है
1: जी। सुनाना है, एक हमारा दोस्त सुन रहा है सुफी आलम, उनको और प्रमुख लुधियाना पंजाब से राजेश गौतम मुंबई से, और जितने लोग सुन रहे हैं सारे लोगों को।
0: चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी
1: जी।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद सो में कॉल किया।
2: बड़का हो गया कबड़

0: ले साला काम कर यार, बड़े चुपचाप काम कर, न तो तू जो यहाँ से आमनी का कॉल है हम,
1: ना तू है साला,
0: जब तो हम रहो तो लेके कहना भाग के ले।
2: अब कुछ हो के वाला नहीं के, लड़की के कलबरिया ता होता,
1: ये साला खुद कटा, ये सब के कटवाई,
2: जो पल्ले

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
2: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
0: अगर भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग,
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं और मनीष प्रसाद जुड़ चुके हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से, बहुत बहुत स्वागत है। तो मनीष जी, फरमाइश है आपकी, तो आपकी फरमाइश पूरा कर देते, लेकिन अभी आपका एक सप्ताह नहीं हुआ है। जैसे ही एक सप्ताह पूरा होगा हम आपकी गाने की फरमाइश प्ले करेंगे। एक और यहाँ मैसेज है, सुजीत भाई को नमस्कार है मेरा, और नमस्कार सोनी जी, क्या हाल है? बहुत ही बढ़िया। और मैसेज करने वाले हैं दिलीप राम जी दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि जान हो जेबू दोसर अंगनवा के। और मैसेज करने वाले हैं धनेश मिश्रा जी, लिख रहे हैं कि सॉन्ग बजाने वाले भैया को दिल से धन्यवाद है, बहुत ही बढ़िया गाना। और पढ़ेंगे आगे। एक और मैसेज लिख रहे हैं कि प्लीज़ मैम गाना सुनवा दीजिए। डॉक्टर अमोद कुशवाहा है जई छपरा से, तो बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश प्ले करेंगे, लेकिन आपकी बारी आने पे बने रही हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। एक और यहाँ मैसेज है, सनी है गोपालगंज से और फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश भी प्ले करेंगे आपकी बारी आने पे। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मोहम्मद ए भाई को थैंक यू और डेडिकेट मी द सॉन्ग। और मैसेज करने वाले हैं प्रमुख जी लुधियाना पंजाब से, और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है, वो है यहाँ मैसेज है दुबई से जुड़े हुए हैं मुकेंद्र कुमार कुशवाहा है बंजारी के रहने वाले, तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर रहे हैं। आवाज़ पहुँच रही, अपने गाने को एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।
1: हेलो मैम, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून, मैं मुकेंद्र कुमार कुशवाहा बंजारी से फिलहाल दुबई से सुन रहा हूँ। मुझे सॉन्ग सुनना है ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, इन्हें मालूम कि हम पसंद करते हैं। ये सॉन्ग सभी दोस्तों के साथ हरकेश राजपाल, राज चुलबुल, निशा जी, बिलती परवीन, संतरा कुशवाहा और सूरज मोहन बाबा और जितने लोग हैं सभी दोस्तों के लिए, तो सुना दीजिए।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 90971602।
3: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0976-575।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैं अली अख्तर कश्मीर से जुड़ा हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और गाने की फरमाइश है मरून कलर सड़िया, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है। और एक यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून रेडियो रिमझिम फैमिली को, और मैं सोनू कुमार दुबई से कैसे हैं, और हम भी जुड़ गए हैं शो से, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए। बिल्कुल हाजिरी लग चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि कभी पियेंगे तुम्हारे हाथ की चाय, कभी पियेंगे तुम्हारे हाथ की चाय के, कभी पियेंगे तुम्हारे हाथ की चाय, मैंने सुना है तुम इलायची मुँह से तोड़ कर डालती हो। और मैसेज करने वाले हैं सोनू कुमार जी दुबई से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो मैडम जी नमस्ते, पूछ रहा हूँ मेरा अगला गाना किस दिन बजेगा। तो आपका अगला गाना जो है सोमवार को बनेगा बजेगा। और मैसेज करने वाले हैं तारकेश शर्मा जी दुबई से, बहुत बहुत स्वागत है। और लिख रहे हैं कि ये बात तुम पूछते हो कि मामला क्या है, ये बात तुम पूछते हो कि मामला क्या है, तुम बताओ तुम्हारा ख्याल क्या है, लोग तो बेवजह भी पूछ लेते हैं, तुम पूछते तो बताता कि हाल क्या है, अगर मैं उतर आता बेवफाई पर तो पत्थर भी गला देता, दाल क्या है, और ये दवा मैं अपनी मर्जी से हारा हूँ, वरना मुझे मालूम था कि तुम्हारी अगली चाल क्या है। और ये मैसेज के साथ जुड़े हुए हैं तारकेश्वर माझी दुबई से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है सनी जुड़े हुए हैं गोपालगंज से, और इनको सुनना है गाना, तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर रहे हैं, आवाज़ पहुँच रही है, अपने गाने को एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है, सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा और हमारे एन्यूमरेटर हो सकता है कि कुछ प्रिजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये 2 फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पे ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हो सही सही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 3945 651 या

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज है और अगली फरमाइश भी है, तो चलिए अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है धनंजय राव, जुड़े हुए हैं सीसई बाजार से, तो चलिए अगली फरमाइश जो है आपका प्ले कर रहे हैं। आवाज़ पहुँचिए, अपने गाने को इंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।
1: मैडम जी, जानवर फिल्म का गाना है, पास बुलाती है कितना सताती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है आती है। यही वाला है मैडम जी, गाना सुना दीजिए प्लीज।

0: ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
5: कहाँ पर?
4: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
5: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
4: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
5: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835556965।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस के 1:33 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और यहाँ बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ। उससे पहले मैसेज है, लिख रहे हैं कि जी नमस्कार जी, हम भी जुड़ गए हैं और प्रकाश माँ जी जुड़े हुए हैं गोपालगंज से और लिख रहे हैं कि हमको भी गाना सुनना है, सुनवा दीजिए प्लीज़। और सुनना चाहते हैं तो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं ज़रूर बताइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बढ़ेंगे आगे, एक और यहाँ मैसेज पहुँच गया है, लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी गाना बजाए खातिर और हमके लागर रहे कि पेंडिंग में फंस गए, तो पेंडिंग में बिल्कुल नहीं किया और गाना एक ही टाइम में बहुत सारा पहुँच जाता है तो एक एक करके ही गाना प्ले करेंगे। और बढ़ेंगे आगे, एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं हेलो सुन दी और मैसेज करने वाले हैं राकेश भारती जी बक्सर से, बहुत बहुत स्वागत है। एक और गाने की फरमाइश है, लिख रहे हैं कि पीता शराब है और कहता नशा खराब है, खुद कुछ करता नहीं और कहता जमाना खराब है। और सुजीत कुमार बिशनपुर से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है, अगली फरमाइश वॉइस के माध्यम से, तो चलिए सुनते हैं कौन से गाने की फरमाइश है।
1: थैंक यू मैडम सॉन्ग बजाने के लिए।

और यहाँ ना गाने का नाम है ना ही नाम है, और गाना प्ले करने से पहले ही वॉइस पहुंचा हुआ है, थैंक यू गाना बजाने के लिए। मुझे लग रहा है कि गलती से ये वॉइस पहुंचा हुआ है हमारे पास, तो चलिए अगली फरमाइश की तरफ बढ़ते हैं। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है गुलाम हुसैन जी जुड़े हुए हैं वेस्ट मुंबई से, और इनको सुनना है गाना ओ साहिबा ओ साहिबा। तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर रहे हैं, और कॉल वाले भाई आप लोग कहाँ हैं, आप लोग भी आइए और अभी सुन रहे हैं गाना गुलाम हुसैन जी की फरमाइश पे ओ साहिबा। तो चलिए एंजॉय करते हैं इनकी फरमाइश पे, दिल है तुम्हारा से ये खूबसूरत सा गाना।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, AC हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम
2: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। CBSE पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल। क्लास 10th तक सेशन 2026 से 27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
0: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
2: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और CCTV कैमरा की सुविधा।
0: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता हरखुआ भगवान नगर वार्ड नंबर 24 विष्णु शुगर मिल के पश्चिम गोपालगंज।
2: संपर्क करें 8002221969 या 9117081835।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388 8940 या 9198 8869 73।

रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज पहुँची हुई है और लिख रहे हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग हो साहिबा, और मैसेज करने वाले हैं अनिल जी चोटपुर से। और बढ़ेंगे आगे, एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, जितने भी गाने बजे क्लासिकल और हिट एवं ग्रीन गाने थे, थैंक यू सो मच सभी श्रोताओं को जो इतने अच्छे अच्छे गाने का फरमाइश किया और उनके जरिए हमने भी सुना। सोनू है सऊदी अरब से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े और फरमाइश के साथ है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करने की पूरी कोशिश है, बनी रहिए साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे यहाँ उमा शंकर मिश्रा जुड़ चुके हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, बनी रहिए हमारे साथ। और यहाँ लिख रहे हैं कि सीता भाभी सॉन्ग सुनना चाहती हैं सोनी जी, बजा दीजिए। और गाना सुनना है नदी बीचे नैया डोले, और गाने की फरमाइश के साथ है राकेश भारती जी बक्सर से। तो बिल्कुल आपकी बारी आने पे हम गाना प्ले कर देंगे, बने रहिए साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है तो चलिए सुनते हैं, और फरमाइश करने वाले हैं प्रकाश माझी जी गोपालगंज से। तो आपकी फरमाइश जो है प्ले कर दें, एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।

0: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
1: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
0: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
1: यहाँ उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
0: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
0: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 9289225767 या 9774-86164।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हमारा भी गाना है, सुनवा दीजिए, हाजिर लगा दीजिए। बिल्कुल, गाने की फरमाइश है तो भेज दीजिए, कौन सा गाना सुनना है आपको। गाने का नाम बता दीजिए। उमा शंकर मिश्रा है दिल्ली से और बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है, उससे पहले यहाँ एक और मैसेज पहुंच गया। लिख रहे हैं कि हेलो मैम, राधे राधे, मैं पाजी यूपी से और मेरा भी हाजिर लगा दीजिए बिल्कुल लग चुकी है। लिख रहे हैं कि कभी मैंने किसी को आजमाया ही नहीं, जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं, किसी को मेरी भी कमी महसूस हो शायद खुदा ने मुझे ऐसा बनाया ही नहीं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि कमरान से जुड़ चुके हैं विलेज पकड़ी सुल्तान से। लिख रहे हैं सोनी जी नमस्कार, सलाम, कैसी हैं? और ऑल लिसनर को मेरा सलाम बोलिएगा। बिल्कुल बोल दिए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बनी रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है, मनीष पांडे जुड़े हुए हैं इनकी तरफ से। और इनको गाना सुनना है मत रो मेरे दिल, और डेडिकेट करना चाहते हैं मेरे को। तो चलिए आपकी फरमाइश प्ले कर दिए, इंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।

0: और यहाँ अनिल जी है छोटपुर से, लिख रहे हैं कि फरमाइश करने वाले भैया पूरे जख्म पे नमक छिड़क कर चले गए, पुराने जख्म पे नमक छिड़क कर चले गए। और फरमाइश करने वाले भैया है मनीष पांडे जी, और इनके तरफ से भी धन्यवाद का मैसेज पहुंच चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और एंजॉय करिए अपने गाने को सिर्फ और सिर्फ रेडियो रंजन पे।
1: चुप हो जाओ, हुआ सो हुआ।
2: हर माता पिता का सपना होता है अपने बच्चे का ब्राइट फ्यूचर, एक ऐसा भविष्य जहां कॉन्फिडेंस, नॉलेज और वैल्यूज तीनों साथ हों।
3: और इस सपने को सच करने के लिए चुनिए मॉडर्न इंटरनेशनल एकेडमी यादवपुर चौक, जहां लर्निंग बनती है बच्चे की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन।
2: CBSE पैटर्न पर आधारित एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जहां क्वालिटी एजुकेशन के साथ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट सुनिश्चित किया जाता है।
3: 1.5 acre का स्पेशियस कैंपस, बच्चों की सुरक्षा के लिए CCTV सर्विलेंस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, प्रोजेक्ट वर्क, क्विज कॉन्टेस्ट और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, पढ़ाई के साथ बेहतरीन प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट।
2: तो देर किस बात की, एडमिशंस ओपन, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल।
3: विजिट करें मॉडर्न इंटरनेशनल एकेडमी यादवपुर चौक के पूरब, NH 28 गोपालगंज।
2: कॉल 9931879996।
4: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
5: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
4: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
5: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
0: रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज पहुंचा हुआ है मनीष पांडे की तरफ से, लिख रहे हैं कि कौन है भाई नमक छिड़कने की बात कहते हैं, और हम तो जले पे बर्फ लगाने की कोशिश किए, और आप नमक छिड़कने की बात कर दिए। तो भैया नमक छिड़कने की बात अनिल जी किए थे छोटपुर से, और बढ़ेंगे आगे यहाँ अगली फरमाइश से। पहले यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि यह बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, मत रो मेरे दिल चुप हो जा, और फरमाइश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैसेज करने वाले हैं, नाम है इनका वारिस खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी शो में, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है, उससे पहले एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है मैडम जी, मैं भी जुड़ गया हूँ, और रजाद अंसारी हैं सऊदी अरब से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। लिख रहे हैं कि अंदाज से ना पिए किसी इंसान की हस्ती को, अंदाज से ना पिए किसी इंसान की हस्ती को, ठहरा हुआ दरिया अक्सर गहरा हुआ करता है। रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं सभी दोस्तों को गुड आफ्टरनून, मैं आजाद अंसारी सऊदी अरब से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है डॉक्टर अमोद कुशवाहा, जय छपरा कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर दिए, आवाज़ पहुँच रही, अपने गाने को एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978855 या 6203139564।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
6: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करे खरीदारी।
6: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
8: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
6: कॉल करें 85070-32042 पे।

94.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और 2:06 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टाग्राम कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो लिख रहे हैं कि गाना कैसा लगा, कुछ तो सुकून मिला होगा गाना सुनकर, और सभी लोग यहाँ दिल टूटे हुए इंसान हैं और गाना तो बहुत लोगों को अच्छा लगा, आपको कैसा लगा? और मैसेज करने वाले हैं मनीष पांडे जी, तो गाना तो बिल्कुल बढ़िया था और गाना अच्छा भी लगा और दिल टूटे हुए इंसान सभी लोग हैं, तो सभी के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि टूटे हुए होते हैं। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि मनीष भैया थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया था बट नाइस सॉन्ग था आपका। और अनिल जी हैं छोटपुर से, जी हाँ गाना बिल्कुल अच्छा था लेकिन कुछ लोगों की पुरानी यादें ताज़ा हो गई इसलिए बोल दिया। और यहाँ बढ़ेंगे आगे, एक और यहाँ मैसेज है और लिख रहे हैं कि लड़कों के शरीर का कठोर अंग उनकी आंखें होती है और शमशान से बिना रोए लौट आते हैं लेकिन उनको प्यार रुला देती है। और ये मैसेज करने वाले हैं वारिस खान जी कतर से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि मैम आपको कितना सैलरी मिलता है? और मैसेज करने वाले हैं पाजू यूपी से, तो क्या आपको मेरी सैलरी से क्या करना है आप बताइए। और सैलरी सबको नहीं बताई जाती ये आपको पता होगा। और बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है मरून कलर सड़िया, और गाने की फरमाइश करने वाले हैं अली अख्तर जी जो कि जुड़े हुए हैं कश्मीर से। तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर रहे हैं, आवाज़ पहुँच रही है, अपने गाने को इंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: 90.4 रेडियो टिमटिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और यहाँ बढ़ेंगे आगे व्हाट्सएप मैसेज की तरफ। और मैसेज है प्रमुख जी हैं लुधियाना पंजाब से लिख रहे हैं कि सुशागर दीवाना जी नहीं सुन रहे हैं का आज रेडियो रिमझिम को, तो शायद नहीं सुन रहे तभी अभी तक शो में नहीं आए। और बढ़ेंगे आगे एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि अब खाना खाने का टाइम हो गया है, खा पी के रेस्ट होके आइए। और मैसेज करने वाले हैं मनीष पांडे जी। जी हाँ, खाने पीने का समय हो गया। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं, मैम आपके घर से हमारे घर बहुत दूर है, प्लीज बता दीजिए, मांगूंगा नहीं। और बिल्कुल मांगिएगा, मांगिएगा तो भी मैं नहीं दूंगी क्योंकि मैं पैसा से मजाक नहीं करती हूँ, बाकी सब कुछ सही है। और ना ही मैं किसी का एक पैसा लेती हूँ और ना ही मैं एक पैसा देती हूँ। अगर मेरा कोई एक रुपया भी लेके रखता है तो मैं उससे वो एक रुपया भी निकाल लेती हूँ बिना मतलब का, तो मैं किसी को नहीं देती। या फिर आपका तो बात ही अलग है कि आप मांगने का बात ही नहीं है। मैं नहीं भी मांगिएगा तो भी मैं नहीं दूंगी आपको पैसा। और रही बात की, एक कहावत है हम लोग के गाँव में, कहते हैं कि अपना खाना हो या फिर जो भी हो छुपा के खाना चाहिए। तो फिर यहाँ तो पैसे की बात है और सैलरी तो बिल्कुल मैं नहीं बताऊंगी, चाहे आप कुछ भी कहिए। और यहाँ एक और मैसेज है लिख रहे हैं कि सूरज ने भी कभी, अच्छा सूरज ने भी कभी की होगी मोहब्बत चांद से, तभी तो चांद में दाग है। और चांद ने भी की होगी बेवफाई, तभी तो सूरज में इतनी आग है। और मैसेज करने वाले हैं वारिस खान जी। और बढ़ेंगे आगे, एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून मैम, नमस्कार, विनोद कुमार चौहान जुड़ चुके हैं मुंबई से और लिख रहे हैं मेरा भी हाजिर लगा दीजिए। बिल्कुल हाजिर लग चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि माहौल बना रहा है सुपर सॉन्ग नीलकमल सिंह का। और मैसेज करने वाले हैं अनिल जी छोटपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जिनकी भी फरमाइश से छूट गई आप सभी कहीं मत जाइए, बने रहिए साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। मिलते हैं आप सभी से दोपहर समाचार के बाद। और एक बार मैसेज फिर से कर दीजिएगा कि हमारा गाना बाकी है, हम आप सबके गाने की फरमाइश जो है प्ले करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल मिलते हैं आप सभी से इस दोपहर समाचार के बाद।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इंकार, कहा अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी, दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
4: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
3: इस बीच पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान की खबर है। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। दोपहर 1 बजे तक मगरहाट पश्चिम में लगभग 56% और डायमंड हार्बर में लगभग 55% मतदान दर्ज किया गया। मतगणना 4 मई को होगी। तमिलनाडु के सभी 234 विधानसभा सीटों पर सोमवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों में डाले गए वोटों की गिनती के लिए कुल 62 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस बार डीएमके, एआईएडीएमके और राज्य के राजनीतिक मैदान में नए खिलाड़ी के तौर पर उभरी टीवीके पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। कई सीटों पर पिछले चुनाव में कम अंतर से जीत हार होने और इस बार बहुकोणीय मुकाबले की आशंका को देखते हुए राजनीतिक दल मतगणना के दिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कड़ी निगरानी रख रहे हैं और इसके लिए विशेष वॉर रूम तैयार किए गए हैं। तमिलनाडु की प्रधान सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक भी आगामी मतगणना प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला चुनाव अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं और तैयारियों का जायजा ले रही हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
3: उधर केरलम में सोमवार को होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी रतन यू केलकर ने बताया कि मतगणना 8 बजे से 43 स्थानों पर 140 मतगणना केंद्रों पर होगी। इस प्रक्रिया के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सूक्ष्म पर्यवेक्षक, मतगणना पर्यवेक्षक और सहायकों सहित कुल 15,465 अधिकारी तैनात रहेंगे। स्ट्रांग रूम में उम्मीदवारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, चुनाव पर्यवेक्षक और अधिकारियों की उपस्थिति में मतपत्र खोले जाएंगे और पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद डॉ संजय जायसवाल को लोकसभा की 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल हैं। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा सांसद फगन सिंह कुलस्ते करेंगे। समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिए आज दोपहर करीब 12 बजे नागरिकों की मोबाइल पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। ये संदेश परीक्षण के लिए है, इसलिए जनता को इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। एक रिपोर्ट।
6: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भारत की नई मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का परीक्षण संदेश है। इसे दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का उपयोग करके विकसित किया है। श्री सिंधिया ने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे। संचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये एक उन्नत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। यह इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हुई थी।
7: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। इस चरण में आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता, जाति और अन्य सामाजिक आर्थिक संकेतकों सहित विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। जनगणना का उद्देश्य नीति नियोजन और विकास पहलों को समर्थन देने के लिए व्यापक डेटा तैयार करना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
8: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
3: सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने आज पटना में बिहार और झारखंड के विभिन्न मीडिया संस्थानों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पत्र सूचना कार्यालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान श्री कुमार ने सभी मीडिया संस्थानों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी मीडिया संस्थानों को डिजिटल मीडिया प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आगामी मॉनसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान मॉडल पर भारत और नेपाल के बीच काठमांडू में बैठक हो रही है। भारत की ओर से बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ये बैठक 30 अप्रैल और 1 मई को काठमांडू में आयोजित कोसी और गंडक परियोजनाओं पर भारत नेपाल संयुक्त समिति की 2 दिवसीय बैठक के बाद हो रही है। बैठक में दोनों पक्षों ने जल प्रबंधन और अवसंरचना से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति व्यक्त की। नेपाल ने पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के 35 किलोमीटर लंबे नेपाली हिस्से के साथ साथ कोसी बैराज, गंडक बैराज और पश्चिमी मुख्य नहर के कुछ हिस्सों से अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताई है। इसके अलावा पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के तटबंधों पर लगे बिजली के खंभों को स्थानांतरित करने की भी मंजूरी दी गई थी। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भारी वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की भी संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। अमेरिका ने वैश्विक शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि यदि वे हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने के लिए ईरान को भुगतान करती है तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इससे इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। खबरों के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में अमरीका और इसराइल के बीच हुए संघर्ष के बाद ईरान ने हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही रोक दी थी। इसके बाद ईरान ने अपनी तटरेखा के पास वैकल्पिक मार्गों से कुछ जहाजों को गुजरने की अनुमति दी और कभी कभी इसके लिए शुल्क भी वसूल किया था। अमेरिका ने 13 अप्रैल को हॉर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी लागू की। इससे ईरान के तेल टैंकरों को रोक दिया गया। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि नाकाबंदी शुरू होने के बाद से 45 वाणिज्यिक जहाजों को वापस लौटाने के लिए कहा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमेरिका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमेरिका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। ईरान द्वारा संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका को भेजे गए ताजा प्रस्ताव के बाद कल वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। सप्ताह भर में ब्रेंट क्रूड ऑयल में 2.7% की वृद्धि हुई और WTI में 8% की तेजी आई। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था। ये IPL इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा रन चेज है। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से पराजित किया था। फुटबॉल में भारतीय टीम AFC Under-17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना अभियान शुरू कर रही है।

0: केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इनकार, कहा अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी, दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी, मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जेजी शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जेजी शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
7: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
8: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
4: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
9: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
10: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
9: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
9: संपर्क 99-393-65-930।
11: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
9: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
11: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
9: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
11: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164। 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज।
9: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
11: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
9: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
11: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
9: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
12: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में। क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराएं नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
13: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन

0: किया जाता है।
1: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
2: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
3: रेडियो रिमझिम,
2: सुनो दिल से।

0: रामू हरिया कल तैयार रहिए लो पराली जलाए चले के बा
1: ठीक बा भैया।
2: ए भैया एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहा बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
0: ऐसा का है जरावला से काहे मना होता।
2: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। एक टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
0: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
2: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
0: अच्छा तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
2: याद रखी ठूठ कूड़ा ना, खेती के गहना नहा, एकरा की जराई मत माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
3: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
5: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
6: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
5: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
7: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर M.A. अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399 66999।
10: नमस्ते, निदेशक CBSE पब्लिक स्कूल बस डीला खास गोपालगंज, जितेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। अभिभावक महोदय, आप अच्छे स्कूलों की एक सूची बनाइए, उन स्कूलों के क्लासरूम में अवश्य जाइए जिसमें आप अपने वार्ड का एडमिशन दिलाना चाहते हैं। वहाँ क्लासरूम में बच्चों के रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स स्किल, बॉडी लैंग्वेज और फेयर नोटबुक देखने का मौका मिलता है। साथ साथ आप 10th और 12th के CBSE का रिजल्ट भी देखने का मौका मिलता है। यदि अबव 95% स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस एवं रिजल्ट संतोषजनक है तो आप तय कर पाएंगे कि स्कूल अच्छा है। जी धन्यवाद।
3: Class 10th board result 2025. Outstanding performance. 50 students scored above 90% and no student scored below 80%. Truly shandar achievement.
1: Lagatar 3 varshon 2023, 2024 aur 2025 mein district topper in commerce stream dene ka gaurav.
3: Visit kare CBSE Public School, Bastila Khas, Gopalganj ya contact kare 7633970104.

दोपहर समाचार के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। 2:46 हो रही है स्टूडियो घड़ी में। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं सो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है 98527 88 291। व्हाट्सएप के अलावा आप रेडियो रिमझिम के इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, अपने गाने की फरमाइश को सुन सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं हमें 72 77 16 65 96 पे। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। यहाँ व्हाट्सएप मैसेज पहुँचा हुआ है, काफ़ी सारे मैसेज है और मैसेज है, लिख रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया, और लिख रहे हैं कि ना नगद ना तेरा उधार, एकदम खाता साफ रखना चाहिए। दुनिया में ज़्यादातर रिश्ते पैसे के लेने देने के चक्कर में ही खराब हो रहा है। और मैसेज करने वाले हैं जाद अंसारी जी सऊदी अरब से। जी हाँ बिल्कुल, और अभी का समय तो ऐसा ही है जो चल रहा है। और बढ़ेंगे आगे, एक और यहाँ मैसेज है तो लिख रहे हैं, तो ठीक है मत बताइए अपनी इतना और इतना आईडी ही बता दीजिए। अच्छा, और मैसेज करने वाले हैं पाजी यूपी से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि मत कर तमन्ना किसी और की पाने की, मत कर तमन्ना किसी और की पाने की, बड़ी बेदर्द निगाह है जमाने की, तू खुद को बनाना इस तरह काबिल की लोग तमन्ना करे तुम्हें पाने की। और वारिस खान है दोहा कतर से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि भाभी जी का सॉन्ग प्ले कर दीजिए। और मैसेज करने वाले हैं राकेश भारती जी बक्सर से, बिल्कुल। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सोनी जी खाना खा लिए हैं आप, आज की मौसम कैसा है? तो आज का मौसम तो काफ़ी बढ़िया हुआ है, धूप भी निकला हुआ है लेकिन मौसम ठंडा है। और बढ़ेंगे आगे, एक और मैसेज है और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि हेलो हाय गुड आफ्टरनून, बजाजी रोड लालगंज से जुड़े हुए हैं एमडी नौशाद जी, एमडी सदाब जी, लिख रहे हैं कि, और साथ में हैं एमडी निसार, एमडी रिजवान और अभिनंदन टेलर के सभी लोग हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और बढ़ेंगे आगे, एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हम भी जुड़ चुके हैं, विष्णु कुमार जुड़े हुए हैं वीके फास्ट फूड सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरा भी फरमाइश से बजा दीजिए, बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करेंगे। और मैसेज करने वाले हैं उमा शंकर मिश्रा जी दिल्ली से। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो हाय गुड आफ्टरनून, मैं भी जुड़ गया हूँ बुलेट गुप्ता दतिवाना से और अभी सुन रहे हैं पुणे महाराष्ट्र से रेडियो रिमझिम को, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि नैन टेलर शिवराजपुर से भोजपुरी गाना सुना दीजिए मैडम जी, तीन थान गहना फिरी बा, और गाने की फरमाइश के साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की कोशिश है। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है, राकेश भारती जी की भाभी जी हैं जुड़ी हुई है और इनको सुनना है गाना, तो चलिए अगली फरमाइश प्ले कर रहे हैं। आवाज़ पहुँच रही है, अपने गाने को एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 705006144 या 7870331444।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
3: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
2: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराश आ जाता है।
2: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
3: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

0: और लिख रहे हैं कि बहुत भाग से ऐसा सजनिया पौनी डोले वाला गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। नाम है इनका सनी गोपालगंज से। तो मैं आपको बता दूं कि आपके गाने की फरमाइश जो है सुबह ही प्ले किए थे और अगली फरमाइश जो है वो एक सप्ताह बाद पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़े। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं, नमस्कार जी, हम धर्मेंद्र चौहानी समस्तीपुर से जुड़ गए हैं और हमारा भी हाजिर लगा दीजिए, मुझे गाना सुनना है मुजफ्फरपुर के लीचिया। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत है। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि भाभी जी डांस कर रही हैं सोनी जी और आपको भी बुला रही हैं, तो मैं तो नहीं आ पाऊँगी, आप ही कंपनी दे दीजिए। और मैसेज करने वाले हैं राकेश भारती बक्सर से। और यहाँ फिर से जुड़ चुके हैं गुलाम हुसैन जी वेस्ट मुंबई से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। बनी रही हमारे साथ, सुनते रहिए टू रिमझिम को। प्रमुख जी आ चुके हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून वंस अगैन, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है कॉल के माध्यम से। तो चलिए बात करते हैं और सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है हमारे पास। हेलो,
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम जी में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना और कहाँ से।
1: निर्मला कुमार मुगरा
0: जी। कैसी हैं निर्मला जी?
1: अच्छी हूँ, अपना बताइए।
0: मैं भी बढ़िया हूँ। गाना कौन सा सुनना आज आपको?
1: मेरे संग प्रीति लगाए सजना।
0: और सुनाना भी है?
1: हाँ, सबसे पहले आपको और प्रमुख
0: जी। चलिए तो प्ले कर दिया है गाना आपकी।
1: थैंक यू मैम
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सो में कॉल की। ओके okay.

0: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है, सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा और हमारे एन्यूमरेटर्स हो सकता है कि कुछ प्रेजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये 2 फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पर ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हो सही सही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करें 87 894 18744।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ बढ़ेंगे आगे व्हाट्सएप मैसेज की तरफ, और मैसेज है लिख रहे हैं कि थैंक यू डियर निर्मला जी, नाइस सॉन्ग। और आगे एक और यहाँ मैसेज है, नौसाद जी हैं लालगंज से और लिख रहे हैं कि सोनी मैम हमारा भी गाना है, बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हमारा भी गाना है, बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शो में जुड़े और आगे बढ़ेंगे। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि आपके लंच पे जाने के बाद 30 मिनट आधा घंटा सा लगता है, ओनली फॉर फन मोमेंट्स। और मैसेज करने वाले हैं अनिल जी छोटपुर से, तो कोई बात नहीं, 30 मिनट अगर आधा घंटा लगता है, लेकिन आधे घंटे बाद मैं फिर से आप सभी के बीच हाजिर हो जाती हूँ और बढ़ूंगी आगे अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है सऊदी अरब से सोनू जी का, तो चलिए वॉइस सुनते हैं कौन से गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
1: गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। मैम मुझे गाना सुनना है और उस गाने का डिस्क्रिप्शन आपको भेज रहा हूँ, सो प्लीज प्ले माई रिक्वेस्ट सॉन्ग एंड थैंक यू सो मच।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-6750।
3: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि थैंक यू मैम, प्ले माई रिक्वेस्ट सॉन्ग। और मैसेज करने वाले हैं सोनू सऊदी अरब से, बढ़ेंगे आगे। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि आप इतना अच्छा चलाती हैं। अच्छा, सो और मैसेज करने वाले हैं, नाम भी मेंशन किया करिए आप लोग अगर मैसेज कर रहे हैं तो। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि कहते हैं टूटे हुए प्याली में जाम नहीं आता, टूटे हुए प्याली में जाम नहीं आता, मोहब्बत में किसी का आराम नहीं आता, बेवफा दिल मेरे तोड़ने से पहले ये तो सोच लेती कि टूटे हुए दिल से दिल किसी के काम नहीं आता। और वारिस खान है मैसेज करने वाले, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या खैरियत है जी आपका और आपके पूरे टीम का? तो बिल्कुल बढ़िया। और लिख रहे हैं कि 30 मिनट का आधे घंटा ही होता है, और मैसेज करने वाली है, नाम तो मेंशन नहीं किया है, भाई आपने नाम भी बताया करिए आप कौन है और कहां से। और सानिया सैफिया चखसना से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि पढ़े लिखे समझदार बनो लेकिन इतना भी नहीं कि चाय की नुकसान बताने लगो। बिल्कुल सही कहा आपने। और बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है उससे पहले यहाँ और भी मैसेज है, लिख रहे हैं हेलो हाय, हम भी जुड़ गए हैं और रोहित जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं हेलो हाय नमस्कार, मुझे भी गाना सुनना है। टूट आदत हो गई और सिंगर की आवाज़ में आप जो मैसेज है जो भी टाइप किए हैं उसे एक बार और पढ़ लीजिए, और पढ़ के उसे सही करके मैसेज करिए। और मैसेज करने वाले हैं मिर्जापुर से नीतीश कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है उमा शंकर मिश्रा जुड़े हुए हैं दिल्ली से, और इनको सुनना है गाना। तो चलिए अगली फरमाइश जो है आपका प्ले कर रहे हैं, आवाज़ पहुंच रही है, अपने गाने को एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
4: कहाँ पर?
3: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
4: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
3: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
4: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835556965।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ बढ़ेंगे आगे तो काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं, और मैसेज है यहाँ लिख रहे हैं कि यही गाना सुनना है मुझे। और मैसेज करने वाले हैं नीतीश कुमार जी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। तो मैं आपको बता दूं कि आपके गाने की फरमाइश जो है एक सप्ताह बाद पूरा करेंगे। आपकी फरमाइश जो है गुरुवार को पूरा किए थे, शो से जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि हिमांशु मिश्रा जुड़ चुके हैं, पवन सिंह की आवाज़ में गाना सुनना चाहते हैं कोई भी, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। एक और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं सुनिधि खाना खा लीजिए, और आप भी, मैं तो खाने जा रहा हूँ, तो मैं तो खा चुकी हूँ। और मैसेज करने वाले हैं राकेश भाटी जी बक्सर से। और एक यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि क्या हुआ मैम, गाना नहीं बजेगा? बिल्कुल बजेगा आपकी बारी आने पर, और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है बजाजी रोड लालगंज से, एमडी नौशाद जी हैं, साथ में निसार हैं, रिजवान हैं, और अभिनंदन टेलर के सभी लोग हैं। तो सभी के साथ में एंजॉय करिए अपने फरमाइश का ये गाना, या मोहम्मद करम कीजिए, प्ले कर दिया, और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।

0: के 24 राज्यों में 160 से अधिक शहरों में 280 से ज्यादा स्कूल्स के साथ एजुकेशन में ट्रस्टेड नेम बिरला।
1: अब वही लेगेसी, वही एक्सेलेंस आ गया है आपके शहर गोपालगंज में।
0: इंट्रोड्यूसिंग बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल, एडमिशन्स आर नाउ ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 7।
1: और खास बात, प्ले ग्रुप के लिए लिमिटेड पीरियड फ्री एडमिशन।
0: मॉडर्न एजुकेशन विथ AC क्लासरूम्स, डिजिटल लर्निंग, कंप्यूटर एंड साइंस लैब्स, लाइब्रेरी एंड सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी।
1: बिकॉज लर्निंग इज बियॉन्ड क्लासरूम्स, म्यूजिक, डांस, योगा एंड जूडो क्लासेस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑल टीचर्स आर BEd qualified and follow CBSE guidelines, ensuring quality education.
0: Visit today, Yadopur Road, Saraya Ward number 1, Shambhu Path, Saraswati Talkies ke paas, Gopalganj.
1: Call now 775-994-9440 or 775-994-9441.
0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 9289225567 या 9774-86164।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और बढ़ेंगे आगे यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ और मैसेज है लिख रहे हैं कि वाह सुपर सॉन्ग अभिनंदन टेलर जी की तरफ से और उन्हें भी कह दीजिए बिल्कुल कह दिया और मैसेज करने वाले हैं एमडी महमूद जी केरला से और बढ़ेंगे आगे एक और यहाँ मैसेज है मुकेंद्र कुमार कुशवाहा जुड़े हुए हैं बंजारी से फिलहाल दुबई से सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम को और लिख रहे हैं कि एक हंसी दिल में दबी रह गई जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई इतना चाहकर भी तुम ना मिल सके शायद हमारी मोहब्बत में ही कुछ कमी रह गई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है

0: अखिल प्रोग्राम सुन रहा हूँ
1: जी जी
0: अम्बेडकर।
1: तो गाना कौन सा सुनना है आपको?
0: आज गाना सुना
1: दीजिएगा
0: राधा हिंदुस्तान
1: जी,
0: उसी का गाना है हम तेरे उचित नहीं है तो दिख जाएंगे। गाना है कि हम उचित नहीं है कि तेरे हम दिख जाएंगे, क्या रंग लगा है। हेलो
1: जी जी,
0: वही गाना सुनना है
1: और सुनवाना भी है।
0: हमारे जितने भी स्वास्थ्य कर्मी लगे हैं लोहिया स्वास्थ्य अभियान से सारे को हमारे इंद्र सदन के प्रसाद और धर्म प्रसाद
1: उनको। और ये गाना तो राजा हिंदुस्तानी का नहीं है। हेलो
0: हाँ जी, चलिए राजा राजा हिंदुस्तानी का था गाना क्या तेरे इसमें हम बिक जाएंगे, वो चीज नहीं
1: तेरे इश्क में नाचेंगे गाना है ना।
0: जी जी जी,
1: वही सुनवा दें।
0: जी जी जी,
1: तो चलिए प्ले कर रहे हैं गाना आपकी।
0: ठीक है, नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल किया।

0: हर बच्चे के सपनों को चाहिए सही डायरेक्शन.
1: एंड दैट डायरेक्शन बिगिंस एट मेरिडियन, द स्कूल कनेक्टिंग द हार्ट एंड माइंड.
0: अ कंप्लीट इंग्लिश मीडियम CBSE स्कूल, वेयर लर्निंग इज नॉट जस्ट अबाउट बुक्स, इट्स अबाउट स्किल्स, creativity and confidence.
1: Smart digital classrooms, GPS enabled transport and holistic development through public speaking, leadership and creative thinking, mentored by IITN educators.
0: From playgroup to class 12th, with science and commerce streams and special foundation programs for IIT, NEET and Olympiad.
1: Here, we don't just teach, we build future leaders.
0: Admissions are open now. Don't miss the chance. Limited seats available.
1: Visit today, Meridian, the school, Kamla Rai Arts College ke paas, Gopalganj.
0: Call us 910-299-4962 or 910-299-4963.
2: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री.
0: कहाँ पर?
1: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, छवही खास, गोपालगंज,
0: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा.
1: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम. फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
0: तो देर ना करें. ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक.
1: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास, NH 27, गोपालगंज. कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835556965.

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ 3:38 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में, और बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश के लिए। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि हमारा भी फरमाइश है और आपकी फरमाइश है तो भेज दीजिए। कौन सी गाने की फरमाइश है सानिया सफ़िया चक हसना से, तो पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपकी फरमाइश जो है लास्ट तक प्ले कर दें। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ मनीष पांडे फिर से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है, गाने की फरमाइश है मुजफ्फरपुर के लीचिया, और गाने की फरमाइश करने वाले हैं धर्मेंद्र शाहनी जुड़े हुए हैं समस्तीपुर से। तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर रहे हैं, आवाज़ पहुंच रही है, अपने गाने को एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: एडमिशन फ्री
1: कहाँ पर?
0: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
1: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
0: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
1: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज, कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569650।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल की सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
4: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुत डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत नी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903769015 पे।

0: रामू हरिया कल तैयार रही लो पराली जलाए चले के बा
1: ठीक बा भैया।
2: ए भैया एगो सूचना सुन ल, कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहा बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, न तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
0: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
2: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। एक टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
0: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
2: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
0: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराए जाना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएम जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
2: याद रखी, ठूठ कूड़ा ना हा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
5: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
5: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
3: और 9097160602।
6: नमस्ते, निदेशक सीबीएसई पब्लिक स्कूल बस डीला खास गोपालगंज जितेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। अभिभावक महोदय, आप अच्छे स्कूलों की एक सूची बनाइए, उन स्कूलों के क्लासरूम में और सजाइए जिसमें आप अपने वार्ड का एडमिशन दिलाना चाहते हैं। वहाँ क्लासरूम में बच्चों के रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स स्किल, बॉडी लैंग्वेज और फेयर नोटबुक देखने का मौका मिलता है। साथ साथ आप 10th और 12th के सीबीएसई का रिजल्ट भी देखने का मौका मिलता है। यदि अबव 95% स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस एवं रिजल्ट संतोषजनक है तो आप तय कर पाएंगे कि स्कूल अच्छा है। जी धन्यवाद।
7: Last 10th board result 2025, outstanding performance. 50 students scored above 90% and no students scored below 80%. Truly शानदार achievement.
8: लगातार तीन वर्षों 2023, 2024 और 2025 में district topper in commerce stream देने
7: विजिट करें CBSE पब्लिक स्कूल बस्टीला खास गोपालगंज या कॉन्टैक्ट करें 7633970104।
9: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
10: रेडियो रिमझिम,
9: सुनो दिल से।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
4: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
5: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला, सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
4: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
6: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से। ऑलराइट।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
3: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
2: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
3: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92-99-22-567 या 97-7-14-86-164।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198968693।
8: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
2: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
3: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफे

0: है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
1: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
0: यहाँ उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
1: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
1: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड, HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।
2: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
4: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां भी मिलती हैं।
5: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042434, 6200042434।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।

0: अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: हर बच्चे के सपनों को चाहिए सही डायरेक्शन।
3: एंड दैट डायरेक्शन बिगिंस एट मेरिडियन, द स्कूल कनेक्टिंग द हार्ट एंड माइंड।
2: अ कंप्लीट इंग्लिश मीडियम CBSE स्कूल, वेयर लर्निंग इज नॉट जस्ट अबाउट बुक्स, इट्स अबाउट स्किल्स, creativity and confidence.
3: Smart digital classrooms, GPS enabled transport and holistic development through public speaking, leadership and creative thinking, mentored by IITN educators.
2: From playgroup to class 12th with science and commerce streams and special foundation programs for IIT, NEET and Olympiad.
3: Here, we don't just teach, we build future leaders.
2: Admissions are open now. Don't miss the chance. Limited seats available.
3: Visit today Meridian, the school Kamla Rai Arts College ke paas, Gopalganj.
2: Call us 910-299-4962 or 910-299-4963.
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता: कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946। सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
0: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क 99-393-65-930।
1: भारत के 24 राज्यों में, 160 से अधिक शहरों में, 280 से ज्यादा स्कूल्स के साथ एजुकेशन में एक ट्रस्टेड नेम बिरला।
2: अब वही लेगेसी, वही एक्सेलेंस आ गया है आपके शहर गोपालगंज में।
1: इंट्रोड्यूसिंग बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल, एडमिशन्स आर नाउ ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 7।
2: और खास बात, प्ले ग्रुप के लिए लिमिटेड पीरियड फ्री एडमिशन।
1: मॉडर्न एजुकेशन विद AC क्लासरूम्स, डिजिटल लर्निंग, कंप्यूटर एंड साइंस लैब्स, लाइब्रेरी एंड सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी।
2: बिकॉज लर्निंग इज बियॉन्ड क्लासरूम्स, म्यूजिक, डांस, योगा एंड जूडो क्लासेस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑल टीचर्स आर BEd क्वालिफाइड एंड फॉलो CBSE गाइडलाइंस, इंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन।
1: विजिट टुडे यादवपुर रोड, सरया वार्ड नंबर 1, शंभू पथ, सरस्वती टॉकीज के पास, गोपालगंज।
2: कॉल नाउ 7759949440 और 7759949441।
3: उत्तर बिहार का गौरव,
4: सारण प्रमंडल की शान,
3: गोपालगंज की धड़कन
4: और अपने भाषा की पहचान,
3: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
4: सुनो दिल से।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
1: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
0: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779786164।
2: रेडियो रिंगम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी सहसा महाता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है, सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है, और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा, और हमारे एन्यूमरेटर्स हो सकता है कि कुछ प्रेजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये 2 फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पे ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हों सही सही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
9: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
9: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
11: कॉल करे 87894 18744।
12: उत्तर बिहार का गौरव,
13: सारण प्रमंडल की शान,
12: गोपालगंज की धड़कन
13: और अपने भाषा की पहचान,
12: रेडियो रिद्म 90.4 FM।
13: सुनो दिल से।

0: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, एसी हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम,
1: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक। सेशन 2026 से 27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
0: यहाँ मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
1: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और सीसीटीवी कैमरा की सुविधा,
0: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता: हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 800-222-1969 या 911-7018-3500।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70-70-75-63-100 या 70-70-72-42 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग,
0: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
0: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27, बंजारी, गोपालगंज।
0: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
4: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
5: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला, सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
4: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
6: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
0: हर माता पिता का सपना होता है अपने बच्चे का ब्राइट फ्यूचर, एक ऐसा भविष्य जहां कॉन्फिडेंस, नॉलेज और वैल्यूज तीनों साथ हो।
1: और इस सपने को सच करने के लिए चुनिए मॉडर्न इंटरनेशनल एकेडमी यादवपुर चौक, जहां लर्निंग बनती है बच्चे की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन।
0: CBSE पैटर्न पर आधारित एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जहां क्वालिटी एजुकेशन के साथ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट सुनिश्चित किया जाता है।
1: 1.5 एकड़ का स्पेशियस कैंपस, बच्चों की सुरक्षा के लिए CCTV सर्विलेंस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, प्रोजेक्ट वर्क, क्विज कॉन्टेस्ट और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, पढ़ाई के साथ बेहतरीन प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट।
0: तो देर किस बात की, एडमिशंस ओपन, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल।
1: विजिट करें मॉडर्न इंटरनेशनल एकेडमी यादवपुर चौक के पूरब, NH 28, गोपालगंज।
0: कॉल 9931879996।
7: Now pick it up, pick it up. Now pick your phone up. Hello. pick it up, pick it up. Hello? Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजे सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस के कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
2: जी मैम, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ, मैं मायर एमपी से।
1: जी जी, क्या हाल चाल है सुनील जी?
2: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे मैम शो का इंतजार करते हुए मैम, तो टाइम हो गया तो हम सोचे चलो अभी फोन लगाते हैं, फोन भी लग गया मैम।
1: चलिए बढ़िया है। गाना कौन सा सुन रहा है आपको?
2: जी हमको सुनवा दीजिएगा फिल्म जीत से, भगवान ने क्या बोले, तू धरती में जाए जहाँ पी रहे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। और सुनवाएंगे किसने, रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते हैं, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
1: ओके, तो प्ले करेगा ना?
2: ओके मैम।
1: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सो मैं कॉल किया।

0: हाँ अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 FM में।
0: मैं मोहम्मद यूसुफ सिपाही डाला अपना मेडिकल हॉल से बोल रहा हूँ।
1: जी कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया है, अभी फोन लगाए थे तो कट गया, नेटवर्क नहीं था।
1: जी जी, बारिश हो रही है ना, शायद इसके वजह से नेटवर्क सही नहीं है।
0: यहाँ पर भी सिपाही डाला में बहुत जोरों से बारिश हो रही है, 2 घंटा हो गया लगभग।
1: हाँ यहाँ भी वही हाल है।
0: हाँ मौसम तो बहुत खराब है, अब क्या कीजिएगा,
1: क्या करेंगे, काम तो करना ही है।
0: ये है कि गेहूं के दौरी हो गया।
1: हाँ हाँ हो गया, लेकिन बारिश हो गया तो खेत के लिए भी सही है। हाल हो जाएगा।
0: हाल हो जाएगा, बिचड़ा वगैरह गिरेगा गेहूं का, धान का।
1: हाँ जिसको गिराना होगा वो गिरा देगा, सही रहेगा उसके लिए।
0: तब हम यही कहेंगे कि आप हमको इसी बरसात में गाना सुनवा दीजिए।
1: जी बता दीजिए नाम।
0: ये कह रहे हैं कि बेमौसम बरसात हुई, अभी बरसात का मौसम नहीं है।
1: जी जी,
0: बेमौसम बरसात हुई है, कुछ तो ऐसी बात हुई है, अपना सब हम भूल गए जब से सोनी जी से बात हुई है। हाँ तो जारे जारे उतारी बदरिया, यही
1: आवाज कट गया, एक बार और बताइए।
0: जारे जारे वो कारी बदरिया।
1: जी
0: इसी गाने को सुनवाइएगा
1: और डेडिकेट भी करिएगा।
0: हाँ अपना मेडिकल हॉल के सभी स्टाफ और खास कर कन्हैया जी जो फौजी से रिटायर किए हैं उनको सुनवाइए।
1: चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी।
0: हाँ ठीक
1: ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोना कॉल के जी।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
1: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
2: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है, तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
1: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, NEBOSH और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स।
2: और सबसे खास बात, 100% जॉब गारंटी, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
2: पता, छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड, HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।
3: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
4: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
3: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
4: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
3: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान लिया।
4: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
5: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
3: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
7: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
8: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आए और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाए और बनाए अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
7: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
9: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
10: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
11: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
12: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403, 6200042403।
13: Now pick it up, now pick your phone up.
14: Hello?
13: Pick it up, pick it up.
14: Hello?
13: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत है आपका रेडियो रिमझिम नंबर आ रहे समय।
1: सोनी मैम प्रणाम।
2: जी प्रणाम,
1: क्या हाल रहा है?
2: बिल्कुल बढ़िया, रो बताए कैसा बानी?
1: ठीक बानी। आज क्या बात, कभी स्विच ऑफ, कभी नेटवर्क या कभी चालू, क्या हो रहा है ये?
2: पता ना, बारिश होता तो शायद नेटवर्क इश्यू हुई।
1: कभी बंद बता रहा है, कभी नेटवर्क
2: रिकॉर्डिंग तो शुरू ही हुआ है 11:05 में बारिश की वजह से, लेकिन उसके बाद अगर बंद चालू बता रहे तो मतलब नेटवर्क इश्यू होगा।
1: तो ये बारिश हो रही है क्या अभी भी?
2: काफी भयानक वाला।
1: अच्छा,
2: सब बढ़िया। धनेश मिश्रा बात करते
1: हैं। भोजपुरी में बात करेगा बात।
2: चलिए बढ़िया बात।
1: रोडो भोजपुरी में कमेंट करने बड़ा बढ़िया लगे।
2: अच्छा,
1: अभी हमने तो मजबूरी बना कि हिंदी आदमी बोले ला तो भोजपुरी। अच्छा, इतना अच्छा कौन शब्द बा?
2: कोनो भाषा नहीं है भोजपुरी नहीं।
1: लेकिन मजबूरी बाकी आदमी हिंदी आदत पड़ गई है, भोजपुरी बतिया पड़ रहा है हिंदी में आ जाने।
2: सामने वाला जब हिंदी बोली तब बोलेंगे पड़ जाना। कल ड्यूटी में बनी की रूम पे?
1: ना जी, ड्यूटी में बनी है, हमने सर सोमवार के छुट्टी रहा।
2: अच्छा, आज कौन गाना सुने को बता दी?
1: आज काजल सहनी का सुना दी।
2: अच्छा, काजल सहनी के
1: और ये दाज गहरा मिलल बा प्यार के।
2: अच्छा,
1: ये आज सुना दी।
2: और सुनवाई के भी बात?
1: हाँ, वही रवि भैया भाभी लिखना सुनने वाले सारे को। रवि फोन किया था कि नहीं?
2: ना, अभी तो रवि फोन ना के लिए रही है।
1: कहाँ गए भैया ना?
2: अच्छा, तो ये बात तो ना पता, बाकी गाँव आवे के बाद अभी बात ना भेजा।
1: चलिए फिर देर बात हो गई।
2: जी जी, चलिए ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कॉल करने।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।

0: 8665 65 65 750।
1: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है, सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा और हमारे एन्यूमरेटर हो सकता है कि कुछ प्रिजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये 2 फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पे ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हों सही से ही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
0: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
9: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
2: कॉल करें 87-894-18744।
3: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: नमस्कार सोनी जी।
3: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
10: धर्मेंद्र तिवारी बोल रहे हैं
3: जी। कैसे हैं धर्मेंद्र जी?
10: भैया
3: तो क्या हो रहा था अभी?
10: अभी तो घर तो पाए हैं, बारिश हो रही, घर में कुछ काम है वही कर रहे थे।
3: अच्छा, तो गाना कौन सा सुनना है आपको?
10: शादी वाला कोई गाना सुनवा दीजिए।
3: शादी वाला और सुनवाना भी है?
10: रेडियो रिमझिम सोता सुनेंगे सारे आदमी।
3: ओके चलिए, तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी
10: जी। नमस्कार।
3: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं कॉल किया।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
0: जी, कुमारी गोपालगंज से।
1: जी, कैसे हैं खुशी जी?
0: अच्छे हैं, अपना बताइए।
1: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या हो रहा था अभी?
0: अभी कुछ नहीं, बारिश हो रहा है, बैठे हैं।
1: तो गाना कौन सा सुनना है खुशी जी आपको?
0: गाना बज सका है।
1: कौन सा गाना?
0: भोजपुरी गाना बज सका है
1: जी। बिल्कुल बज सकता है भोजपुरी गाना।
0: लाए जाकर माई हमारे मारे लगी हो।
1: अच्छा, प्यार के बुखार उतारे लगी हो, ये वाला गाना ना?
0: हाँ, यही।
1: अच्छा, और सुनाना भी है?
0: हाँ, सिर्जी कुमारी, शिवम कुमार, सलोनी कुमारी को और आपको जितने रेडियो सुने सब कुछ।
1: ओके, चलिए तो प्ले करे गाना आपकी।
0: हाँ, कर दीजिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल के।

0: चाहते हो मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: रामू हरिया, कल तैयार रहिए लो, पराली जलाए चले के बा।
4: ठीक बा भैया।
5: ए भैया, एगो सूचना सुनला हा, कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
3: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता?
5: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। एक टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
3: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एक बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता?
5: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली, ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
3: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराए जाना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएम जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
5: याद रखी, ठूठ कूड़ा नहा, खेती के गहना नहा, एकरा के जराई मत माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
3: रामू हरिया, कल तैयार रहिए लो, पराली जलाए चले के बा।
4: ठीक बा भैया।
5: ए भैया, एगो सूचना सुनला हा, कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
3: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता?
5: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। एक टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
3: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एक बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता?
5: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली, ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
3: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराए जाना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएम जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
5: याद रखी, ठूठ कूड़ा नहा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
6: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
7: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
6: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
7: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
6: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
7: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: तुम
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
9: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: नमस्कार।
11: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगन 90.4 FM में।
10: कोई बहुत बहुत स्वागत है।
11: लाल बहादुर बात कर रहे हैं?
10: हाँ जी।
11: कैसे हैं?
10: ठीक है मैम भाई, इधर तो बारिश हो रहा है।
11: अरे पूछिए मत, कितना बारिश हो रहा है इधर।
10: आपका तरफ हो रहा है उधर?
11: बहुत तेज।
10: मौसम कुछ रोके कुछ इधर उधर हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है कि नहीं? 18 जून का ऐसे तो मानसून आता है नियम के अनुसार। पहले ही बारिश दशक दे चुके हैं, वर्षा हो रही है, इसके ख्याल में आपका क्या विचार है, क्या सावधानियाँ बरतना चाहिए? बारिश वाला गाने को सुना दीजिए।
11: बारिश वाला?
10: हेलो
11: जी जी।
10: बरसात के मौसम में तेलंगा सुनाई के आलम में। हेलो, हमारे जितने भी स्वच्छता अभियान से जुड़े हैं ग्रामीण से और शहरी निगम निकायों से शायद थे और हमारे भारत वर्ष में आज को
11: गाना आपके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोने कॉल किया।

0: नमस्ते,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिन मदरगंज में।
0: क्या हाल चाल? अल्लाह में लाल भाई बोल रहे थे
1: जी। बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं भी ठीक
1: हूँ। तो क्या हो रहा था?
0: पूरा अरे बारिश में बैठे हैं।
1: तो गाना कौन सा सुनना आज आपको?
0: गाना है सवेरे संयोजन बजरिया, भक्ति गाना है
1: जी। और सुनाना भी है?
0: भैया है, रूबी है, सुन्ना है और रजेश संजय है।
1: चलिए तो प्ले करे गाना आपकी।
0: ठीक है, सोनी बोल रहे हैं क्या?
1: जी जी।
0: नमस्ते
1: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल किया।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87-894-18744।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
9: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
10: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
11: ठक ठक।
12: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
13: अच्छा मिला ही नहीं।
12: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
12: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
14: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
4: कहाँ पर?
14: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, छवही खास, गोपालगंज,
0: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
14: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है।
0: तो देर ना करें, ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
14: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835565695।
0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता मिलता है कोट पैंट पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोपराइटर विजय कुमार केडिया।
3: कॉल करे 87-894-18744।
5: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
15: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
16: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
17: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
18: बात आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
19: हेलो
20: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
19: हाँ सर जी, हमारा संगठन होता का
20: जी जी का होता थे बताएं।
19: फोन था के कट गया है, नेटवर्क
20: ना जी सबके संग होता है, शायद बारिश के मौसम बनो, बारिश काफी तेज आवत है तो मैं नेटवर्क था फंसाता थे।
19: हम जाने के हमारे संग होता कभी वो भरी
20: आज काफी भयानक वाला बारिश होता, आज 2 घंटा हो गए अभी बारिश होता।
19: हम नहीं कहता अभी नीचे
20: ना, यहाँ तो होता बारिश खुल रहा था महीने जैसे अंदर पैर रखने फिर बारिश शुरू हो गई। बात करता नहीं
19: ना। हाँ जी हाँ जी
20: जी तब बताएं जी
19: तब बढ़िया बा। हमने कहा 29 तारीख के खूब भयंकर बारिश भइल है, नहीं पानी होई तरी
20: ओ दिन तेज भइ रहे, शाम के बारिश भइ रहे।
19: हाँ शाम के पूरा टेंट समझाने अपना लोग के लगा रहे हैं उधिया गए
20: सब लेके चल गए।
19: हमने के पूरी खाई बैठल है यार, मतलब शाम के ही अभी मतलब 2-4 कवर तक खाई नहीं रखा तब तक पतल उतल न उधिया
20: बोला कि ना खाए दे आज
19: ना खाए मिला।
20: अब सब उदिया ले गए तो कैसे आदमी खाए।
19: हाँ पूरा टेंट समझाना में पानी लग रहा है, एक फीट तो पानी लग रहा है तो मैं आदमी कहाँ बैठे कहाँ खाई है
20: ना खा पाई है। सही बात बा।
19: हाँ खाना में कुछ देख जो ड्रम सोलन है ओकरा में पानी देखते देखते जो रहा ओकरा में पानी भर गया।
20: वही बात बटे, खाना भी बर्बाद हो गए जी। तो बता दी गाना कौन सुने के बाद।
19: अच्छा सुने के चाहत यहाँ पवन सिंह के सनहिया लगावल बहुत बात नहीं है
20: और सुनवाए के भी बा।
19: हाँ सुनवाए का पूरा रेडियो काल फैमिली बार हुआ बानी हम बानी। अरे घर तो बलिराम जी संगे तनी छटक गई बड़न छटक गई बड़न जानते बनी उनका घरेलू मैटर बनी।
20: अच्छा अच्छा क्या हुआ कि श्रीमती जी ने की आवेदन का।
19: श्रीमती जी कहा था कि 24 घंटा में 23 घंटा तू उनके संग रहो तो हमारा संगे कहो रहो ना
20: तो 24 घंटा में 23 घंटा ना तो रखी।
19: हाँ तो अब बड़न की बार बार हमारे कहीं चले जाए बोलन
20: तब तक लड़ाई होके के बाद बटे।
19: हाँ वही से लड़ाई हो जाता है। बुधे के दिन से खेल कि तू हमारा संग भाई मत रहा।
20: चली बढ़िया के ले बनी ऐसा बात बता।
19: हां का तुम बनी के हमारा संग रहबो हम अपन जा बनी चाक्षिक बनी। हमारा से जब जरूरत पड़े तब हमारा से मिल लिया।
20: जब काम पड़े तब मिल लिया ठीक
19: बा। हां काम पड़े तब मिल लिया
20: चली बढ़िया।
19: काम पड़े तब मन के बिना मतलब के हमारा संग रहले भी ठीक नहीं है।
20: बिल्कुल
19: हां हमको मेरा भी कहना है।
20: चली ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कॉल करने।
21: काहे आखिर काहे रोवलू जब हंसावे के ना रहे, काहे गुनगुनौलू जब गावे के ना रहे, आज आंसू पोछतनी एगो प्रश्न बन के, काहे कैलू मोहब्बत जब निभावे के ना रहे।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
3: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
2: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
3: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
4: हर बच्चे के सपनों को चाहिए सही डायरेक्शन।
5: एंड दैट डायरेक्शन बिगिंस एट मेरिडियन, द स्कूल कनेक्टिंग द हार्ट एंड माइंड।
4: अ कंप्लीट इंग्लिश मीडियम CBSE स्कूल, वेयर लर्निंग इज नॉट जस्ट about books, it's about skills, creativity and confidence.
5: Smart digital classrooms, GPS enabled transport and holistic development through public speaking, leadership and creative thinking, mentored by IITN educators.
4: From playgroup to class 12th, with science and commerce streams and special foundation programs for IIT, NEET and Olympiad.
5: Here, we don't just teach, we build future leaders.
4: Admissions are open now. Don't miss the chance. Limited seats available.
5: Visit today, Meridian, the school, Kamla Rai Arts College ke paas, Gopalganj.
4: Call us 910-299-4962 or 910-299-4963.
6: नमस्ते, निदेशक CBSE पब्लिक स्कूल बस डीला खास गोपालगंज जितेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। अभिभावक महोदय, आप अच्छे स्कूलों की एक सूची बनाइए, उन स्कूलों के क्लासरूम में अवश्य जाइए जिसमें आप अपने वार्ड का एडमिशन दिलाना चाहते हैं। वहाँ क्लासरूम में बच्चों के रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स स्किल, बॉडी लैंग्वेज और फेयर नोटबुक देखने का मौका मिलता है। साथ साथ आप 10th और 12th के CBSE का रिजल्ट भी देखने का मौका मिलता है। यदि अबव 95% स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस एवं रिजल्ट संतोषजनक है तो आप तय कर पाएंगे कि स्कूल अच्छा है। जी धन्यवाद।
7: लास्ट 10th बोर्ड रिजल्ट 2025, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, 50 स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबव 90% एंड नो स्टूडेंट स्कोर्ड बिलो 80%, ट्रूली शानदार अचीवमेंट।
4: लगातार 3 वर्षों 2023, 2024 और 2025 में डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन कॉमर्स स्ट्रीम देने का गौरव।
7: विजिट करें CBSE पब्लिक स्कूल, बस्टीला खास, गोपालगंज या कॉन्टैक्ट करें 7633970104।
8: Now pick it up, pick it up.
9: Hello.
8: Now pick your phone up.
9: Hello.
8: Pick it up, pick it up.
9: Hello.
8: Now pick your phone up.
9: Hello.
10: Jab phone ding ding bajti hai to kehte hain hello.
11: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
10: Bhage bhage phirte hain.
12: Break ke baad aap sabhi ka ek bar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सब इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो मैडम, नमस्कार।
14: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
13: जी मैं मन्नान बोल रहा हूँ कपूरपुर से।
14: जी कैसे हैं मन्नान जी?
13: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आज टाइम मिल गया है फोन करने के लिए। नाश्ता पानी हो गया?
14: जी जी बिल्कुल हो गया है।
13: हो गया कि हो रहा?
14: नहीं नहीं हो गया है
13: ना, हमको तो लगता है कि हो रहा है।
14: ना ना आज तो सुबह में ही हो गया है।
13: दो गाना सुना दीजिए मैडम आज।
14: जी
13: बन के दुल्हनिया मैं चली तेरे द्वार।
14: जी
13: तो गाना हमको वही सुनना था
14: और सुनवाना भी है।
13: और सुनवाना है क्या है वही जो आसाम वाले लोग आए हैं तो उन लोगों को सुनाना है जैसे बेनजीर नाम है बाबुल नाम है आलिया नाम है
14: ना,
13: इन लोगों को सुनवाना है और आपको सुनवाना है। बाकी रेडियो में जितने रिलीजन के साथ प्रेमी है लोग सुनेंगे
14: तो प्ले करे गाना।
13: बिल्कुल शौक से प्ले कीजिए जरा सुने आपका प्ले किए हुए गाना।
14: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो मैं इसमें कॉल किया।

0: गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 94.4 FM में।
0: थैंक यू मैम, आपको भी बरसात मुबारक।
1: जी जी, बरसात आपके उधर भी हो रही है क्या?
0: बहुत अधिक, आज तो रेनकोट पहन के आए हैं काम पे।
1: अच्छा,
0: टाइम पे ही आ गए थे, बारिश हो रहा था।
1: जब रेनकोट पहन के आना है तो आदमी टाइम पे
0: हाँ। और आज हमें एक भजन सुनना है।
1: जी बिल्कुल, बताइए कौन सा भजन सुनना है।
0: संजय मित्तल का गाया हुआ है, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, जिंदगी अब तेरे नाम है सांवरे।
1: जी, और सुनाना भी है
0: सारे लिसनर्स लोग को। और जमाना बहुत खराब चल रहा है, लग रहा है कि अब भगवत भक्ति ही आदमी का मतलब अंतिम सहारा है।
1: तो यही होगा।
0: वही चीज लगातार अखबार में वही चीज सुनने देखने को पढ़ने को मिल रहा है, सोशल मीडिया पे भी वही चीज आ रहा है ज्यादातर।
1: वही चीज है एक। ठीक है फिर।
0: ठीक है,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने को।
0: थैंक यू मैम।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़ और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
0: संपर्क 99 393 65 930।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज।

0: पाँच, या अभी कॉल कीजिए 92899227567 या 97746164।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
0: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
1: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 90971602।
3: प्रसाद क्लिनिक,
4: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
3: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
4: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में।
7: नमस्कार मैडम।
6: नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
7: नाम मनोज कुमार
6: जी,
7: हम मुंगेर जिला से बोल रहे हैं।
6: कैसे हैं?
7: ठीक है।
6: तो क्या हो रहा था?
7: क्या हो रहा था, बगीचा में बैठे हैं, रखवाली करते हैं। अपने क्षेत्र का कुछ जानकारी हम आपसे साझा कर सकते हैं?
6: जी बिल्कुल कर सकते हैं।
7: देखिए, हमारे गांव के बगल में एक घोड़ाखुर पहाड़ है, जिसका पौराणिक गाथा है कि जब दशरथ जी घोड़ा छोड़े थे तो घोड़ा जो था वही पहाड़ पे आके रुका था, तो उसका पदचिन्ह अभी तक यहाँ है।
6: अच्छा अच्छा,
7: इसी के नाम पे इस पहाड़ का नाम घोड़ाखुर रखा गया है। और वहाँ पर एक भोले बाबा का मंदिर है, वहाँ का मनोकामना सिद्ध होता है, जो भी कोई वहाँ जाके मांगते है ना, का मनोकामना सिद्ध होता है उस मंदिर में। बगल में झील है, बहुत सुंदर जी, बहुत अच्छा देखने में लगता है। 1 जनवरी को लोग वहाँ पिकनिक करने भी जाते हैं।
6: ये बढ़िया जानकारी दी है, कभी घूमना हुआ तो फिर आदमी आ सकता है उधर।
7: हाँ आइए, बहुत अच्छा घूमने का जगह है यहाँ पर। पानी इतना अच्छा गिरता है ना ऊपर से झरना, कहते हैं कि अगर किसी को खुजली उजली हो गया है कुंड में नहा लीजिए तो ठीक हो जाएगा।
6: अच्छा,
7: हमारे पहाड़ का यही विशेषता है मैडम।
6: चलिए
7: गाना हमको सुना दीजिए आज
6: जी,
7: दोस्ती का, गुड़िया कब तक रूठी रहोगी।
6: सुनवाना भी है?
7: सुनवाना है आपको, सरिता देवी को और सिंजिन के सारे श्रोतागण को। ठीक है, प्रणाम मैडम, गाना सुना दीजिए
6: जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल किया।

0: 24 राज्यों में 160 से अधिक शहरों में 280 से ज्यादा स्कूल्स के साथ एजुकेशन में ट्रस्टेड नेम बिरला।
1: अब वही लेगेसी, वही एक्सेलेंस आ गया है आपके शहर गोपालगंज में।
0: इंट्रोड्यूसिंग बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशंस आर नाउ ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 7।
1: और खास बात, प्ले ग्रुप के लिए लिमिटेड पीरियड फ्री एडमिशन।
0: मॉडर्न एजुकेशन विथ AC क्लासरूम्स, डिजिटल लर्निंग, कंप्यूटर एंड साइंस लैब्स, लाइब्रेरी एंड सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी।
1: बिकॉज लर्निंग इज बियॉन्ड क्लासरूम्स, म्यूजिक, डांस, योगा एंड जूडो क्लासेस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑल टीचर्स आर BEd क्वालिफाइड एंड फॉलो CBSE गाइडलाइंस, इंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन।
0: विजिट टुडे यादवपुर रोड सरिया वार्ड नंबर 1, शंभू पथ सरस्वती टॉकीज के पास गोपालगंज।
1: कॉल नाउ 7759949440 और 7759949441।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
6: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
7: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुत डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
6: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आँखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
8: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा और हमारे एन्यूमरेटर हो सकता है कि कुछ प्रेजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये 2 फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पर ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पे जो बनने वाली हूँ सही सही बने। बहुत बहुत
9: धन्यवाद।
10: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो,
11: हेलो मैम, सलाम अलैकुम।
12: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिन 90.4 FM में।
11: थैंक यू
12: जी। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
11: जी रियाज अंसारी सिवान।
12: जी जी, क्या हाल चाल है?
11: हाल चाल बढ़िया है, यहाँ तो कंपटीशन हो रहा है कॉल लगाने के लिए।
12: चलिए तो कंपटीशन में आप जीत गए लग रहा है।
11: मैं बन गया।
12: चलिए बढ़िया है, तो बता दीजिए।
11: पहली बार भी किया था तो 75, अभी 76।
12: चलिए बढ़िया है, लग गया ना?
11: हाँ लग गया जी, लग गया। लड़ाई पे जा रहे हैं।
12: चलिए तो आपको उधर भी बारिश हो रही है?
11: नहीं, हमारे और इधर हम बेंगलोर में है ना, अभी फर्स्ट टाइम खोल के था आपको, सेकेंड टाइम है। तो इधर तो दिन में धूप होता है पर माशाल्लाह रात को बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। अब बारिश भी रात को ही होती है, दिन में कमाओ रात को सो जाओ।
12: बढ़िया है, रात को बारिश होती है तो कोई टेंशन नहीं रहता, अपने घर में सब कुछ रहता है।
11: उधर तो गाँव में तो पूरा आंधी तूफान, क्या क्या किसी का सामने आना, टेंट सब उड़ जाए।
12: आज तो बहुत सारा इधर लगन है और देख रहे हैं कि सुबह 10 बजे से बारिश इतनी कंटिन्यू हो रही है।
11: हम भी मिस कर रहे हैं बहुत अपने गांव सुबह।
12: चलिए तो गाना कौन सा सुनना है?
11: गाना हमें सुनना है वो मेरे आने पे खिल जाना तेरा, और मेरे जाने पे रुक जाना तेरा, याद है ना
12: जी। और डेडिकेट भी करिएगा?
11: हाँ करेंगे, आकाश सैनुल्ला मकान और शहजादी।
12: चलिए तो प्ले करे गाना आपकी।
11: और एक बात मैम, कुछ बोल सकते हैं शहरी वगैरह? क्योंकि
12: बिल्कुल कुछ भी बोल सकते हैं जिससे सुन के किसी को आपत्ति नहीं हो, किसी को
11: नहीं,
12: मतलब मैं आपको बोल रही हूँ किसी को दुख ना हो, बाकी आप सब कुछ बोल सकते हैं। और गाने में भी कोई ये नहीं है, गाना बस जातिवाद नहीं होना चाहिए, धार्मिक गाना नहीं होना चाहिए, बस
11: वो सबसे दूर रहते हम, लड़ाई झगड़ा सही क्या मतलब। तो हम यही कहना चाहते कि हमारे हेड सॉन्ग के साथ में एबी बज जाए, मांगा था खुशी आशियाने की चल पड़ी आधिया जमाने की, मांगा था खुशी आशियाने की चल पड़ी आधिया जमाने की, मेरा दर्द कोई समझ ना सका क्योंकि हम याद रहते हमेशा मुस्कुराने।
12: जी जी
11: बस इतना ही, थैंक यू।
12: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारी चॉइस में कॉल किया।
11: थैंक यू मैम,
12: वेलकम।

0: दोस्तों, आप लोग अभी कार्यक्रम हेलो माय चॉइस को मेरे साथ यानी आरजे सोनी के साथ सुन रहे थे। अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मुझे दीजिए अब जाने की इजाजत और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो रिंजन 90.4 FM। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, नमस्कार।
1: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है, सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा और हमारे एन्यूमरेटर हो सकता है कि कुछ प्रिजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये 2 फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पे ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हों सही से ही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सीवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर M.A. अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
9: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
10: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
9: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
10: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
9: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।

0: दोस्तों लीजिए, फिर आ गया वही दिन वही बार जिसका हम बेसब्री से कर रहे थे इंतजार।
1: आप सभी को स्वच्छिका और सुजल का सादर नमस्कार।
0: क्या है कि स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी कार्यक्रम देता है हमको शुद्ध विचार। हर तरफ हर कोना हर गांव शहर में हो रहा है स्वच्छता का प्रचार।
1: दोहराना है हमें यह संकल्प और यह व्यवहार कि स्वच्छता ही है हम सबका अधिकार।
0: रखना है स्वच्छ हर घर का शौचालय इस बार। धोएंगे साबुन से हाथ खाने से पहले और शौच के बाद।
1: करेंगे सफाई से प्यार, करेंगे सबसे स्वच्छता की गुहार।
0: केवल मनोरंजन नहीं उद्देश्य है हमारा।
1: बैठ जाए हर मस्तिष्क में ये संकल्प कि स्वच्छता ही है एकमात्र विकल्प।
0: स्वस्थ तन और स्वस्थ मन में ही वास करते हैं सुविचार।
1: प्रण करे आज ही कि स्वच्छ सुजल करना है हमें पूरा देश।
0: दूर हो जाएगी बीमारी अगर स्वच्छता की होगी वातावरण में बहार।
1: दूषिका भी भाग जाएगी अगर होगी आपके आसपास ऐसी व्यार।
0: यही है सुजल स्वच्छ गांव अभियान की पुकार। साथियों इन सब के सहारे ही होगा हमारी नैया पार।
1: आज के इस कार्यक्रम में हम आपको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की पूरी जानकारी देंगे, विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों की कहानियाँ सुनेंगे और साथ ही आपको ये बताएंगे कि कैसे इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और शौचालय की सुविधा प्रदान करके ओपन डेफिकेशन फ्री भारत बनाना है। इस मिशन के तहत शौचालय निर्माण, स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने और व्यवहार में बदलाव लाने पर जोर दिया जाता है।
0: जल के अधिकार के साथ एक बात और, वो ये है कि स्वच्छ भारत अभियान के पहले चरण में सरकार ने हर गांव के हर घर में शौचालय बनवाने का कार्य किया था। स्वच्छिका तुमको याद है ना कि कितने सारे गांवों ने स्वयं को ODF घोषित किया था। अब ये ना कह देना कि ODF गांव क्या होता है।
1: अरे ऐसा कैसे कह दूंगी, मुझे मालूम है। ODF का पूरा नाम खुले में शौच मुक्त गाँव ओपन डेफिकेशन फ्री है। यह एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उन समुदाय या क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां लोग खुले में शौच नहीं करते हैं बल्कि शौचालय का उपयोग करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के साथ साथ महिलाओं की निजता की रक्षा में मदद करती है। सही बताया ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल। अब देश ODF से ODF प्लस मॉडल गांव की ओर बढ़ रहा है। एक ODF प्लस मॉडल गांव वह होता है जहां खुले में शौच की आदत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन हो, साफ सफाई का स्तर अच्छा हो, सार्वजनिक जगहों पर कचरा और पानी जमा ना हो।
1: इसमें यह सुनिश्चित करना है कि गांव के सभी घरों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनबाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा हो और सभी सार्वजनिक स्थानों और घरों में ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रभावी प्रबंधन हो और कूड़ा कचरा और स्थिर पानी कहीं भी जमा ना हो।
0: लेकिन सरकार के साथ साथ इसके लिए समुदाय की भागीदारी भी बहुत जरूरी है। हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है रेडियो के माध्यम से और आप लोगों को यह देखना जरूरी है कि इस मुहिम में कोई भी परिवार छूटा नहीं।
1: अच्छा, लेकिन मुझे यह पता है कि अब तक 5.67 लाख से अधिक गांवों ने स्वयं को ODF प्लस घोषित किया है जिसमें से 4.81 लाख से ज्यादा गांवों को ODF प्लस मॉडल के रूप में मान्यता दी गई है।
0: देश में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए सरकार के प्रयास जारी हैं। हर गांव में स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन, हर घर नल योजनाएं भी शामिल हो चुकी हैं और हमारी आपकी सहभागिता इस महाअभियान में बनाकर रखना भी बहुत जरूरी है। तो सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM और सुनते रहिए ये कार्यक्रम
1: स्वच्छ सुजल गाँव की कहानी रेडियो की जुबानी, जहां हर घर तक पहुंचेगी हमारी आवाज हमारी बात। लेकिन फिलहाल इन सारी बातों को विस्तार से बताने के लिए हमारे बीच विशेषज्ञ उपस्थित हो चुके हैं। चलिए पहले सुनते हैं उनकी बात।

मैं ऐश्वर्या सिंह, संयुक्त सचिव एवं मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय से बोल रही हूँ। आज आप सभी से स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी कार्यक्रम के जरिए जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की, स्वच्छ सुजल गांव की, और हम इन दोनों विषयों में कैसे एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से जब स्वच्छता और खुले में शौच का विषय उठाया था तो यह अपने आप में अभूतपूर्व था। उनके मार्गदर्शन में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई और हम सब ने मिलकर अपने देश के हर गांव को खुले में शौच से मुक्त यानी ODF बनाने का जिम्मा उठाया। आने वाले वर्षों में यह मिशन और स्वच्छता का विषय एक जन आंदोलन बना और हमें इसमें आप सभी का पूर्ण सहयोग मिला। इस दौरान देश में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ और महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर 2019 में हमने खुद को ODF घोषित किया। इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि और इसकी नींव थी लोगों में आया व्यावहारिक परिवर्तन या बिहेवियरल चेंज। घरों, पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों, युवाओं, बच्चों, सभी में स्वच्छता के लिए जागरूकता बढ़ी और सभी ने इसको अपनी जीवन शैली का एक अंग बनाया। लेकिन हम केवल ODF पर नहीं रुके। 2020 से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण यानी फेज 2 पर काम शुरू हुआ। इसमें लक्ष्य था ODF से आगे ODF प्लस की ओर बढ़ना, अपने गांवों को ODF प्लस मॉडल गांव बनाना। ODF प्लस मॉडल गांव का अर्थ है कि गांव न केवल खुले में शौच से मुक्त हो बल्कि वहां का कचरा, गंदा पानी और प्लास्टिक अपशिष्ट या वेस्ट भी सही तरीके से निपटान किया जा सके। इसके तहत सरकार ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर भी जोर दे रही है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस दूसरे चरण में आज हमारे 4,85,000 से भी ज्यादा गांव ODF प्लस मॉडल घोषित किए जा चुके हैं और यह काम आप सभी के राज्यों में अभी भी जोर शोर से जारी है। ऐसे ही स्वच्छ सुजल गांव एक ऐसा गांव होता है जहां साफ पेयजल की व्यवस्था हो और हर परिवार के पास बेहतर स्वच्छता की भी सुविधा हो, यानी वह एक ODF प्लस मॉडल गांव भी घोषित किया जा चुका हो। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण केवल एक सरकारी योजना नहीं, यह एक जन आंदोलन है जिसमें सरकार के साथ साथ आप सभी की जन भागीदारी बहुत आवश्यक है। इस अभियान के अंतर्गत बन रही सुविधाओं, शौचालयों, कचरा प्रबंधन के केंद्र, प्लास्टिक वेस्ट यूनिट इत्यादि के रख रखाव और इनको सुचारू रूप से चलाने में राज्यों, जिलों, गांवों की हम सबकी अहम भूमिका है। इस भूमिका को भी आप सभी को पूरे मन से निभाना है। और हाँ, आपसे अनुरोध है कि अपने गांव, ब्लॉक, जिले के बच्चों को, युवाओं को भी स्वच्छता के विषय के प्रति जागरूक बनाएं, उनको इस अभियान के अंतर्गत बनी व्यवस्थाएं दिखाएं, जिससे भविष्य में वे भी आगे बढ़कर स्वच्छता का दीप प्रज्वलित रखें। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें, हम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना से हर काम करेंगे। हम स्वच्छ भारत विकसित भारत के लक्ष्य में अपना भरपूर सहयोग करेंगे। न हम कचरा फैलाएंगे, न दूसरों को फैलाने देंगे। हम अपने गांव को ODF प्लस मॉडल गांव बनाएंगे और जो गांव ODF प्लस मॉडल बन चुके हैं उनकी व्यवस्थाओं को सुचारू रखने में सहयोग देंगे। इसी संदेश के साथ मैं ऐश्वर्या सिंह आपसे विदा लेती हूँ। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के इस जन आंदोलन से। धन्यवाद। जय हिंद।

0: हमारे विशेषज्ञ ने कितने अच्छे से यह सारी बातें आप लोगों तक पहुंचाई। याद रखना है आपको और ये आपके क्षेत्र में कार्यान्वित हो इसके लिए आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है।
1: एक मजे की बात बताऊं सुजल, देश भर के 100 सामुदायिक रेडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम का पहला एपिसोड ही सुनने के बाद मैं स्वक्षिका और तुम सुजल साथ में दूषिका भी बहुत फेमस हो गए हैं।
0: अच्छा कैसे?
1: अलग अलग गाँव में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे चरित्र को प्रस्तुत किया जा रहा है।
0: अच्छा कहाँ?
1: चलो तुमको रामपुर गांव की कहानी सुनाती हूँ। वहाँ पर नुक्कड़ नाटक के रूप में क्या प्रस्तुत हो रहा है यह सुनवाती हूँ। वहाँ पर एक नाटक हो रहा है जिसका नाम है दूषिका की हार स्वच्छ भारत की जीत।
0: दूषिका या प्रदूषिका?
1: सही तो है सुजल, प्रदूषिका तो सिर्फ प्रदूषण फैलाएगी, ये दूषिका ही है जो प्रदूषण के साथ हर स्थान को दूषित करती रहती है। हम भी अब से इसको दूषिका ही कहेंगे तो सही होगा।
2: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी, स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी।
3: कहते हैं जब बुराई बढ़ती है तो अच्छाई भी ताकत से खड़ी होती है। ये कहानी है रामपुर गाँव की, जहां स्वच्छता को गंदगी ने खुली चुनौती दी, जहां प्रदूषिका ने फैलाया अंधेरा और स्वच्छिका ने जलाया स्वच्छता का दीपक, और सुजल कुमार बना उस रोशनी का स्वच्छता दूत। जानेंगे कैसे काम आई बुजुर्गों की नसीहत। आइए सुनते हैं दूषिका की हार स्वच्छ भारत की जीत।
2: स्वच्छ

0: दादरी में दूषिका गांव की नालियों से निकलकर शौच के खुले मैदान में फैलकर कभी हवा में कभी पानी में मेरा साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा है। जहां लोग खुले में शौच करते हैं वहां शौचालय बनाते तो हैं, मगर उपयोग ना करने से खराब और टूट फूट जाते हैं। वहीं तो बसती हूँ मैं। जो कहते हैं कल करेंगे साफ, उनको जल्द से जल्द मैं कर देती हूँ बीमार। खुला शौच मेरी जीत, टूटी टंकी मेरा ठिकाना, गंदा शौचालय मेरा आशियाना, मेरा काम सबको बीमार बनाना।
1: घर में शौचालय तो है पर पानी नहीं, गंदा भी है। बिमला के बेटे को तो खुजली हो गई। ऐसे शौचालय का उपयोग से बेहतर तो खेत में ही ठीक लगता है।
2: पिछले महीने 4 बच्चे बीमार पड़े। सरपंच जी कुछ कीजिए।
3: जंगल जाना अब खतरे से खाली नहीं, सांप और कीड़े।
4: हमारे घर में शौचालय तो है लेकिन बेटा अंदर नहीं जाता, कहता है बदबू आती है।
0: बस ऐसे ही रहो, मुझे तुम सबका लापरवाह रवैया बहुत पसंद है। तुम्हारे बच्चों का बुखार, पेट दर्द, उल्टी सब मेरी सौगात है। तुम सबको तो मुझसे रहम की पुकार करनी चाहिए।
5: एक दिन गांव की सीमा पर आता है एक युवक, आत्मविश्वास से भरपूर, हाथ में झोला, आंखों में मिशन लिए। वो था सुजल कुमार, जो अपने गांव में रोज स्कूल जाता और खूब मन लगाकर पढ़ाई करता। छुट्टी के दिन सुजल कुमार अपने पड़ोसी के गांव गया था। सीखा था उसने कि बदलाव घर से शुरू होता है।
6: राम राम भैया, ये गांव में चारों ओर सन्नाटा क्यों है? सब इतने दुखी क्यों हैं? और इतनी गंदगी क्यों है भाई?
4: लगता है जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं। हाँ नहीं तो
7: सच कह रही हो बहन, बन तो ऐसे रहा है जैसे इसको कुछ पता ही नहीं।
6: सब समझ गया चाची, सब समझ गया मैं। इस गांव में ये दुख और सन्नाटे का कारण ये अस्वच्छता है।
0: मैं हूँ इन सब का कारण, मैं ही हूँ। बोलो क्या करोगे तुम, बोलो बोलो। कुछ नहीं कर पाओगे तुम, कुछ दिन में तो तुम्हें भी मैं अपना शिकार बना लूंगी, समझे?
6: अच्छा तो तुम हो दुष्का और ये सब तुम्हारा किया धरा है। अब मैं सब समझ गया, देखो मैं कुछ दिनों में तुम्हारा कैसे इलाज करता हूँ।
5: सुजल गांव में नुक्कड़ नाटक करता है, बच्चों को खेल खेल में सिखाता है, बड़ों से मिलकर समझाता है।
6: शौचालय सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, ये है बीमारी से लड़ने का हथियार। खुले में शौच से मिट्टी पानी हवा सब जहरीले हो जाते हैं। अगर तुम अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हो तो बन जाओ होशियार, तो शौचालय का सही उपयोग करो और उसे साफ भी रखो। खुद भी स्वस्थ रहो और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता के प्रति जागरूक करो।
5: धीरे धीरे गाँव के कुछ लोग प्रेरित होते हैं, शौचालय की सफाई शुरू करते हैं और दूषिका बेचैन होती है, गांव की गली से छिप कर देखती है।
0: ये क्या हो रहा है, लोगों ने नालियां कैसे ढक दी? क्या ये शौचालय का दरवाजा कब लग गया? दुर्गंध कहां गई, मच्छर कहां गए? अरे अरे ये गांव में सब हो क्या रहा है?
5: अब गांव में आती है उजाली सी रोशनी के साथ स्वच्छिका।
8: गांव वासियों, तुम्हारी जागरूकता ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, जहाँ शौचालय का निरंतर उपयोग और सही तरीके से रखरखाव होता है, जहाँ साबुन से हाथ धोना आदत है, वही रहती हूँ मैं स्वच्छिका।
5: अब गांव में हर घर गली मोहल्लों में अभियान, दीवारों पर स्वच्छता से संबंधित चित्र, साबुन के साथ बच्चे नल पर हाथ धो रहे हैं, महिलाएं गा रही हैं,

0: अरे नहीं, स्वच्छता की ये चमक मेरे प्रदूषण को निगल रही है। मेरा प्रदूषण साया तो खत्म होता जा रहा है। सुजल की बातें लोगों की आदतें बदल रही हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब मेरा ठिकाना कहाँ होगा? शौचालय में ढक्कन लग गया, नाली साफ कर दी, खुले में शौच के लिए अब कोई नहीं आता।
1: स्वच्छिका, सुजल कुमार और गांव वाले मिलकर रैली निकाल रहे हैं। सब मिलकर नारा लग रहे हैं। सुजल की बातों को गांव वाले दोहराते हैं। खुले में शौच को ना कहो, बीमारी को दूर भगाओ, शौचालय को साफ रखो, स्वच्छ गांव बनाओ। दूषिका थक कर गांव की सीमा पर बैठकर रो रही है।
0: मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में बदल सकते हो। तुम सबने स्वच्छता अभियान में जन भागीदारी के साथ साथ लोगों की सोच को भी बदला। अब मुझे जाना होगा।
1: गांव की महिलाएं स्वच्छिका को फूलों से सजा रही हैं। बच्चे नाच रहे हैं।
2: तुम सब की मेहनत ने दूषिका को हराया, लेकिन याद रखो, अगर सफाई की आदत छूटी तो वो लौट सकती है। इसीलिए सफाई को आदत बनाओ, मजबूरी नहीं।
0: अरे गांव वालों, स्वच्छता में रोज रोज सफाई की क्या जरूरत है? गंदा तो होना ही है, एक दिन छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है?
3: फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है दूषिका। गंदे शौचालय से ही प्रदूषण बढ़ता है। अगर हम रोज सफाई करें तो तुम दम तोड़ दोगी।
4: ये दूषिका फिर से गांव में आके हमारे घरों में बीमारी फैलाना चाहती है। देखो कैसे बुतनी की तरह हंस रही है। गांव वालों, अब से सफाई को अपनाओ।
0: औरतें ही तो करती हैं ये साफ सफाई, पुरुष क्यों हाथ लगाए? अब नहीं बोलोगे?
2: सफाई किसी एक का काम नहीं, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। अगर सब मिलकर साफ करें तो किसी पर बोझ नहीं पड़ेगा।
4: हमारे घर में शौचालय है, लेकिन बदबू बहुत आती है, बच्चे तो पास भी नहीं जाते।
3: तो समझाइए उनको, शौच के बाद पानी डालना सिखाइए उनको, शौचालय का महत्व बतलाइए उनको।
0: अच्छा, तुम्हारे घर में अभी भी सफाई नहीं हुई क्या? चलो चलो, मैं आती हूँ तुम्हारे घर, यही मेरा असली ताकत है, मैं फिर आऊंगी।
2: सुनो सब लोग, शौच के बाद हाथ ना धोना बीमारी को न्योता देना है। हाथ साबुन से अच्छे से धोना उतना ही जरूरी है जितना खाना खाना।
0: और तुम क्या कहोगे सुजल? हर किसी के पास फिनाइल और डिटर्जेंट थोड़ी ना होता है।
3: फिनाइल ना हो तो नींबू, नमक, राख भी मददगार है। सफाई का तरीका ढूंढा जा सकता है, बस इरादा साफ होना चाहिए, शौचालय भी साफ रहेगा।
0: खुले में शौच से तो हवा चलती है, खेत में ताजगी रहती है, ये बंद कमरा घुटन बीमारी।
2: खुले में शौच से ताजगी नहीं, बीमारी और शर्म फैलती है। शौचालय में हवा की निकासी हो तो ताजगी भी रहती है और इज्जत भी।
5: हम सब समझ गए हैं दूषिका, अब तुमसे नहीं डरेंगे। शौचालय को साफ रखेंगे, रोज उपयोग करेंगे, हाथ धोएंगे और तुम्हें दूर भगाएंगे।
0: ओह, ये तुम सब क्या कह रहे हो? लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो?
2: नहीं दूषिका, हम उनको सिर्फ जागरूक कर रहे हैं।
1: गांव रामपुर अब नहीं रहा पहले जैसा। हर घर में शौचालय है और उसका रख रखाव भी। बच्चे बीमार नहीं होते, महिलाएं सुरक्षित हैं और दूषिका हार चुकी है। ये है असली सुजल स्वच्छ गांव की तस्वीर।
3: सुजल स्वच्छ गांव, सुजल स्वच्छ भारत।

0: मजा आ गया ना। हमारे कैरेक्टर स्वक्षिका सुजल कुमार को लेकर रामपुर गांव में इस तरह का नाटक खेला जा रहा है और हमको लगता है कि नाटक सुनकर देश के बाकी हिस्सों में भी जरूर अपने अपने गांव में जागरूकता लाने के लिए नाटक खेले जाने की इच्छा तो जरूर हो रही होगी। इस रेडियो कार्यक्रम के अलावा और लोग कम्युनिटी एंगेजमेंट के जरिए भी बात कर रहे होंगे इस संदर्भ में। चलो गाँव के एक स्वच्छता चैंपियन से बातचीत सुन लेते हैं।
1: स्वच्छता चैंपियन ये कौन होते हैं?
0: स्वच्छता चैंपियन वे व्यक्ति होते हैं जो स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने और लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लोग स्वच्छता को बढ़ावा देने और समुदाय में स्वच्छता की आदतें विकसित करने के लिए काम करते हैं। वे लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करते हैं और उन्हें स्वच्छता के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। समुदाय में सक्रिय रूप से काम करते हैं और स्वच्छता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन करते हैं। ऐसे ही एक स्वच्छता चैंपियन अब हमारे साथ है।
1: आज हमारे साथ स्वच्छता चैंपियन गौतम जी जुड़ रहे हैं। गौतम जी स्वागत है रेडियो रिमझिम में, आप अपना परिचय दीजिए।
2: रेडियो रिमझिम के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मेरा नाम गौतम है और मैं गोपालगंज जिले के विजयपुर का रहने वाला हूँ।
1: अच्छा गौतम जी, आप अपने गांव में क्षेत्र में एक स्वच्छता चैंपियन ऐसे व्यक्ति के तौर पे जाने जाते हैं जिन्हें लोग देखते ही पहचान लेते हैं कि आप स्वच्छता के दूत हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जो अपने गांव में कार्य कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में जानकारी दें।
2: जरूर, हमारे गांव में पहले कूड़ा कचरा इधर उधर फैला रहता था, नालियां बंद रहती थी और कई लोग खुले में शौच के लिए जाते थे। मैंने सोचा अगर बदलाव चाहिए तो शुरुआत अपने घर और अपने हाथों से करनी होगी। मैंने लोगों को समझाना शुरू किया कि सफाई सिर्फ सरकार का काम नहीं, यह हम सबकी भी जिम्मेदारी है। धीरे धीरे गांव के लोग भी जुड़ते गए और मुझे स्वच्छता चैंपियन के रूप में जाने लगा।
1: बहुत अच्छा गौतम जी, आप गांव में साफ सफाई के लिए कैसे प्लान करते हैं, आप क्या क्या करते हैं?
2: अपने गांव में साफ सफाई के लिए हर रविवार सुबह गांव के नौजवान, महिलाएं और बच्चे सब मिलकर नालियों की सफाई और कचरा इकट्ठा करते हैं। घर घर जाकर लोगों को बताता हूं कि कचरा इधर उधर ना फेंकें, घर के आगे पीछे पानी जमा ना होने दें, शौचालय का ही इस्तेमाल करें। स्कूल में बच्चों को समझाता हूं, बच्चे सबसे तेज सीखते हैं और घर में भी अपने माता पिता को टोकते हैं। गांव में स्वच्छता लाने के लिए गीला सूखा कचरा अलग करना, हाथ धोने की आदत डालना, गांव की गलियों को हर दिन झाड़ू लगाना। लोग अब खुद आकर कहते हैं हमारा गांव गंदा नहीं रहेगा।
1: आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को प्रेरित कैसे करते हैं कि लोग इस अभियान से जुड़े, स्वच्छता आसपास रखें, इसके लिए आप प्रेरित कैसे करते हैं?
2: बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, साफ गांव स्वस्थ परिवार। लोगों को उदाहरण देकर समझाता हूँ कि स्वच्छता से बीमारी कम होती है, अस्पताल का खर्च बचता है, बच्चों की पढ़ाई नहीं छूटती और गांव की पहचान भी बढ़ती है। जब लोग अपने बदलते गांव को साफ सुथरा देखते हैं तो खुद प्रेरित होते हैं।
1: बहुत ही अच्छी बात आप लोगों को समझाते हैं। मैं अंत में आपसे बस यही पूछना चाहूंगा कि क्या आप संदेश देना चाहेंगे हमारे सभी श्रोताओं को?
2: मैं बस इतना कहना चाहूंगा, स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है, यह रोज की आदत है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो गोपालगंज का हर एक गांव स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बन सकता है। धन्यवाद रेडियो रिमझिम हमें अपनी बात गाँव गाँव पहुँचाने का मौका देने के लिए।
1: धन्यवाद गौतम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: धन्यवाद।
1: स्वच्छता चैंपियन सचमुच समुदाय में स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाने में बहुत मदद करते हैं। वे स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाते हैं और लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करते हैं। स्वच्छता चैंपियन बनकर आप अपने समुदाय में स्वच्छता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं।
0: मुझे ऐसा लगता है सुजल कि स्वच्छता एक सोच है और यह सोच हर मन में विकसित हो सकती है। हम बच्चों को जब सिखाते हैं कि यहाँ पर कागज मत फेंको या यहाँ पर केले का छिलका मत फेंको, डस्टबिन में डालकर आओ, इस समय से ही बच्चे के मन में यह सोच विकसित होनी शुरू हो जाती है।
1: सही कह रही हो स्वच्छिका, मैं जब छोटा था गांव के स्कूल में जाता था तो वहां पर हमारे गुरुजी हमको स्वच्छता की बहुत छोटी छोटी बातें इसी तरह सिखाते थे और बाल मन में पड़े हुए प्रभाव के बाद आज भी मैं कहीं गंदगी देखता हूं तो उसको साफ करने की कोशिश करता हूं।
0: तुम गांव के स्कूल से ही पढ़े हो?
1: हाँ, मेरी सारी शुरुआत शिक्षा गांव में ही हुई है और इसीलिए मैं एक स्वच्छता चैंपियन की तरह का काम कर रहा हूँ। स्वच्छ पेयजल और साफ सफाई बनाए रखने में लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ।
0: हाँ सुजल, और आजकल तो गांव में कम्युनिटी लीड इनिशिएटिव बहुत अच्छे से काम कर रहा है।
1: अच्छा, स्वच्छता एक कम्युनिटी लीड इनिशिएटिव क्या है?
0: ये लो, सारी रामायण खत्म हो गई और ये पूछ रहे हैं राम का किरदार कौन है।
1: अरे बस पहली ही बुझाओगी या कुछ बताओगी भी कि क्या है यह कम्युनिटी लीड इनिशिएटिव?
0: अरे भाई, यह कोई रॉकेट साइंस नहीं बल्कि स्थानीय समुदाय द्वारा ऐसा प्रयास है जिसमें गांव के लोग खुद योजना बनाते हैं, निर्णय लेते हैं, श्रम करते हैं और खुद ही निगरानी भी करते हैं।
1: ओहो, मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि हमारा समुदाय ही स्वयं आगे बढ़कर गंदगी को मिटाता है?
0: अरे भाई हाँ, तब से मैं क्या विदेशी भाषा में बात कर रही थी। और इसमें हमारी सरकार समुदाय की मदद भी करती है। इसमें सरकार की भूमिका या सहायक की होती है, आदेश देने वाली नहीं।
1: अच्छा समझा, यानी तुम यह कहना चाहती हो कि यह मॉडल सबकी भागीदारी सबकी जिम्मेदारी पर आधारित है।
0: ऐसा तो तुम बड़े इंटेलिजेंट बनते हो, लेकिन
3: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नगर आवास और शहरी विकास योजनाओं की प्रगति पर समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया। और प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गिनती का काम आज से शुरू। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की। यह मुलाकात पटना के 7 सर्कुलर रोड स्थित नीतीश कुमार के नए आवास पर हुई। लगभग आधे घंटे तक चली इस बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। इस मुलाकात को कैबिनेट विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नगर आवास और शहरी विकास योजनाओं पर समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान शहरी विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं, आधारभूत

0: काठमांडू में आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रही कोसी और गंडक परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक चर्चाएं की गई। काठमांडू में हमारी संवाददाता श्वेता सिंह की रिपोर्ट।
1: कोसी और गंडक परियोजना की संयुक्त समिति की बैठक में बाढ़ नियंत्रण, तटबंधों के रखरखाव, सिंचाई प्रबंधन, कटाव से सुरक्षा और सीमा पार जल मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बिहार जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने किया, जबकि नेपाल का प्रतिनिधित्व जल संसाधन विभाग के महानिदेशक मित्रा बराल ने किया। बैठक में नेपाली प्रतिनिधिमंडल ने कोसी और गंडक परियोजना के मुख्य क्षेत्रों, जिनमें नहरें, बैराज क्षेत्र और तटबंध से अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताई, ताकि परियोजनाओं का संचालन और रख रखाव सुचारू रूप से सुनिश्चित किया जा सके। वीरपुर क्षेत्र में कोसी अंचल में वर्ष 2026 की बाढ़ आने से पहले दोनों पक्षों ने कटाव नियंत्रण कार्यों के लिए रेत, मिट्टी और गाद जैसी सामग्रियों के उपयोग पर सहमति व्यक्त की। इस बात पर भी सहमति बनी कि कोसी परियोजना के तहत पट्टे पर दी गई भूमि का सीमांकन GPS तकनीक का उपयोग करके और मौके पर जाकर एक निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। नेपाली पक्ष ने आश्वासन दिया कि बाढ़ के मौसम में जब कोसी नदी का जल प्रवाह तेज होता है तो स्थानीय नागरिकों द्वारा की जाने वाली लकड़ी कटाई, मछली पकड़ने और अन्य गतिविधियों के कारण कोसी बैराज के सामान्य संचालन में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाएगा। भारत ने नेपाल में पश्चिमी कोसी मुख्य नहर और वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के नहर कमान क्षेत्रों में जल निकासी और जल भराव से संबंधित मुद्दों का निरीक्षण करने और उन्हें हल करने पर सहमति जताई। समाचार कक्ष से कामिनी ठाकुर।
0: उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार नीतीश कुमार की राह पर ही आगे बढ़ रही है। जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में श्री चौधरी ने कहा कि वर्तमान सरकार 2025 से 30 के लिए किए गए नीतीश कुमार के वायदे को पूरा करेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अल्पसंख्यक समाज के लिए विभिन्न कल्याणकारी कामों को पूरी ईमानदारी से पूरा किया जा रहा है। ऐसे में किसी प्रकार के अनावश्यक भय या भ्रम की स्थिति में रहने की आवश्यकता नहीं है।
2: नीतीश कुमार जी के शासन में जिस तरीके से 3C से जो कोई कॉम्प्रोमाइज करने की बात नहीं थी, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, क्योंकि बराबर इस मुद्दे को भड़काने की कोशिश हमारे विपक्ष के साथी करते रहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि सांप्रदायिकता पर भी जो जीरो टॉलरेंस की नीति नीतीश कुमार जी के समय में चल रही थी, आगे भी वही चलेगी। बिहार सूबे के तो सभी अल्पसंख्यक समाज के लोग मानते ही हैं, देश भर के अल्पसंख्यक समाज यह मानता है कि अल्पसंख्यकों के हित में जो बिहार में काम हुआ है वो कहीं दूसरी जगह नहीं हुआ।
0: जदयू अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार अपनी पहली राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कल बेतिया से करेंगे। निशांत कुमार की इस यात्रा का नाम सद्भाव यात्रा रखा गया है। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने आज बेतिया में कहा कि 2 दिवसीय इस यात्रा के दौरान निशांत कुमार पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे।
3: ये गौरव का विषय है कि माननीय निशांत कुमार जी की सद्भाव यात्रा की शुरुआत चंपारण की धरती से हो रहा है। नीतीश जी की विरासत कोई जनता दल की केवल विरासत नहीं, बिहार की विरासत नहीं, देश की राष्ट्रीय राजनीति में विरासत है। उस विरासत को सजाने और संवारने का काम निशांत कुमार जी को दिया गया।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को लोकसभा के 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी अपने लोकप्रिय फिल्मी गीतों और विज्ञापनों के लिए देश भर में जाने जाते हैं। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊर्जा

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुने सरसाए साप सुने सरसाए साए साए सुरमा सा संग समाए समय सबक समझाए।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: शहर का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: चुप हो जाना, चुप।
2: दिल मेरे तू दीवाना है।
1: लो छोटे मालिक का गीत गूंजा, अब ये चुप हो जाएगा।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिंजन 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: तो कर छीट दब नाक दुबा के मर जाए।
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिंजन 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: ए जी तने अपना बाबूजी से बात करी ना।
1: रुका लगाओ ता।
0: हाँ लगाई ना।
2: हो पापा हम बियाह कर ले लियो।
3: का बियाह कर ले लिए? हमरा ले बताइले।
2: तू बियाह कइला त हमसे बताइला नया बताइला त हम कह के बताई।
3: अरे बोकावा तो कुछ दहेजो मिलई है रे।
2: दहेज नहीं जे घंटा लिया।
3: आ ससुरा
2: ए द

0: अरे एक बार लास्ट प्रयास करो।
1: रुक जा, एक बार और लगावा है। ए बाप जी हो,
2: अरे लाइको हो गई का रे?
1: हाँ हो गई।
2: अरे अभी तो 2 दिन पहले कहता रे के बियाह कोई नहीं।
1: अरे जिया के फॉर्म डाउनलोड कर ले लाई बाबूजी।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: ओकर छीट दब नाक डूबा के मर जाए।
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: ए जी तनी अपना बाबूजी से बात करी ना।
1: रुका लगा होता।
0: हाँ लगाई ना।
2: हो पापा हम भी आ कई ले लियो।
3: का बियाह कई ले लिए? हमरा ले बताइले।
2: तू बियाह कैला त हमसे बताइला नया बताइला त हम कह के बताई।
3: अरे बोकावा तो कुछ दहेजो मिलई है रे।
2: दहेज नहीं जे घंटा लिया।
3: आ ससुरा

0: अरे एक बार लास्ट प्रयास करो।
1: रुक जा, एक बार और लगावा है। ए बाप जी हो,
2: अरे लड़को हो गई का रे?
1: हाँ हो गई।
2: अरे अभी तो 2 दिन पहले कहता रे कि ब्याह कोई नहीं है।
1: अरे जिया के ऑफर में डाउनलोड कर ले लाई बाबू।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजे सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस के कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम। मैं बदस्मत आरएफएम में।
2: जी मैम, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मायर एमपी से।
1: जी जी, क्या हाल चाल है सुनील जी?
2: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे मैम शो का इंतजार करते हुए मैम, तो टाइम हो गया तो हम सोचे चलो अभी फोन लगाते हैं, फोन भी लग गया मैम।
1: चलिए बढ़िया है। गाना कौन सा सुन रहा है आज आपको?
2: जी हमको सुनवा दीजिएगा फिल्म जीत से, भगवान ने क्या बोले तू धरती में जाए जहाँ पी रहे तेरी खुशबू से जान लूंगा। और सुनवाएंगे किसने रेडियो रिमझिम, दोस्त लोग सुनते सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
1: ओके, तो प्ले करेगा ना?
2: ओके मैम।
1: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सो मैं कॉल किया।

0: हाँ अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: मैं मोहम्मद यूसुफ सिपाही डाला अपना मेडिकल हॉल से बोल रहा हूँ
1: जी। कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया है, अभी फोन लगाए थे तो कट गया, नेटवर्क नहीं था।
1: जी जी, बारिश हो रही है ना शायद, इसके वजह से नेटवर्क सही नहीं है।
0: यहाँ पर भी सिपाही डाला में बहुत जोरों से बारिश हो रही है, 2 घंटा हो गया लगभग।
1: हाँ यहाँ भी वही हाल है।
0: हाँ मौसम तो बहुत खराब है, अब क्या कीजिएगा,
1: क्या करेंगे, काम तो करना ही है।
0: यही है कि गेहूं के दौरी हो गया।
1: हाँ हाँ हो गया, लेकिन बारिश हो गया तो खेत के लिए भी सही है। हाल हो जाएगा।
0: हाल हो जाएगा, बिचड़ा वगैरह गिरेगा गेहूं का, धान का।
1: हाँ जिसको गिराना होगा वो गिरा देगा, सही रहेगा उसके लिए।
0: तब हम यही कहेंगे कि आप हमको इसी बरसात में गाना सुनवा दीजिए।
1: जी बता दीजिए नाम।
0: ये कह रहे हैं कि बेमौसम बरसात हुई, अभी बरसात का मौसम नहीं है।
1: जी जी,
0: बेमौसम बरसात हुई है, कुछ तो ऐसी बात हुई है, अपना सब हम भूल गए जब से सोनी जी से बात हुई है। हाँ तो जारे जारे वो सारी बदरिया,
1: आवाज कट गया, एक बार और बताइए।
0: जारे जारे वो कारी बदरिया
1: जी,
0: इसी गाने को सुनवाइएगा
1: और डेडिकेट भी करिएगा।
0: हाँ अपना मेडिकल हॉल के सभी स्टाफ और खासकर कन्हैया जी जो फौजी से रिटायर किए हैं उनको सुनवाइए।
1: चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी।
0: हाँ ठीक
1: ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोना कॉल के जी।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello, hello, hello, hello, hello. भागे भागे फिरते हैं।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सब इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: मैं अहमद अली सारे आवाज नंबर 1 है
5: जी। का हाल चाल बा अहमद जी?
6: ठीक बा जी, अपन बताई बारिश में कैसा लागता?
5: अरे का बताई कैसा लागता, जैसे अंदर पाँव धनी तले बारिश तेज हो गयी, खुला ला 10 मिनट खातिर वही बीच में आईनी है।
6: भाग मनाई की पहुँच गयी नहीं है न तो आइयो ना कोई दिन
5: न हमके तो ऐसा ही लग रहा है की हम आज नहीं जा पाए क्या की निकले के टाइम में ही बारिश आ गया।
6: हमारा नंबर तो 2 बार लागल है लेकिन उठानी है ना।
5: अरे जैसे आके चालू कर ले रही अभी बीच में आई रही, फोन में चार्जो ना रहे, लाइट ना रहे तो चार्जो ना भई रहे।
6: हम कहनी हमारा पर अपना जुलूम का है होता पूछे मोमेंट से
5: ना ना जुलूम नहीं होते ना चार्ज ना रहे और बात करती तो तुरंत मोबाइल बैठ जाये।
6: कई अफसरी के मोबाइल से फिर लगनी हम अपना मोबाइल से लगावत लगावत है
5: ना
6: लागल है 126 बार डायल कर ले बनी।
5: अच्छा अच्छा चले लाज गाना बता दी।
6: आज गाना तो सुनवा दी नजायज फिल्म से बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में। सुनाला के बाद सबसे पहले के कमरान रशीद के राघव जी के दिलीप भाई के और जो भी रेडियो रिमझिम जहाँ से भी सुना था सब करा के आज कहिया बाजी गनवा गनवा कब बाजी आज की का
5: आज बाजी आज शाम के 5-7 के बीच में आई।
6: ठीक बा
5: जी
6: चलिए शुक्रिया
5: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
6: जुम्मा मुबारक सब करा के

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन रिंग दे बजती है तो कहते हैं हेलो
4: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
3: भागे भागे फिरते हैं।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: नमस्कार सोनी जी।
7: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: हरमंदर तिवारी बोल।

0: जी कैसे हैं धर्मेंद्र जी?
1: भैया
0: तो क्या हो रहा था अभी?
1: अभी तो घर पर पाए, बारिश हो रही, घर में कुछ काम है वही कर रहे थे।
0: अच्छा, तो गाना कौन सा सुनना है आपको?
1: शादी वाला कोई गाना सुनवा दीजिए।
0: शादी वाला और सुनवाना भी है?
1: हाँ, रेडियो रेंजिंग होता सुनेंगे सारे आदमी।
0: ओके चलिए, तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर मैं कॉल किया।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: जी कुमारी गोपालगंज से।
0: जी कैसे हैं खुशी जी?
1: अच्छे हैं, अपना बताइए।
0: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या हो रहा था अभी?
1: अभी कुछ नहीं, बारिश हो रहा है, बैठे हैं।
0: तो गाना कौन सा सुनना है खुशी जी आपको?
1: बोल सका है।
0: कौन सा गाना?
1: भोजपुरी गाना बोल सका है
0: जी। बिल्कुल बोल सकता है भोजपुरी गाना।
1: लाए तो माई हमारे मारे लगी हो।
0: अच्छा, प्यार के बुखार उतारे लगी हो, ये वाला गाना ना?
1: हाँ यही।
0: अच्छा, और सुनाना भी है?
1: हाँ, सिरजी कुमारी, शिवम कुमार, सलोनी कुमारी को और आपको जितने रेडी रही सुने सभी को।
0: ओके चलिए, तो प्ले करे गाना आपकी?
1: हाँ कर दीजिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल के।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello,
1: hello, hello, hello, hello, hello.
3: भागे भागे फिरते हैं।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: मैं अहमद अली सारे आवाज नंबर एक है।
5: जी का हाल चाल अहमद जी?
6: ठीक बाजी, अपन बताई बारिश में कैसा लागत है?
5: अरे का बताई कैसा लागत है, जैसे अंदर पाँव धनी तले बारिश तेज हो गए, खुला लाटो 10 मिनट खातिर वही बीच में आईनी है।
6: भाग मनाई की पहुँच गए नहीं है, आइयो ना कोई दिन
5: ना, हमको तो ऐसा ही लग रहा है की हम आज नहीं जा पाए क्या की निकले के टाइम में ही बारिश आ गया।
6: हमारा नंबर तो 2 बार लागल है लेकिन उठानी है ना।
5: अरे जैसे आके चालू कर ले रही अभी बीच में आई रही, फोन में चार्जो ना रहे, लाइट ना रहे तो चार्जो ना भई रहे।
6: हम कहीं हमारा पर अपना जुलूम काहे होता पूछे मोमेंट से।
5: ना ना जुलूम नहीं था, होते ना चार्ज ना रहे और बात करती तो तुरंत मोबाइल बैठ जाये।
6: कई अफसरी के मोबाइल से फिर लगनी, हम अपना मोबाइल से लगावत लगावत है
5: ना
6: लागल है, 126 बार डायल कर ले बनी।
5: अच्छा अच्छा चले लाग गई आज गाना बता दी।
6: आज गाना तो सुनवा दी नजायज फिल्म से बरसात के मौसम में तनहाई के आलम में। सुनाने के बाद सबसे पहले कमरान रशीद के, राघव जी के, दिलीप भाई के और ये भी रेडियो रिमझिम जहाँ से भी सुना था सब करा के। आज कहिया बाजी गाना? गाना कब बाजी? आज की का
5: आज बाजी, आज शाम के 5-7 के बीच में आई।
6: ठीक बा
5: जी,
6: चलिए शुक्रिया
5: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
6: जुम्मा मुबारक सब करा के।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
1: Hello, hello, hello, hello, hello.
3: Bhage bhage phirte hain.
4: Break ke baad aap sabhi ka ek baar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सब इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
4: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: हाँ संग जी, हमारा संगठन होता का
4: जी जी का होता थे बताई।
5: फोन था के कट गया है, नेटवर्क
4: ना जी सबके संग होता है, शायद बारिश के मौसम बनो, बारिश काफी तेज आवत है तो मैं नेटवर्क था फंसा था।
5: हम जन के हमारे संग होता कभी घड़ी
4: ना ना, आज काफी भयानक वाला बारिश होता, आज 2 घंटा हो गया अभी बारिश हो।
5: हम नहीं कहता अभी नीचे हो
4: ना, यहाँ तो होता बारिश खुला रहता महीनी आज ऐसे अंदर पैर रखनी फिर बारिश शुरू हो गई। राकेश भारती बात करता नहीं ना।
5: हाँ जी हाँ जी
4: जी तो बताए जी
5: तब बढ़िया बा। हमने कहा 29 तारीख के खूब भयंकर बारिश भइल है, आंधी पानी होई तरी
4: ओ दिन तेहू जी भइ रहे, शाम के बारिश भइ रहे।
5: हाँ शाम के पूरा टेंट समझाने अपना लोग के लागल रहे में उधिया गए रहे
4: सब लेके चल गए।
5: हमने के पूरी खाई बैठल है यार, मतलब शाम के ही अभी मतलब 2-4 कवर तक खाई नहीं रखा तब तक पतल उतल में उधिया
4: बोल की ना खाए दे आज
5: ना खाए के मिल दिन।
4: अब सब उदिया ले गए तो कैसे आदमी खाए।
5: हाँ पूरा टेंट समझाना में पानी लग रहे, एक फीट तक पानी लगे रहे तो मैं अभी कहाँ बैठे कहाँ खाई है
4: ना खा पाई है। सही बात बा।
5: हाँ खाना में कुछ देख जो ड्रम सोल में पानी देखते देखती जो रहे में पानी भर गए
4: वे बात बटे, खाना भी बर्बाद हो गए।
5: हाँ।
4: तो बता दी गाना कौन सुने के बा।
5: अच्छा सुने के चाहत रहे हैं पवन सिंह के सनहिया लगावल बहुत बात नहीं है
4: जी, और सुनवाए के भी बा।
5: हाँ सुनवाए के पूरा रेडियो काल फैमिली बा, रहुआ बानी हम बानी। अरे घड़ी तो बलिराम जी संगे तनी छटक गई बड़न पटक गई बड़न जानते बनी उनका घरेलू मैटर बनी।
4: अच्छा अच्छा क्या वहाँ के श्रीमती जी ने किया आवेदन का।
5: श्रीमती जी कहते थे कि 24 घंटा में 23 घंटा तू उनके संग रहो तो हमारा संगे कहो रहो
4: ना तो 24 घंटा में 23 घंटा ना रखी।
5: हाँ तो अब बड़न की बार बार हमारे कहीं चले जाए बोलन
4: तब तक लड़ाई होके के बाद बटे।
5: हाँ वही से लड़ाई हो जाता है। बुधे के दिन समझा खदला बने की तू हमारा संग भाई मत रहा।
4: चली बढ़िया के ले बनी ऐसा बात बता।
5: हाँ कहा कतिन बनी की हमारा संग रहो हम अपन जहाँ बनी चाहे ठीक बनी, हमारा से जब जरूरत पड़े तब हमारा से मिल ली
4: जब का

0: काम
1: पड़ी तो मिल ली
0: है
1: ठीक है। काम पड़ी तो मिल ली है मतलब भी ठीक नहीं है
0: बिल्कुल।
1: हाँ मेरा कहना मिले
0: चलिए ठीक बा। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कॉल करने।
2: काहे आखिर काहे काहे रोवलू जब हंसावे के ना रहे, काहे गुनगुनौलू जब गावे के ना रहे। आज आंसू पोछा तनी एगो प्रश्न बन के, काहे कैलू मोहब्बत जब निभावे के ना रहे।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: Hello, hello, hello, hello, hello.
3: भागे भागे फिरते हैं।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो मैडम, नमस्कार।
5: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: जी मैं मन्नान बोल रहा हूँ कपूरथला से।
5: जी कैसे हैं मन्नान जी?
6: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आज टाइम मिल गया है फोन करने के लिए। नाश्ता पानी हो गया?
5: जी जी बिल्कुल हो गया है।
6: हो गया कि हो रहा?
5: नहीं नहीं हो गया है
6: ना, हमको तो लगता है कि हो रहा है।
5: ना ना आज तो सुबह में ही हो गया है।
6: तो गाना सुना दीजिए मैडम आज।
5: जी
6: बन के दुल्हनिया मैं चली तेरे द्वार।
5: जी
6: हाँ, तो गाना हमको वही सुनना था।
5: और सुनवाना भी है?
6: और सुनवाना है क्या है? वही जो आसाम वाले लोग आए हैं तो उन लोग को सुनाना है। जैसे बेनजीर नाम है, बाबुल नाम है ना, आलिया नाम है।
5: जी
6: ना, इन लोगों को सुनवाना है और आपको सुनवाना है। बाकी रेडियो में जितने रिमझिम के साथ प्रेमी है लोग लो सुनेंगे
5: तो प्ले करे गाना।
6: बिल्कुल शौक से प्ले कीजिए, ज्यादा सुने आपका प्ले किए हुए गाना।
5: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो माय चॉइस में कॉल किया।

0: गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगटोन 94.4 FM में।
0: थैंक यू मैम, आपको भी बरसात मुबारक।
1: जी जी, बरसात आपके उधर भी हो रही है क्या?
0: बहुत अधिक, आज तो रेनकोट पहन के आए हैं काम पे।
1: अच्छा,
0: टाइम पे ही आ गए थे, बारिश हो रहा था।
1: जब रेनकोट पहन के आना है तो आदमी टाइम पे आएगा।
0: हाँ, और आज हमें एक भजन सुनना है।
1: जी बिल्कुल, बताइए कौन सा भजन सुनना है।
0: संजय मित्तल का गाया हुआ है, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, जिंदगी अब तेरे नाम है सांवरे।
1: जी, और सुनाना भी है।
0: हाँ, सारे लिसनर्स लोग को। और जमाना बहुत खराब चल रहा है और लग रहा है कि अब भगवत भक्ति ही आदमी का मतलब अंतिम सहारा है,
1: तो यही होगा।
0: वही चीज लगातार अखबार में वही चीज सुनने देखने को पढ़ने को मिल रहा है, सोशल मीडिया पे भी वही चीज आ रहा है ज्यादातर।
1: वही चीज है एक, ठीक है फिर।
0: ठीक है
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने कॉल।
0: थैंक यू मैम।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
3: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
4: नमस्कार मैडम।
3: नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
4: नाम मनोज कुमार
3: जी,
4: हम मुंगेर जिला से बोल रहे हैं।
3: कैसे हैं?
4: ठीक है।
3: तो क्या हो रहा था?
4: क्या हो रहा था, बगीचा में बैठे हैं, रखवाली करते हैं। अपने क्षेत्र का कुछ जानकारी हम आपसे साझा कर सकते हैं?
3: जी बिल्कुल कर सकते हैं।
4: देखिए, हमारे गाँव के बगल में एक घोड़ाखुर पहाड़ है जिसका पौराणिक गाथा है कि जब दशरथ जी घोड़ा छोड़े थे तो वो घोड़ा जो था वही पहाड़ पे आके रुका था, तो उसका पदचिन्ह अभी तक यहाँ है।
3: अच्छा अच्छा,
4: इसी के नाम पे इस पहाड़ का नाम घोड़ाखुर रखा गया है। और वहाँ पर एक भोले बाबा का मंदिर है, वहाँ का मनोकामना सिद्ध होता है, जो भी कोई वहाँ जाके मांगते है ना का मनोकामना सिद्ध होता है उस मंदिर में। बगल में झील है, बहुत सुंदर जी, बहुत अच्छा देखने में लगता है। 1 जनवरी को लोग वहाँ पिकनिक करने भी जाते हैं।
3: ये बढ़िया जानकारी दी है, कभी घूमना हुआ तो फिर आदमी आ सकता है उधर।
4: हाँ आइए, बहुत अच्छा घूमने का जगह है यहाँ पर। पानी इतना अच्छा गिरता है ना ऊपर से झरना, कहते हैं कि अगर किसी को खुजली उजली हो गया है कुंड में नहा लीजिए तो ठीक हो जाएगा।
3: अच्छा,
4: हमारे पहाड़ का यही विशेषता है मैडम। गाना हमको सुना दीजिए आज
3: जी,
4: दोस्ती का, गुड़िया कब तक रूठी रहोगी।
3: सुनवाना भी है?
4: सुनवाना है आपको, सरिता देवी को और सिंजिन के सारे श्रोतागण को। ठीक है, प्रणाम मैडम, गाना सुना दीजिए
3: जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल किया।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो मैम, सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: थैंक यू
1: जी। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: जी रियाज अंसारी सिवान।
1: जी जी, क्या हाल चाल है?
2: हाल चाल बढ़िया है, यहाँ तो कंपटीशन हो रहा है कॉल लगाने के लिए।
1: चलिए तो कंपटीशन में आप जीत गए लग रहा है।
2: मैं बन गया।
1: चलिए बढ़िया है, तो बता दीजिए।
2: पहली बार भी किया था तो 75, अभी 76।
1: चलिए बढ़िया है, लग गया ना?
2: हाँ लग गया जी, लग गया। लड़ाई पे जा रहे हैं, मार देंगे, मार देंगे।
1: चलिए तो आपको उधर भी बारिश हो रही है?
2: नहीं, हमारे और इधर हम बेंगलोर में है ना, अभी फर्स्ट टाइम कॉल किया था आपको, ये सेकंड टाइम है। तो इधर तो दिन में धूप होता है पर हाँ। मसाला रात को बहुत अच्छा मौसम हो जाता है, अब बारिश भी रात को ही होती है। दिन में कमाओ, रात को सो जाओ।
1: बढ़िया है, रात को बारिश होती है तो कोई टेंशन नहीं रहता, अपने घर में सब कुछ रहता है।
2: उधर तो गाँव में तो पूरा आंधी तूफान, क्या क्या किसी का समय आना, टेंट सब उड़ जाए।
1: आज तो बहुत सारा इधर लगन है और देख रहे हैं कि सुबह 10 बजे से बारिश इतनी कंटिन्यू हो रही है।
2: हम भी मिस कर रहे हैं बहुत अपने गाँव की वहाँ।
1: चलिए तो गाना कौन सा सुनना है?
2: गाना हमें सुनना है वो मेरे आने पे खिल जाना तेरा, और मेरे जाने पे रुक जाना तेरा, याद है ना
1: जी। और डेडिकेट भी करिएगा।
2: हाँ करेंगे, आकाश, सैनुल्ला, मुकान और शहजादी।
1: चलिए तो प्ले करे गाना आपकी।
2: और एक बात, मैम कुछ बोल सकते हैं शहरी वगैरह? क्योंकि
1: बिल्कुल कुछ भी बोल सकते हैं जिससे सुन के किसी को आपत्ति नहीं हो, किसी को
2: नहीं,
1: मतलब मैं आपको बोल रही हूँ किसी को दुख ना हो, बाकी आप सब कुछ बोल सकते हैं। और गाने में भी कोई ये नहीं है, गाना बस जातिवाद नहीं होना चाहिए, धार्मिक गाना नहीं होना चाहिए, बस
2: वो सबसे दूर रहते हम, लड़ाई झगड़ा सही क्या मतलब। तो हम यही कहना चाहते कि हमारे सैड सॉन्ग के साथ में ए भी बज जाए। मांगा था खुशी आशियाने की, चल पड़ी आधिया जमाने की। मांगा था खुशी आशियाने की, चल पड़ी आधिया जमाने की। मेरा दर्द कोई समझ ना सका, क्योंकि हम याद रहते हमेशा मुस्कुराने।
1: जी जी,
2: बस इतना ही, थैंक यू।
1: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी चॉइस में कॉल किया।
2: थैंक यू मैम,
1: वेलकम।

तो दोस्तों, आप लोग अभी कार्यक्रम हेलो माई चॉइस को मेरे साथ यानी आरजे सोनी के साथ सुन रहे थे। अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मुझे दीजिए अब जाने की इजाजत और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो रिंजन 90.4 FM। मिलते हैं अगले कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: क्या बोले थे? बुलाती है मगर जाने का नहीं।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

महाबली रावण ने अपने भुजबल से सारे विश्व को अपने अधीन कर लिया था। बढ़ते अनाचार और धर्म के प्रति अनास्था देखकर पृथ्वी भयभीत और व्याकुल हो गई। अंत में और कोई उपाय न देख पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और वहां पहुंची जहां रावण से त्रस्त और उत्पीड़ित देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रो रो कर उन्हें अपना हाल सुनाया। ब्रह्मा जी ने धरती को धीरज धारण करके श्रीहरि के चरणों का स्मरण करने का उपदेश दिया।

राक्षसों तथा पापाचारियों से आतंकित पृथ्वी तथा ब्रह्मा सहित देवताओं ने परम पिता की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। तब गंभीर आकाशवाणी हुई, हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामी, भयभीत न हो। तुम्हारे कल्याण के लिए मनुष्य रूप धारण करके मैं सूर्यवंश में अवतरित होऊंगा। अदिति तथा कश्यप ने कठोर तपस्या करके मेरा वरदान प्राप्त किया और वे ही कौशल्या तथा दशरथ के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर श्रेष्ठ चार भाइयों के रूप में मैं अपनी परम शक्ति समेत पैदा होऊंगा। आकाश में गूंजती ब्रह्मवाणी अपने कानों सुनकर सभी देवता आश्वस्त हुए।